नानक से जन थाए पाए गए, जिनकी पद पावे लेख सारग महला पंजवां अष्टपदियां कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुसाई प्रताप तुहारो डीठा करन करावन उपाय सुमावन सगल छत्रपद बीठा रखाओ राणा राओ राज पै रंका उन झूठे कहन कहायो हमरा राजन सदा सलामत ताको सगल कटां जस गायो उपमा सुनो राजन की संतो कैद जेद पाहुच बेसुमार वर्षा दा तारा ऊचे ही ते ऊचा पावन परोयो सगल कारा पावक काष्ट संगे नीर तरण कर राखे एकत कोई न किस ही संगे धड़कड़ कथा राजन की चल है कर कर तुझे उमाहा जी जन सब पाछे करया प्रथम रिजक समाहा जो कुछ करना तू आपे करना मसलत काहू दीनी आनक जिदन का करे दिखाए साची साखी तीनी हार भगतां का राखे अपनी दीनी नाम डाई जिन जिन करी अवग्या जन की ते तै दिए रुड़ाई मुक्त पय सा संगत कर तिनके अवगुण सब परखरिया तिनको देख पय कृपाला तिन पवसागर तरिया हम नाने नीच तुमे बड़ साहेब कुदरत कौन बिचारा मन तन शीतल गुरदर्श देखे नानक नाम आधारा सारग महला पंजवां अष्टपदी कर छेवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद आगम अगाध सुनो जन कथा पार ब्रह्म की अचरज सभा रखाओ सदा सदा सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार मन पीतर होवे परगास ज्ञान अंजन अज्ञान विनाश मित नाही जाका विस्तार तो बाता की अपर अपार अनक रंग जाके गने ना जागे सोग हरख दोहु मैं नागे अनक ब्रह्मे जाके वेद तुन करे अनक महेश बैस ध्यान करे अनक पुरख

ओंकार सतगुर प्रसाद सब देखिए अनपय का दाता कड़ कर पूर्ण गए अल्पता कड़ कर पूर्ण कर विस्तीर्ण जल तरंग ज्यों रचन किया हाव रसमाने पोक टाणे आनन बिया कोतिया हर रंगी एक रंगी ठाकुर संत संग प्रव जाता नाग दर्शलीना ज्यों

योगी का जत होए, ब्राह्मण चुली संतोख की गिरही का सतदान, राजे चुली न्याव की पढ़िया सच ध्यान, पानी चेतना तोपई मुख पीते तिख जाए, पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए, पौड़ी नाए सुने सब सिद्ध है रिद पिछे आवे, नाए सुने नौनद मिले मन चिंदिया पावे, नाए सुने संतोख होए कवला चरण त्यावे, नाए सुने सहज उपजे

काम क्रोध तृष्णा उचरे, दसवीं दसे द्वार जे ठक, एकासी एक कर जाने, द्वादशी पंच वसगत का रख, तो नानक मन माने, ऐसा वर्तर ही जय पांडे, और बहुत सिख क्या दी जय पौड़ी, खूब तरा जे रंग राय, संचय बिख माया, कर कर हेत बधाए दे, पर दर्व चुराया, पुत्र कलत्र ना विस है, बहु प्रीत लगाया, वेख दिया ही माया तोहे गई, पछते

न पढ़ाए, फगर करे होर जात गवाए, गुर पीर सदाए मंगन जाए, ताके मूल न लगिए पाए, काल खाए किस हथों दे, नान कराओ पछाणे से, महला पहला मनो जे अंधे कूप, कया बिरद ना जाननी, मन अंधे उंधे कबल, दिसन खरे करूप, एक कह जान है, कह आ बुझे ते नार

फिर होए ना बिनासा, हर से ती रंग रव रहे सब सास गिरासा, हर का रंग कबे ना उतरे गुरमुख परगासा, ओए कृपा करके मेलियन नानक हर पासा। श्लोक महला तीजा, जिच ओ मन लहरी विच है होम में बहुत अहंकार, सबदे साधन आवई नाम न लगे प्यार, सेवा थाए न पवी तिसकी खब खब होए खुआर, नानक सेवक सोई आखिए जो सिर तरे उतार, सतगुर का पाणा मन ले शब्द रखे उतार। महला तीजा, सो जापो तब सेवा चाकरी,

लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगे प्यार, गुरमुख जिना शब्द मन वसे दर गए मोख द्वार। नानक आपे मेल लय, आपे बख्शन हार, महला चौथा, नानक जिस बिन कड़ी ना जीवना, विसरे सरय ना बिंद, तेज ज्यों क्यों मन रूसी है, जिस हमारी चिंद, महला चौथा, सावन आया चिमचिमा, हर गुरमुख नाम ते आए, दुख पुख काड़ा सब चुकाए सी, मी होम उठा शैबर लाए, सब तरत पई हरी आवली, आन जम्या बोहल लाए, हर अचिंत बुलावे कृपा कर, हर आपे पावे ताए, हर किसे ते आवो संत जनो, जो अंते लए छिड़ाए, हर कीर्त भगत आनंद है, सदा सुख वसे मन आए, जिन्ना गुरमुख नाम अरा

माया कारण श्रम अत करे, सो माया ले गाडे तरे, आत संचय समझे नहीं मूड़, तान तरती तन होए गयो तूड़, काम क्रोध तृष्णा अत जरे, साध संगत कबहू नहीं करे, कहत नाम जो ताची आन, निरपय होए पजिए भगवान, बदो की ना हो माधो मोस्यों, ठाकुर ते जान जानते ठाकुर, खेल परयो है तो स्यों रहाओ, आपन देव देवरा आपन, आप लगावे पूजा, जल ते तरंग तरंग ते है जाल, कहन सुन को दूजा, आपे गावे आपे नाचे, आप बजावे तूरा, कहत नाम देव तू मेरो ठाकुर, जन ऊरा तू पूरा, दास अनिम मेरो निज रूप, दर्शन निमख ताप त्रिमोचन, परसत मुक्त करत ग्रे कूप रहाओ, मेरी बंदी भगत छिड़ावे, बंदे भगत न छूटे मोहे, एक समय मोको गए बंद, तौ फोन मैं पो जवाब न होए, मैं गुण बंद सगल की जीवन, मेरी जीवन मेरे दास, नाम देव जाके जी ऐसी, तैसो ताके प्रेम परगास, सारंग एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, तय नर क्या पुराण सुन कीना, आन पावनी भगत नहीं उपजी, भूखे दान ना दीना रहाओ, काम ना बिसरयो, क्रोध ना बिसरयो, लोभ ना छूट्यो देवा, पर निंदा मुक्ति नहीं छूटी, निफल पई सब सेवा, बाट पार कर मूस बिरानो, पेड़ परे अपराधी, जे परलोक जाए अपकीरत, सोई अविद्या साधी, हिंसा तो मते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद सा संगत मिल, कथा पुनीत ना चाली, छाड़ मान हर विमुखन को संग, सारंग महला पंजवा सूरदास, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर के संग बसे।

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंग गुर प्रसाद खाना पीना हसना सोना विसर गया गए मरना खसम विसार खुवारी कीनी।

जियां अंदर जियो तुही, गुरमुख त्यावे से अमृत पावे, से सूचे हो ही। आहिरस नाम जपोरे प्राणी, मैले खच्चे हो ही। जेही रुत काया सुख तेह, तेहो जेही देही। नानक रुत सुहावी साई, बिरनावे रुत केही। मलार महला पहला।

जिन हर प्रभ आन मिलाया रहाओ। नौ तन प्रीत सदा ठाकुर स्यों, आन दिन भगत सुहावी। मुक्त पए गुरदर्श दिखाया, जो जोग भगत सुपावी। हम थारे तिर पावन जग तुमरा, तू मेरा हो तेरा। सतगुर मिलया निरंजन।

अकुल निरंजन स्यों सच साची, गुरमत नाम आधार। मुक्त पई बंधन गुर खोले, साबद

माया मोह अज्ञान गुबार, मन मुख मोहे मुग्ध गवार, अनदिन तंदा करत विहाए, मर मर जम्मे मिले सजाए, गुरमुख आराम नाम लिवलाई, कूड़े लालच ना लवटाई, जो किश होवे सहज सुपाए, हर्ष पीवे रसन रसाए।

नींद न पाए, यो विछोड़ा सहया ना जाए। सतगुर मिले ता मिले सो पाए, नामहीन बिनसे दुख पाए। तृष्णा जलिया भूख न जाए, बिन भागा नाम न पाया जाए। बहुविध थाका कर्म कमाए, त्रै गुण बाणी वेद विचार। विख्या मैल विख्या वापार, मार जन्मे फिर होए खुवार। गुरमुख तुरिया गुण उर तहार, गुर माने माने सब कोए। गुर बचनी मन सीतल होए, चौ जुग शोभा निर्मल।

होता, बिन खीरे रहन न जाई। सार संभाल माता मुख नीरे, ता ओ त्रिप्त अघाई। हम बारक पिता प्रवदाता, फूले बारक अनक लख बरिया। अनठौर नाही जय जाता रघाओ, चंचल मत बारक बपरे की। सर्प अग्न कर मिले, माता पिता कंठ लाए राखे। आनंद सहज तब खिले, जिसका पिता तू है मेरे स्वामी। तिस बारक पूख कैसी, नामृद नाम दान गृह तेरे। मन बांछे सो लैसी, पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी। बारक मुख मांगे सो देना, नानक बारक दर्श प्रभ चाह है। मोहे हृदय बसे नित चरना, मलार मोहल्ला पंजवा। सगल विधि जोर आहार करे, तजो सगल अंदेसा। कार्य सगल आरंभ्यो करका, ठाकुर का पहारूसा। सुनिए बाजे बाज सुहावी, और पया मैं प्रेम मुख पेखे। गृह मंगल सोलावी, अराव मनुआ लाए सवारे थाना। पूछो संता जाए, खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो। भगत करो निव पाए, जापरे आए बसे गृह आसन। तब हम मंगल गाया, मीत साजन मेरे पए सुहेले। प्राभ पूरा गुरु मिलाया, सखी सहेली पए आनंदा। गुर कार्ज हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता। छोड़ न जाई दूरे, मलार महला पंजवा। राज ते कीट, कीट ते सुरपत। कर दोख जठर को परते, कृपा निज छोड़ आन को पूजे। आत्म काती हरते, हर बिसरत ते दुख दुख मरते। अनक बार प्रमे

राजा राम रमत सुख पायो, बरस मेघ सुखदाई रहाओ। एक पाल बिसरत नहीं सुख सागर, नाम नवे निद पाई। उदाउद पयो पूर्ण भावी को, पेटे संत सहाई। सुख उपजे दुख सगल बिनासे, पार ब्रह्म लिवलाई। तरयो संसार कठिन पै सागर, हर नानक चरण तिहाई। मलार महला पंजवा, कानहार बरस सगल जग छाया। पए किरपाल प्रीतम प्रा मेरे, आनंद मंगल सुख पाया रखाओ। मिटे कलेस त्रिसन सा बूझी, पार ब्रह्मन त्याया। साध संग जन्म मरण वारे, बौर न कतहू ताया। मन तन नाम निरंजन रातो, चरण कमल लिवलाया। अंगीकार कियो प्रभु अपने, नानक दास शरणाया। मलार महला पंजवा, बिशरत क्यों जीवे ओए जीवन। चिते उलास आस मिल।

प्रातन साधु संग उधारे रखाओ। देव कोल दैंत कोल जाख किन्नर नार सागर उतरे पारे। जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बिदारे। काम क्रोध मां बिखिया रस इनते पए निरारे। दीन दयाल जपे करना मैं नानक सदबलिहारे। मलार महला पंजवा आज मैं बैस्यो हर घाट। नाम रास संजी कर जम स्यो जाओ ना जम कै घाट। रखाओ तार अनुग्रह पार ब्रह्म राखे प्रम के खुले कपाट। बेसुमार साहु प्रापाया ला चरण निद खाट। शरण गई अचुत अवनासी किरव काढ़े है शाट। कल कलेस मिटे दास नानक बौर न जोनी माट। मलार महला पंजवा बहुविध माया मोह हुए रानो। कोड़ मदे को बिरला सेवक पूर्ण भगत चिरानो। रखाओ एत उत डोल डोल शरम पायो तन तन होत बिरानो। लोग दुराए करत ठगियाई होतो संग न जानो। मृग पंखी मीन दीन नीच ए संकट फिर आनो। कहो नानक पान प्रवतार हो साध संगत सुख मानो। मलार महला पंजवा दुष्ट मोए बिख खाई रीमा।

पाया, ऐथे उथे निभगे नाल रखाओ, दुख पन्ना पे पंजनहार, अपने जिया की कीती सार।

आकाशी बिकसे सहज सुपाई। प्रीतमा प्रीत बने अब ऐसी ज्योति ज्योत मिलाई। यात्रक जल बिन प्रयो प्रयो टेरे बिल्ब करे बिललाई। कानहर कोर दसो दस बरस बिन जल प्यास न जाई। मीन निवास उपजे जल गीते सुख दुख पुरब कमाई। खेन तेल रह न सकै पल जर बिन मरण जीवन तिस ताई।

मन रे सतगुर सेव समाए, वड़े पा गुर पूरा पाया, हर हर नाम त्याए रहाओ, हर अपने पाने सृष्ट उपाई, हर आपे दे आधार, हर अपने पाने मन निर्मल किया, हर स्यों लागा प्यार, हर के पाने सतगुर पेटिया, सब जन्म सवारन हार, वाह वाह बाणी सत है गुरमुख बूझे कोए, वाह वाह कर प्रसा लाईए तेस जेवड़ अवर न कोए, आपे बगसे मेल लय कर्म प्राप्त होए, साचा साहेब मारो सतगुर दिया दिखाए, अमृत वरसै मन संतोखिए सच रहे लिवलाए, हर के नाए सदा हरियावली फिर सुके ना कुमलाए, बिन सतगुर किने ना पायो मन वेखो को पति आए, हर कृपा ते सतगुर पाईए।

हां पतत तुम तारे, पतत पावन भगत बच्छल, कृपा सिंध स्वामिया, संत संगे भजन संगे, रौ सदा अंतर जामिया, कोट जन्म परमंत जोनी, ते नाम सिमरत तारे, नानक दर्श प्यास वर जियो, आप लिओ सुमारे, हर चरण कमल मन लीना, प्रभ जल जन तेरे मीना, जल मीन प्रभ जियो एक तू है, पिन आन ना जानिए, गए पूजा लेवो नाम देवो, तौ प्रसादी मानिए, पज साध संगे एक करंगे, किरपाल गोविंद दीना, अनाथ नीच सरनाए नानक, करमया अपना कीना, आपस को आप मिलाया, भ्रम पंजन हराया, आचर्य स्वामी अंतर जामी, मिले गुणित प्यारिया, महामंगल सुह उपजे, गोविंद गुणित सारिया, मिल संग सोहे देख मोहे, पुरब लिखिया पाया, बिनवंत नानक सरण तिनकी।

पूजा लाया। दस अवतारी राम राजा आया, दैता मारे ताए हुक्म सवाया। ईस महेश्वर सेव इनी अंत ना पाया, सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया। दुनिया तंदे लाए आप छपाया, धर्म कराए कर्म तुरों फरमाया। श्लोक महला दूजा, सावन आया हे सखी,

शब्द सूर है काम क्रोध जिनी मारिया सच्चे अंदर महल शब्द सुवारिया से भगत तुद पाम दे सच्चे नाए प्यारिया सतगुर सेवन अपना तिना विटो हो वारिया सलोक मोहला तीजा ऊनव आया वरसे लाए चढ़ी नानक पाने चले कंत कै तो माने सदार अली महला तीजा क्या उठ उठ देखो बपड़े इस मेघे हथ किशनाहे जिन यो मेघ पठाया तेस राखो मन माहे तेसनू मन वसाए सी जाको नदर करे नानक नदरी बारी सब करण पला करे पौड़ी तो हरसदा सरेवी है जे करतन लागे वार आडाणे आकाश कर खिन में टाए उसारण हार आपे जगतो पाए कै कुदरत करे विचार मन अगे लेखा मंगिए बहुती होवे मार गुरमुख पासो लेखा निबड़े बगसे सिबद भंडार ओथे हाथ ना अपड़े ऊक ना सुनिए पुकार ओथे सतगुर बेली होवे काढ ले अंती वार इना जनता नू होर सेवा नहीं सतगुर सिर करता।

पौड़ी खंड पताल असंख मैं गणत न होई। तू करता गोविंद तो सृजी तुदय गोई, लख चौरासी मेदनी तुद ही ते होई। एक राजे खान मलूक कह कहावे कोई, एक सास दावे संच तान दूजे पद खोई। एक दाते एक मंगते सबना सिर सोई, विण नावे बाजारिया भी हावल होई। ऊड़न खुट्टे नानका सच करे सो होई, सलोक महला तीजा बाबिया गुणमंती मैल पाया अगुणमंती दूर। अंतर तेरे हर वसै गुरमुख सदा हजूर, ओग पुकार न

रूप जात जोबन पंजे ठग एनी ठगी जग ठगया किने न रखी लज एना ठगन ठग से जे

ताल सहे खंड मंडल हैरान तार कोर बाज तरत है साच तख्त सुल्तान सुख मन कह कर राग सुन सुन मंडल लिवलाए अकथ कथा बिचारिये मनसा मने सुमाए उल्ट कमल अमृत भरिया इहो मन कतहु ना जाए अजप्पा जापना विसरै आद जुगाद समाए सब सखियां पंचे मिले गुरमुख निज करवास शब्द खोज इहो कर ले।

प्रतहार तो ऐसा राजा श्री गोपाल जांचे कार गान गंधर्व रिखी बपड़े टाडिया गावंत आछे।

भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नागर जना मेरी जात बखियात चमारं हृदय राम गोविंद गुण सारं हरहाओ सुरसरी सरल किरत बार नीरे संत जन करत नहीं पानं तुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत न होए आनं तर तार अपवित्र कर मानिए रे

गढ़ वेड़ी, गुर के शब्द लियो गढ़ जीत रखाओ। मिथ्या परम परम भो भ्रम्या, लुब्धो पुत्र कलत्र मोह प्रीत। जैसे तरवर की तुष छाया, फिर मैं बिनस जाए दे पीत। हमरे प्राण प्रीतम जन ऊतम, जिन मिलिया मन होए प्रतीत। परते राम रविया कट अंतर, अस्थिर राम रविया रंग प्रीत। हर के संत संत जन नीके, जिन मिलिया मन रंग रंगीत। हर रंग लहे ना उतरे कबहू, हर घर जाए मिले हर प्रीत। हम वो पाप किए अपराधी, गुर काटे कटत कटीत। हर घर नाम दियो मुख औहद, जन नानक पतत पुनीत। कानड़ा मोहल्ला चौथा जप मान, राम नाम जगन्नाथ। घूमन केर परे बिख बिखया, सतगुर काढ़ लिगे दे हाथ रखाओ। स्वामी अपाए निरंजन नर हर, तुम्हारा

घर पायो सिर डार्यो नानक संत चरना कानड़ा मोहल्ला पंजवां साध सरन चरण चित लाया सुबन की बात सुनी पेखी सुपना नाम मंत्र सदगुरु दृढ़ाया रहाओ नह त्रिवतानो राज जोबन तान बहोर बहोर फिर ताया सुख पाया तृष्णा सा बुझी है सांत पाई गुण गाया बिन बूझे पशु की न्याई परम होए बेआ प्यो माया साध संग जम जेवरी काटी नानक सहज समाया कानड़ा मोहल्ला पंजवा हर के चरण हृदय गाए शीतला सुख सांत मूर्त सिमर सिमर नित त्याए रहाओ सगल आस होत पूरन कोड जन्म दुख जाए पुन दान अनेक क्रिया साधु संग समाए

आवत जात रहे श्रम नासे चिमृत साधु संग पतत पुनीत होए खिन पीतर पार ब्रह्म कै रंग जो जो कथ है सुने हर कीर्तन ताकि दुर्मत नास सगल मनोरथ पावे नानक पूर्ण होवे आस तानड़ा मनला पंजवा साध संगत निधर को नाम संग सहाई जी के काम रखाओ संतरेन नित मज्जन करे जन्म जन्म के किल बिख हरे संत जना की ऊंची बानी सिमर सिमर तरे नानक प्राणी कानड़ा महला पंजवा साधु हर हरे गुण गाए मान तन तन प्राण प्रभ के सिमरत दुख जाए रखाओ ई पूत कहां लोभ आवे एक सियो मन लाए मां पवित्र संत आसन मिल संग गोविंद त्याय सगल त्याग शरण आयो नानक लेहु मिलाए कानड़ा महला पंजवा पेख पेग बिसाओ साजन प्रभ अपना एकांत रखाओ आन दा सुख सहज मूर्त तिस आन नाही भांत सिमरत एक बार हर हर मिट कोट कसमल जांत गुण रवंत दुख नस है रिद पय अंत सांत अमृतारस पीओ रसना नानक हर अंग रात कानड़ा महला पंजवा साजना संत आओ मेरे रहाओ आन दा गुण गाए मंगल कसमला मिट जाए परेर संत चरण तरो माथ है चांदना गृह हुए अंधेर है संत प्रसाद कमल बिकस गोविंद पजो पेख नेर प्रभ कृपा ते संत पाए वार वार नानक ओ बेर कानड़ा महला पंजवा चरण शरण गोपाल तेरी मोह मान तो परम राख लीजे काट बेरी रखाओ बूढ़त संसार सागर उदरे घर सिमर रतनागर शीतला घर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रा मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निध पतत उदारन कोड़ जन्म दुख कर पायो तुही नानक गुर नाम दिरड़ायो कानड़ा महला पंजवा तन ओ प्रीत चरण संग लागी कोड़ जावता सुख पाए आए मिले पूर्ण बड़भागी रहाओ मुए अनाथ दाह जन तेरा अबर ओट सगली मुए त्यागी और परम काटे प्रसिमरत ज्ञान अंजन मिले सोवत जागी तू अथाह अद बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूर्ण रतनागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्तक आन तरयो प्रापागी कानड़ा महला पंजवा कुचल कठोर कपट कामी ज्यो जाने त्यों तार स्वामी रखाओ तू समरथ सरण जोग तू राख अपनी कल तार जाप ताप नेम सुसंजम नाही इन विदे छुटकार गर्त कोर अंध ते काढ हो प्रभ नानक नदर निहार कानड़ा महला पंजवा कार चौथा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद।

पंजवां तैन कहामन कौ कई केत है ऐसो जन बिरलोग है सेवक जो तत योग कौ बेत रहाओ दुख नाही सब सुख ही है रे एक है एकी नेत बुरा नहीं सब पला ही है रे हार नहीं सब जेत सोग नाही सदा हर की है रे छोड़ नाही किश लेत कहो नानक जान हर हर हर है।

अनक पांद की एक जाली, ताकि गंठ नहीं शोर आए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही शरण आए, काटे अज्ञान परम मोह माया, लियो कंठ लगाए, तानड़ा महला पंजवां, आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण आधार है, हरहाओ नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवार है, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल विखम नाम कर तार है, अगम पदार्थ लाल अमोला।

हर संतना की रेन हियो अर्प देन प्रभ पय है किरपेन मान वो त्याग छोड़े।

संगा आठ निग्रह अतरैत बिटंगा हौ रोग व्यापे चुके न पंगा काम क्रोध आत त्रिसन जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा मोहल्ला पंजवां कार सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद तिख बूझ गई गई मेरे साध जना पंच भागे चोर सहज सखैनो हरे गुण गावती गावती गावती दर्स प्यार रगाओ जैसी करी प्रा मोह्यो ऐसी हो कैसे करो यो तुम्हारे बल बले बल बले बल गई पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए प्रवतान तेरो केरो जित जंतन कर विचार अनक दास कीर्त करे तुहारी सोई मिलो जो पावत जन नानक ठाकुर रहो समाए एक तू ही तू ही तू ही कानड़ा मोहल्ला पंजवां कर अठवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्यागिए गुमान मान देखता दयाल लाल हां हां मन चर नरेन रखाओ हर संत मंत गोपाल ज्ञान ध्यान।

अधिकार सागर पद तमो मान अंध बिकल माया संग तंद कर गए प्रभ आप काढ़ हो राख लियो गोविंद राय अनाथ नाथ सनाथ संतन।

गोपाल नानक हरस ना गुण गाए कानड़ा मोहला पंजवा वार वार अनक डारो सुख प्रे सुहाग पलक रात रखाओ कनक मंदर पाठ सेज सखी।

ग्रेसे सुहावी अंगन चैना तोरो री तोरो पांच दूतन स्यों संग तोरो आए ना जाए बसे निज आसन ऊंद कमल बिगसोरो।

ओंकार सदगुर प्रसाद जप मन राम नाम सुख पावे गो ज्यों ज्यों जपे तवे सुख पावे सदगुर सेव समावे गो रखाओ भगत जिना की खिन खिन लोचा।

औरंगी सब एकत बचन चलावै गो गुरमुख एको एक पछाता गुरमुख होए लखावै गो गुरमुख जाए मिले निज महली अनहद शब्द बजावै गो जी जंत सब सिट्यो पाई गुरमुख शोभा पावै गो बिन गुर भेटे को मैल न पावै आए जाए दुख पावै गो अनेक जन्म बिछड़े मेरे प्रीतम कर कृपा गुरु मिलावै गो सदगुर मिलत महा सुख पाया।

तू है सदगुर, मैं सदगुर शरण मिलावै गो। कानड़ा मोहल्ला चौथा, मान गुरमत चाल चलावै गो। जो मैगल मस्त दीजे तर कुंडे, गुर अंकस सब

पूरन गुर गरड़ शब्द मुख पावे गो माया पुयंग तस नेड़ न आवे बिग चार चार लिवलावे गो स्वान लोभ नगर में सबला गुर खिन में मार कढ़ावे गो सत संतोख धर्म आन राखे हर नगरी हर गुण गावे गो पंकज मोह निगरत है प्राणी गुर निगरत काढ़।

हर मिल हो सतगुरु दया कर, मन वसै एकंकार, जिन गुरमुख सुन हर मनिया, जन नानक तिन जयकार। पौड़ी आराम नाम वखर है उत्तम, हर नायक पुरख हमारा, हर खेल किया हर आपे वरतै, सब जगत किया वणजारा, सब जोत तेरी ज्योति विच करते, सब सच तेरा पासारा, सब त्याव है

जस स्वामी तिन काटे पाप कटोना, तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत, मुख वड वडभाग वडोना, सब त्यावो आद सते, जुगाद सते, प्रतख सते, सदा सदा सते, जन नानक दास दसोना, सरोक महला चौथा, हमरे हर जग जीवना, हर जप्यो हर गुरमंत, हर अगम अगोचर अगम हर, हर मिलया आए अचिंत, हर आपे कड़ कड़ वर्तदा, हर आपे आप बेअंत, हर आपे सब रस भोगदा, हर आपे कवला कंत, हर आपे पिखिया पाएदा, सब सिट उपाई जी जंत।

हर प्रसज्जन नाम हर मैं मन तन नाम शरीर सब ऐसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन घर तीर पौड़ी हर उत्तम घरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जप दे हर घर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार समाले सब जी जंत हर वसे निट सब जौला सो बूझे जिस आप बुझाए सी जिस सदगुरु पुरख प्रसौला सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समोला सलोक महला चौथा सुत्या हर प्रवचेत मान हर सहज समा समाए जन नानक हर हर चाओ मान गुर तुठा मेले माए महला चौथा हर इकस स्थिति पिरहड़ी हर इको मेरे चित जन नानक एक आधार हर प्रभ एक सते गत पत पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजया आनंद मूल राम सब देखया गुर शब्दी गोविंद गजया आद जुगाद वेश घर एको मत गुरमत घर प्रभ भजया हर देव हो दान दयाल प्रभ जन राखो घर प्रभ लजया सब धन कहो गुर सदगुरु गुर सदगुरु जित मिलघर पड़दा कजया सलोक महला चौथा भगत सरोवर उछल सुबर परे वहन जिन्ना सदगुर मन्या जन नानक वड भाग लहन महला चौथा हर घर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाहे हर घर अगम अगाध हर जान केत विद मिले मिलाहे हर घर जस जपत जपंत जान एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लेहो लड़लाए पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर हुए सो वर्णिए तिस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सदगुर चढ़ साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सदगुरु जित मिल हर लेखा लिखा सलोक महला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिगे सदगुर पाए हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिनी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन पै नाइयन जिन हर मन वस्या आए जिन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर हर नाम निधान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सदगुर मिलिया आए तन मन शीतल होया सांत वसी मन आए नानक हर घर चौंदिया सब दाल दे दुख ले जाए पौड़ी हों वारिया तिन को सदा सदा जिन्ना सदगुर मेरा प्यारा देखिया तिन को मिलिया मेरा सदगुरु जिन को तुर मस्तक लेखिया हर अगम ते आया गुरमती तिस रूप नहीं प्रव रेखिया गुरभजन ते आया जिन्ना अगम हर ते ठाकुर सेव करल एकया साव कहो मुखो नर नर हरे नर नर हरे नर नर हरे हर लार भगत वसिखिया सलोक महला चौथा राम नाम राम रव रहे राम रामो राम रमीत घड़ घड़ आत्म राम है प्रभ खेल कियो रंग रीत हर निट बसे जग

रखाओ, सार संग जपन संग जम काल तस ना खावनो, मुगत जुगत अनक सुख हर भक्त लवे ना लावनो, प्रभ दर्श लुब्ध दास नानक बहुड़ जोन ना तावनो, कल्याण महला चौथा अष्टपदियां एक ओंकार सदगुर प्रसाद आरामा राम रामो सो मन पीजे, हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमत सहजे पीजे रघाव, काष्ट में जो है बैसंतर मथ संजम काड कढ़ीजे, राम नाम गए जो तसबाई तत गुरमत काड लईजे, नौ दरवाज नवे दर फीके रस अमृत दसवें चोईजे, कृपा कृपा कृपा कर प्यारे गुर सबदी हरस पीजे, काया नगर नगर है निको विच सौदा हरस कीजे, रतन लाल अमोल अमोल सदगुर सेवा लीजे, सदगुर अगम अगम है ठाकुर पर सागर भगत करीजे, कृपा कृपा कर दीन हम सारंग एक बूंद ना मुख दीजे, लालन लाल लाल है रंगन मान रंगन कौ गुर दीजे, आराम राम राम रंग राते रस रसक गटक निध पीजे, बसता शब्द दीप गए सागर

परस निपरस पै साधु जन जन हर भगवान दिखीजे सागत सूत बहु गुरजी परया क्यों करतान तनीजे तंत सूत केश निकसे नाही सागत संग ना कीजे सदगुरु साध संगत है निकी मिर संगत राम रवीजे अंत रतन जवे हरमान गुर किरपा ते लीजे मेरा ठाकुर वड्डा वड्डा है स्वामी।

रामो राम रवीजे, साधु साध साधन नीके, विल साधु हरंग की जय रघाओ। जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करीजे, कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थम मन को थम।

ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद राग प्रभाती विपास महला पहला चौप दे कर पहला नाए तेरे तरना नाए पद पूज नाओ तेरा गहना मत मकसूद नाए तेरे नाओ मने सब कोए विण नावे पद कभो न होए अवर स्याण सगली पाज जय बगसे तै पूरा काज रखाओ नाओ तेरा तान नाओ दीबान नाओ तेरा लश्कर नाओ सुल्तान नाए तेरे मान महत प्रवान तेरी नदरी कर्म पवे निशान नाए तेरे सहज नाए सालाह नाओ तेरा अमृत बिख उठ जाए नाए तेरे सब सुख वसे मने आए बिन नावे बादी जम पुर जाए नारी बेरी घर दर देश मन किया खुशिया की चैवेश या सदे ता ठिल न पाए नानक कूड़ कूड़ो होए जाए प्रभाती महला पहला तेरा नाम रतन कर्म चानन सुरत तिथे लोए अंधेर अंधी वापरे सगल लीजे खोए यो संसार सगल बेकार तेरा नाम दारू अवरनास्त करणहार अपार रघाओ पाताल पुरिया एक पार हो वह लाख करोड़ तेरे लाल कीमत ता पवे जा सिरे हो वह होर दुखा ते सुख उपजे सुखी हो वह दुख जित मुख तू सालाही है तित मुख कैसी भूख नानक मूर्ख एक तू अवर पला सहसार जित नाम न उपजे से तन होए खुवार प्रभाती महला पहला जय कारण बेब्रह्मे उचरे संकर छोड़ी माया जय कारण सिद्ध पय उदासी देवी।

मांगो हर गुण नानक रब तरह प्रभाती महला पहला आवत करे ना राख्या जावत क्यों राख्या जाए जिसते होवा सोई पर जाने जा उस ही माए समाए तू है वाहो तेरी रजाए जो करे सोई पर होए बा अवरण करना जाए रहाओ जैसे हरड़ की माला टिंड लगत है एक सखनी होर फेर भरियत है तैसो ही यो खेल खसम का जो उसकी वड्याई सुरती के मार्ग चल के उल्टी

पाई। सदा जल निर्मल मैल ना लागे, सच नाम चित लाई। सुख सीगार सतगुरु दिखाया, नाम वड्डी वड्याई। अखुट भंडार भरे कदे टोट ना आवे, सदा हर सेवो पाई। आपे करता जिसनु देवे, तिस वसे मन आए।

अंतर पायो गुरमंत दियो हर कान रखाओ आभो संत मेरो मेरे पाई मिल हर हर नाम वखान कित विद क्यों पाइये प्रभ अपना मोको करो उपदेश हरदान सत संगत मैं हर हर वसया मेरे संगत हर गुण जान वड़े भाग सत संगत पाई गुर सतगुर परस भगवान गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान जन नानक गौ गुर कृपा धारी हर नाम दियो खिनदान प्रभाती मोहल्ला चौथा उगवे सूर गुरमुख हर बोले सवरैन संभाले हर गाल हमरे प्रभ हम लोच लगाई हम

जप मन राम नाम रब रहे, दीन दयाल दो पंजन गायो, गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ, काया नगर नगर हर बस्यो, मत गुरमत हर हर सहे, शरीर सरोवर नाम हर प्रट्यो, कर मंदिर हर प्रव लहे, जो नर परम परम उदयाने, ते सागत मूड मोहे, ज्यों मृग नाभ बसे बास बसना, प्रम प्रम्यो चार गहे, तौं वट अगम अगाध बोध प्रभ, मत देवो हर प्रबलहे, जन नानक कौ गुर हासिर तरयो, हर राम नाम रब रहे, प्रभाती मोहल्ला चौथा, मन लागी प्रीत राम नाम, हर हर जप्यो हर प्रभ वडफा, सदगुर बचन सुखा ने ही अरे, हर तारी हर प्रभ कृपफा, मेरे मान भाज राम नाम हर निमुखफा, हर हर दान दियो गुरपूरे, हर नामा मन तन बसपा, रहाओ काया नगर वस्यो कर मंदर, जब सोभा गुरमुख करपफा, हलत पलत जन पये सुहेले, मुख उज्जल गुरमुख तरफा, आन पौ हर हर हर लिव लागी, हर उरतारे गुर निमुखफा, कोड़ कोड़ के दो सब जन के,

आठ जेवरी जन लिए छड़ाई रहाओ जोज न राता प्रभ कै रंग तिन सुख पाया प्रभ कै संग जे न रस आया सो ई जान पेख पेख मन में हैरान सो सुखिया

गुण गावत मन होए आनंद, आठ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कर मल जाहे, तिस गुर की हम चरणी पाहे, सुमत देव हो संत प्यारे, सिमरो नाम मोहे निस्तारे रखाओ, जिन गुर कहया मार्ग सीधा, सगल त्याग नाम हर गीदा, तिस गुर कह सदा बल जाइए, हार सिमरन जि गुर ते पाईए, बूढ़ प्राणी जिन गुरे तराया, जिस प्रसाद मोहे नी माया, हलत पलत जिन गुरे सवारिया।

अपार ब्रह्म आराधि अपने सदगुरु कै बल जाय। आगम अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाईए, लहा खाट होइए धनवंता अपना प्रभु ते आईए। आठ पैर पार ब्रह्म ते आई, सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ। पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती मोहल्ला पंजवा, सिमरत नाम किलभ सब नासे, सत नाम गुर दी नीरासे, प्रभ की दरगह शोभा बंते, सेव सेव सदा सोहंते। हर हर नाम जपो मेरे पाई, सगले रोग दोग सा बिनसै,

गुर गुर करत सदा सुख पाया, दीन दयाल भये कृपाला, अपना नाम आप जपाया, हरहाओ संत संगत मिल भया परगास, हर घर जपत पूर्ण पई आस, सर्व कल्याण।

जागरण करे होमे मैल उतार सदा जागे कर अपना रख है पंच सकर काढ है मार मन मेरे गुरमुख नाम ते आए जित मार घर पाईए मन से ही कर्म कमाए रखाओ गुरमुख सह तुन उपजे दुख होमे विच हो जाए हर नामा हर मन वसे है जे हर गुण गाए गुरमती मुख सोने

साध संग खल पंडित कंठ रमणी आराम राम माला हस ऊच प्रेम धारणी जीपन जो उत्तम श्लोक उदरणंग नयन नंदनी गुरमंत्र हीन अस जो प्राणी।

ज्ञानं हम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वायरण दयालं सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया।

कंद मूलं बसंते समीप कह रहे ततरगते संसार है नानक सोग हरखं व्यापते छलं शिदरं कोड़ विघ्नं अपराधं केल बेख मलं।

रमंत गुण गोविंद नित प्रतय तारण शरण स्वामी रामण सील परमेश्वर है करण कारण समर्थ है दान देत प्रापूर्ण है निराश आस करण सगल अर्थ आले है गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाचक है दुर्गम स्थान सुगमं महादुख सर्व सुखण है।

तहंत जनमं नेत नेत कथंत वेद ऊच मूच अपार गोविंद है संत साध हृदय अचुत बुझंत नानक बड़ पागी है उदयान बसनं संसारं संबंधी स्वान स्याल खर है विखम स्थान मन मोह मदरंग मां असाद पंज तस्तर है हीत मोह पय परम ब्राह्मणं अंग फांस तीक्षण कठन है पावक तो असाद कोरंग अगम तीर नय लंघन है पज साद संग गोपाल नानक हर चरण शरण उदरण कृपा कृपा क्रंत गोविंद गोपाल है सगलिंग रोग खंडन है सा संगेन गुण रमत नानक शरण पूर्ण परमेश्वर है श्यामलंग मधुर मानुखयंग हृदय पूम वायरण निवंत होवंत मिथ्या चेतनंग संत सुवजन है अचेत मूड़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रते छिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रास्ते अचंत पुरख कुटंब लीला नेत्यास विख्या विनोद प्रमंत प्रमंत भोजन महारयो शरण नानक करणामय हे जेबे हे रसगे मद्र प्रिया तोयंग सत हदंग परम बादंग अवर तिथ है सुध अशरण गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोर मतंग बलवंत बलाद कारण है चरण कमल नय पजंत तरण समान तिग जन्मन है

नानक कुल समूह उदाहरण है, सुंदर मंदर सैन है, जीन मध्य घर कीर्तन है, मुक्त रमन गोविंद है, नानक लब्ध अंग बड़ फागण है, हर लब्धो मित्र सुमितो, पिदारण कदे ना चित्तो, जा का अस्तिल तोल अमितो, तोई नानक सगा जी संग कितो, अबजसंग मिटंत सद पुत्र है, सिमरताब हृदय गुरमंत्रण है, प्रीतम भगवान अचुत नानक, संसार सागर तारण है, मरणंग विसरणंग गोविंद है, जीवनंग हर नाम तिहावण है, लवणंग सा संगेण, नानक हर पूर्व लिखण है, दसन बिहून भुयंगं, मंत्रंग गारड़ी निवारंग, प्याद उपाड़न संतंग, नानक लब्ध कर्मण है, जद कथ रमणंग, सरणंग सर्वत्र जीअण है, तस लगणंग प्रेम नानक, प्रसादंग गुरदर्शन है, चरणार बिंद मन विद्यंग, सिद्यंग सर्व कुशलण है, गाथा गावंत नानक, भव्यंग परा पूर्वण है, शुभ बचन रमणंग, गवणंग सा संगेण, उदरणंग संसार सागरंग, नानक पुनरप जन्म न लभ्यते, वेद पुराण शस्त्र विचारंग, एकंकार नाम उर्धारंग, उलय समूह सगल उधारंग, बड़भागी नानक को तारंग, सिमरणंग गोविंद नामंग, उदरणंग कुल समूहण, लब्ध्यंग सा संगेण, नानक बड़भागी पेटंत दर्शन, सर्व दोख परंग त्यागी, सर्व धर्म तिरंतन है, लब्धेन सा संगेण, नानक मस्तक लिखेण, होयो है होवंतो, हरण परण संपूर्ण, साधु सत्तम जानो, नानक प्रीत कारण, सुखेण बैन रत्नं, रचनंग सुंबरंगण, रोग सोग वियोगं, नानक सुख ना सुपन है, पुनः मोहल्ला पंजवा, एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, आद कलम अगर

सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचल खोजो ताके चरण कहो कद पाई है हर का सोई ज तन बताए सखी प्रयो पाई है नैन न देखे साध से नैन बेहालिया करन न सुनगी नाद करन मुंद कालिया।

की मौज में रहो अंत अर आद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, तैबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख के कहो तय ना को पतियाए, हर जैसा तैसा उही रहो हर

कस्तूरी भया पवर पए सबदास, ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास। कबीर गय गज परे कुटाम।

कबीर दावे दज होत है निर्दावे रहे निशंक, जो जन निर्दावे रहे तो गणे इंद्र सो रंक। कबीर पार समोहा सरवर भरा पी ना सके कोई नीर, भाग बड़े ते पायो तू पर पियो कबीर। कबीर प्रभाते तारे खिसे त्यों

पंडित जल मुए मूर्ख उबरे भाग कबीर संसा दूर कर कागद दे बिहाए बामन अखर सोधक हर चरणी चित लाए कबीर संत न छाड़े संतई जो कोट के मिले असंत मलयागर पोयंगम बेड़ेओ ता सीतलता नात जंत कबीर मन सीतल पया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन ज्वाला जग जा रहा तो जन के उदक समान कबीर सारी सिरजनहार की जाने नाही कोए कह जाने आपन तनी कह दास दीवानी होए।

प्याला खसम का जय भावे तय दे फरीदा जिन लोइन जग मोय से लोइन मैं डिठ कजल रेख ना सहदया।

पुछई तन सुहागण नाव सोहरे पेये कंत की कंत अगम अथा हो। नानक सो सुहागणी जो पावे बे परवाह नाती धोती संभही

साहिब सच्चे वेख बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान फरीदा जे तन भिरो ना उपजे तो तन जान मसान फरीदा एफस गंदला तरिया खंड लिवाड़ एक राय दे रह गए एक राधी गए उजाड़ फरीदा चार गवाया हंड कह चार

मैंडे कपड़े काला मैंडा वेश गुण ही परिया मैं फिरा लोक कहे दरवेश तत्ती तोय न पल्लव जेजल टुब्बी दे फरीदा जो डुहागन रब दी चूरेंदी चूरे जा कुआरी ता चाओ विवाही ता मामले फरीदा एहो पछोताओ वत कुआरी ना थी है कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज चिंजू बोड़न ना पीवे उड़न संधि डंज हंस उड़र कोदरे पया।

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद सवैये श्री मुख बाक महला पंजवां आदि पुरख करतार करण कारण सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल घट रहो बेआपे व्याप्त देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्व की रखिया करे आपे हर पत अविनाशी अवगत आपे आपे उत्पत एक तू ही एक आन नाही तुम पत हर अंत नाही पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाने हां के बाल बाल बाल बाल सद बलिहार अमृत प्रवाह सार अतुल भंडार पार परे ही ते परे अपर अपार पार अपनु भावन कर मंत्र ना दूसरो धर ओबद परलो एक नेमक तो कर आन नाही संसार उजियारो निर्मार कोट प्राशित जागे नाम लीगे हर हर जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाने हां के बाल बाल बाल बाल सद बलिहार सगल पवन तारे एक ते की ए बिस्तारे पूरे ओ सर्वमय आप है निरारे हर गुण नाही अंत पारे जी जंत सब थारे सगल को दाता एक अलख मुरारे आप ही धारण धारे कुदरत है देखारे वर्ण चेन नाही मुख नाम सारे जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाने हां के बाल बाल बाल बाल सद बलिहार सर्व गुण निधानं कीमत ना ज्ञानं ध्यानं ऊचे ते ऊचो जा नीजे प्रभ तेरो थानं मन तन तेरो प्राणं एक सूत है जहानं कम उपमा देओ बड़े ते बडानं जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ अकल कला है प्रभ सर्व को थानं जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाने हां के बाल बाल बाल बाल सद बलिहार निरंकार आकार अशल पूर्ण अविनाशी हरखवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जा को होए कृपाल सोजन प्रा तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जान जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परसयो छे जन्म मरण धोते रहो सत सत हर सत सत सत्ते सत पणिये दूसर आनना आवर पुरख पौरा तन सुनिये अमृत हर को नाम लयत मन सब सुख पाए जे रसन चाख्यो ते जन तृप्त अघाए जे ठाकर सो प्रसन्न पयो सत संगत ते प्यार हर गुरु नानक जिन परसयो तेन सब कुल कियो उधार सच सभा दी बाण सच सच्चे पै तरयो सच्चे तख्त निवास सच तपावस करयो सच सिरजो संसार आप अपुल न पुल्लो रतन नाम अपार कीम न पवे अमुल्लो जे कृपाल होयो गोविंद सर्व सुख तिन हु पाए हर गुरु नानक जिन परसयो ते बौड़ फिर जोन न आए कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विद उस्तत करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तिर कीम न परिये ब्रह्माद कसनकाद सिख गुण अंत न पाए आगो गयो नहीं जाए पूर सर्व रहो समाए जे काटी सिलक दयाल प्रभ हे जन लगे भगते हर गुरु नानक जिन परसयो ते एत उत सदा मुक्त प्रभ दाताओ दातार परयो जाच एक सरना मेरे दान संतरेन जे लग पौजल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देव दर्श मन चाओ भगत हो मन ठहरावे बलयो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर पवन में
जन नानक गुर पार ब्रह्म सवैये श्री मुख बाक महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काची दे मोहन बांधी सड़क ठोर कुचील कुगयानी तावत प्रमत रैन नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी जोबन रूप माया बद माता विचरत बिकल बडो अभमानी पर थान पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माए हेतानी बलवंच शब कर त्यो पाव पेखत सुनत प्रभ अंतर जामी सील धर्म दया सुच नास्त आयो शरण जी के दानी कारण करण समर्थ श्री धर रख लिहो नानक के स्वामी कीर्त करन सरन मन मोहन जोहन पाप विदारन कहो हर तारन तरन समरथ सबे बेद कुले समूह उदाहरण सौ चित चेत अचेत जान स संगत परम अंधेर मोहयो कद तो मूर्त करी तसा पर सिमरन राम नाम रसना संग लो होशो काज अल्प सुख बंधन कोट जन्म कहा दुख पाओ सिखिया संत नाम भज नानक राम रंग आत्म स्यों रो रंचक रेत खेद तन निर्मत दुर्लभ दे सुवार तरी खान पान सुधे सुख पुंचत संकट काट बिपत हरी मात पिता भाई अर बंधप बूजन की सब सूझ परी वर्धमान हो दिन प्रतनित आप तो निकट बिखम जरी रे गुण हीन दीन माया क्रिम सिमर स्वामी एक करी कर गए लो किरपाल किरपा निध नानक काट प्रम परी रे मन मूस बिला में गर्भत करतब करत महामुगना संपद दोल चोल संग चूलत माया मगन प्रमत खुगना सुध बंता साजन सुख बंधप ताश्यो मुह बड़ेओ सोखना बोयो बीज अंग मम अंकर बीतत औद करत अगना मृत मजार सारमुख निरखत उंचत पुगत पूख पुखना सिमर गोपाल दयाल सत्संगत नानक जग जानत सुपना एहन गेहन नेना नीता माया मत कहां लो गारो शतरन पतरन चौर न चावर बैती जात हृदय ना बिचारो रतन असवन गज सिंघासन छिन में त्यागत नांग सिधारो सूर्न बीरन मीर न खान संग न को दृट निहारो कोटन ओटन कोस न छोट करत विकार दू कर चारो मित्र ना पुत्र कलत्र साजन साख उल्टत जात बिरग की शारो दीन दयाल पुरख प्रापूरन छिन छिन सिमरो अगम अपारो श्री पदनाथ शरण नानक जान हे भगवंत कृपा करता रहो प्राण मान दान मग जोहन हित चीत दे ले ले पारी साजन सैन मी सुध पाई ताहु तेले रखी नरारी तामन पामन कूर कमान एवद करत औत तन जारी कर्म धर्म संजम सुच नेमा चंचल संग सगल बिदहारी पश पंखी बिरक अस्थावर बोबद जोन प्रम्यो अद पारी किन पचसा नामनी सिमरयो दीना नाथ प्राण पसारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कदकारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी ब्रह मादक शिव छंद मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख तारण गगन आतफुन तावत सिद्ध मानुख देव अर दानव एक दिलता को मर मन पावत प्रे प्राप्रीत प्रेम रस भक्ति हर जनता के दर्श समावत इसे त्याग आन को जाच है मुख दंत रस सगल कह जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत माया रंग बिरंग करत भ्रम मुख कूप गुबार परयो है एता गब आकाश ना मावत रिष्टा अस्त क्रिम उदर परयो है दैद ताए महा बिखिया कौ परतन छीन अज्ञान हरयो है जो बन बीत जरा रोग रस्यो जम दूतन डन मृत मरयो है अनक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख गर्त गरयो है प्रेम भगत उदरे से नानक
कर कृपा संत आप करयो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ पूर्ण होई आस हमारी। औखद मंत्र तंत्र पर दुखवर सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध माद मसर तृष्णा बिन सजाए हर नाम उचारी। इसनान दान तपन सुज किरिया चरण कमल हृदय प्रतारी। साजन मीत सख हर बंधप जी तान प्राण आधारी। ओढ़ गई स्वामी समर्थ है नानक दास सदा बलिहारी। आवद कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग। दावन बंध्यो ना जात विदे मन दर्स मग। पावक जरयो ना जात रहो जन तूर लग। नीर न साक्ष बोर चले घर पंथ पाग। नानक रोग दोख आग मोह छिदे घर नाम खग। उदम कर लागे बो भाती विचरे अनक सात्र बो खटुआ। पसम लगा तीर्थ बो प्रमते सूखम दे बंदे बो जटुआ। बेन घर भजन सगल दो पावत जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ। पूजा चक्कर करत सोम पाका अनक पांत फाटे कर थटुआ। सवाईगे महले पहले के एक ओंकार सदगुर प्रसाद। एक मान पुरख त्याए बरदाता संत सहार सदा बिखियात। ताज चरण ले हृदय बसावो तो परम गुरु नानक गुण गावो। गावो गुण परम गुरु सुख सागर दुर्त निवारण शब्द सरे। गावे गंभीर तीर मसागर जोगी जंगम ध्यान तरे। गावे इंद्राद भगत प्रहलादक आत्मराजन जान्यो। तब कलश जद गावो गुरु नानक राज जोग जिन मान्यो। गावे जिन काद जुगत जोगेसर हर्ष पूर्ण सर्व कला। गावे सनकाद साध सिधाधक मुन जन गावे अशरशला। गावे गुण तोम अटल मंडल वै भगत पाए रस जान्यो। काव काल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मान्यो। गावे कपलाद आद जोगेसर अपरंपर अवतार वरो। गावे जम दगन परसरामेसर कर कुठार रग तेज हरयो। उदो अक्रूर बिदर गुण गावे सर्वात्म जिन जान्यो। काव काल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मान्यो। गावे गुण वर्ण चार खड़ दर्शन ब्रह मादक सिमरंथ गुणा। गावे गुण शेष सहजे बारस आद अंतलिव लाग तुना। गावे गुण महान देव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जान्यो। काव कलश जस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मान्यो। राज जोग मान्यो बस्यो निर्वैर हृदंतर सिट सगल उदरी। नाम ले तरयो निरंतर गुण गावे सनकाद आज जिन काद जुग गए लग। तन तन गुर तन जन्म सक्यथ पलो जग। पाताल पुरी जय कार तुन तब जन कल वखाण्यो। हर नाम रसक नानक गुर राज योग तय मान्यो। सजुग तय मान्यो छल्यो बल बावन पायो। त्रेतय तय मान्यो राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो। उग्र सैन कौ राज अपहे भगते जन दियो। कल युग प्रमाण नानक गौर अंगद अमर कहायो। श्री गुरु राज अबचल अटल आद पुरख फुरमायो। गुण गावे रविदास भगत जय देव त्रिलोचन। नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन। भगत बेण गुण रवे सहज आत्म रंग माने। योग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर ना जाने। सुख देओ प्रीखित गुण रवे गौतम रिख जस गायो। काव कलश जस नानक गुर नित नवतन जग छायो। गुण गावे पायाल भक्त नागाद पोयंगम। महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम। गुण गावे मुन व्यास जिन वेद व्याकरण विचार। ब्रह्मा गुण उचरे जे हुकुम सब सिट सुवारी। ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाण्यो। जब कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन मान्यो। गुण गावे नवनाथ तन गुर सास समायो। मां धाता गुण रवे जेन चक्र वह कहायो। गुण गावे बलराव
ਸਬਦ ਪਾਤਾਲ ਬਸੰਤੋ ਭਰਤਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸੰਗ ਰਹੰਤੋ ਦੂਰਬਾ ਪਰੂਰੋ ਅੰਗਰੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਾਬ ਕਾਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੜ ਕੜ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ ਸਵਾਈਏ ਮਹੱਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਤਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮਰਥੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਨ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਤੁਮ ਤਰਿਓ ਜਿਨ ਹੱਥੋ ਤਾਂ ਤਰਿਓ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਸਹਿਜ ਆਮਿਓ ਉਠੋ ਛੱਜ ਸੁਰ ਨਾ ਗਾਣ ਮੁਨ ਬੋਝ ਅਗਾਜ ਮਾਰੋ ਕੰਟਕ ਕਾਲ ਗਰਜ ਤਾਪਤ ਲਈਓ ਬਰਜ ਪੰਚ ਭੂਤ ਏਕ ਕਰ ਰਾਖ ਲੈ ਸਮਾਜ ਜਗਜੀਤੋ ਗੁਰਦੁਆਰ ਖੇਲੇ ਸੰਤ ਸਾਰ ਰਾਥ ਉਨ ਮਨ ਲੇਵ ਰਾਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਉ ਕੀਰਤ ਕਲਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲੈਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਜਾ ਕੀ ਦਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਕਾਲ ਖਨ ਉਤਾਰ ਤੇਮਰ ਅਗਿਆਨ ਜਾਗੇ ਦਰਸ ਦੁਆਰ ਓਏ ਜੋ ਸੇਵੇ ਸਬਦ ਸਾਰ ਗਾਖੜੀ ਬਿਖਮਕਾਰ ਤੇ ਨਰ ਪਵ ਉਤਾਰ ਕੀਏ ਨਿਰਭਾਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਹਿਜ ਸਾਰ ਜਾਗੀ ਲੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਿਮਰੀ ਭੂ ਸਦੀਵ ਪਰਮ ਪਿਆਰ ਕਉ ਕੀਰਤ ਕਲਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲੈਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਤੈ ਤੋ ਦ੍ਰਿੜਿਓ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਬਿਮਲ ਜਾਸ ਬਥਾਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸੋ ਜਾਨ ਜੀਆਂ ਕੋ ਆਧਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਅਵਤਾਰ ਸਬਦ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰ ਰਹਿ ਜਗਤਰ ਜਲ ਪਦਮ ਵਿਚਾਰ ਕਲਪ ਤਾਰ ਰੋਗ ਵਿਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰ ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਤੇਰੇ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰ ਕਉ ਕੀਰਤ ਕਲਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲੈਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਤੈ ਤਾਂ ਹਦਰਤ ਪਾਇਓ ਮਾਨ ਸੇਵਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਾਧ ਅਜਗਰ ਜਿਨ ਕੀਆ ਉਨਮਾਨ ਹਰ ਘਰ ਦਰਸ ਸਮਾਨ ਆਤਮਾਵੰਤ ਗਿਆਨ ਜਾਣੀ ਅਕਲਗਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਾ ਕੀ ਦਿਸ਼ਟ ਅਚਲ ਠਾਣ ਬਿਮਲ ਬੁੱਧ ਸੁਥਾਨ ਪੈਰ ਸੀਲ ਸੁਨਾਹੋ ਸਖਤ ਬਿਦਾਰ ਕਉ ਕੀਰਤ ਕਲਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲੈਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਦ੍ਰਿਟ ਧਰਤ ਤਮ ਹਰਨ ਦੈਨ ਅਗ ਪਾਪ ਪ੍ਰਨਾਸਨ ਸਬਦ ਸੂਰ ਬਲਵੰਤ ਕਾਮ ਅਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਨਾਸਨ ਲੋ ਮੋਵਸ ਕਰਨ ਸਰਨ ਜਾਚਕ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣ ਆਤਮ ਰਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਕਹਿਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਟਾਲਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕ ਸਤ ਲਾਗੇ ਸੋ ਪੈ ਤਰੈ ਗੁਰ ਜਗਤ ਫਿਰਨ ਸੀ ਅੰਗਰੋ ਰਾਜ ਯੋਗ ਲੈਣਾ ਕਰੇ ਸਦਾ ਅਕਲ ਲਿਵ ਰਹਿ ਕਰਨ ਸਿਉ ਇੱਛਾ ਚਾਰ ਹੈ ਦ੍ਰਮ ਸਪੂਰ ਜਿਉ ਨਿਵੇ ਖਵੇ ਕਸ ਬਿਮਨ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਏ ਤਤ ਜਾਣਿਓ ਸਰਬਗਤ ਅਲਖ ਬਿੜਾਣੀ ਸਹਿਜ ਪਏ ਸੰਚਿਓ ਕਿਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਬਾਣੀ ਗੁਰਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਪਾਇਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਰਾਜ ਲਇਓ ਹਰ ਪਰਸਿਓ ਕਲ ਸੁਮੁਲਵੈ ਜਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਪਇਓ ਮਨ ਵਿਸਾਸ ਪਾਇਓ ਗੈਰ ਗੋ ਹਦਰਥ ਦੀਓ ਗਰਲ ਨਾ ਤਨ ਨਠਿਓ ਅਮਿਓ ਅੰਤਰਗਤ ਪੀਓ ਰਿਧ ਵਿਗਾਸ ਜਾਗਿਓ ਅਲਖ ਕਲ ਤਰੀ ਜੁਗੰਤਰ ਸਤਗੁਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਰਵਿਓ ਸਾਮਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਉਦਾਰੋ ਚਿੱਤ ਦਾਰਦ ਹਰਨ ਪੇਖਨ ਤੇ ਕਮਲ ਤ੍ਰਸਨ ਸਦ ਰੰਗ ਸਹਿਜ ਕਲ ਉਚਰੈ ਜਾ ਜੰਪੋ ਲੈਣੇ ਰਸਨ ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ ਸਮਾਧ ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋਹ ਹੈ ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਲ ਨਾਮ ਸੁਰ ਨਰੇ ਬੋਹ ਹੈ ਨਾਮ ਪਰਜਨ ਪਾਇਓ ਸਭ ਪ੍ਰਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਆਸੜ ਮੱਜਨ ਹੋਏ ਸਚ ਤੀਰਥ ਸਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਰ ਭੋਜਨ ਪਾਓ ਸਚ ਸਦਾ ਸਚ ਪਾਖੰਤ ਸੋਹ ਹੈ ਸਚ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਚ ਨਾਮ ਸੰਗਤੀ ਬੋਹ ਹੈ ਜਿਸ ਸਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਸਚ ਕਬ ਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸਚ ਜਨਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅਮੇਦ ਇਟ ਸੁਭ ਕਰੇ ਹਰੇ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੇ ਸਭੇ ਬਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰ ਖੋਵੈ ਗੁਰ ਨਾਮ ਨਦਰੀ ਆਓ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਤੋਵੈ
ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹੇ ਨਿਸ

पैर समाद सना हो ज्ञान गए आसन चढ़यो धर्म तनक कर गयो भगत सील है सर लड़यो पै निरपो हर अटल मान शब्द गुर ने जा गड्यो काम क्रोध लोभ मोह अवत पंच दूत बिखंडयो पलो पुहाल तेजो तना निरपतनाथ नानक बार गुर अमरदास सच सल भाण तय दल जितो इव युद्ध कर कण हर बूंद बसो रो मावल कुसुम बसंत गणंत न आवै रस करण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे उदर ध्यान ज्ञान सदगुर के।

फुट सतगुर प्रमाण बिद न सिरयो जग जस दूर बजायो गुर रामदास कल उचरै तै अपाए अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक तिहायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दिरड़ायो नामृद नाम निधान रिद सिता की दासी तय सरोवर मिलयो पुरख भेट्यो अविनासी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दिरड़ायो गुर रामदास कल उचरै तय खर प्रेम पदार्थ पायो प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबली ना हुटै सतगुर शब्द अथाहो अमे तारा रस गुटै मत माता संतोख पिता सर सहज समायो आजो नी संभवयो जगत गुर भजन तरायो अवगत अगोचर अपरपार मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उचरै तै जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण नव निधान भगते पौतारण अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिहे निवारण सहज तरोवर फलयो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागे ते मुक्ते पए सतगुर शब्द।

मुक्त न पावे। उर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे, उर कर शब्द सपुन अगन कटे सब तेरे। उर नैन बैन गुर गुर करो, गुरु सत कव नल कहे। जिन गुरु ना देखे नौ कियो, ते अक्यत संसार में।

गोविंदवाल गोविंदपुरी साम जलन तीर बपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को तो गुरु मुख देख गरु सुख पायो समरत गुरु सिर हथ तरयो गुर कीनी कृपा घर नाम दियो जे देख चिरन अगन हरयो निज बासर एक समान ध्यान तो नाम सुने सुद पान डरयो पण दास सुवास जगतर गुरु की पारस भेट परस करयो राम दास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हथ धरयो।

की सेव सेव सिद्ध साधक तोर असुर गण तरे ते तीस गुर बचन सुन कन रे पुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर करे तरे उपरे लाद गुर मिलत मुन जन रे तरे नारदास संकाद हर गुरमुखे तरह एक नाम लग तजो रस अन रे दास बेंत कहे नाम गुरमुख लहे गुरु गोर गुरु गोर गुरु जप मन रे श्री गुरु साहेब सभी ऊपर करी कृपा सहयुग जन त्रू पर श्री प्रहलाद भगत को धरियंग हस्त कमल माथे पर तरियंग अलख रूप जी लखिया ना जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी धारो मानस जन्म दे निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रापाई है गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी ते लैणा ताप जोत जग तारी लैणे पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले को दिया ते श्री रामदास थोड़ी फिर थप्यो हर का नाम अखय निध अप्यो अप्यो हर नाम अखय निध चो जुग गुर सेवा कर फल लईं बंधे जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूपोखण परण सतगुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण जे अमृत बजन बाणी साधु जन जपे करब चित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सबल संसार संसार सबल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पत जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ घर मुर बंचे जा की

तदकार मन गए अंध, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो, सेवक कहे भरपूर जुग जुग, वाह गुरु तेरा सब सदका, निरंकार प्रसदा सलामत, कहे न सके को तू कद का, ब्रह्मा विष्णु सिरे ते अगणित, तिनको मोह भया मन मत का, 84 लख जोन उपाई, निजक दिया सबहू कौ तद का, सेवक कहे भरपूर जुग जुग, वाह गुरु तेरा सब सदका, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसे आप ही चितवे, आपे चंद सूर परगासा, आपे जाल आपे थल थमन, आपे किया कड़कड़ बासा, आपे नर आपे फुन नारी, आपे सार आप ही पासा, गुरमुख संगत सबे विचार हो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना, तो जल थल गगन पयाल पूर रहया, अमृत ते मीठे जाके बचना, मन ब्रह्माद क्रुद राधक, काल का काल निरंजन जचना, गुर प्रसाद पाई गे परमार्थ, तत्संगत स्थिति मन खजना, किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाह गुरु तेरी सब रचना, अगम अनंत अनाद, आज कोई न जाने, शिव ब्रह्म तर ध्यान, नित्य से वेद बखाने, निरंकार निर्वैर, अवर नहीं दूसर कोई, पंजन गण समथ, तरन तारन प्रसोई, नाना प्रकार जिन जग कियो, जन मथरा रसना रस है, श्री सत नाम करता पुरख, गुर रामदास चित्ते बसे, गुरु समरथ गए करिया त्रुव, बुद्ध सुमत सुमारन कहो, उन त्रम तुजा फैरंत सदा, अग पुंज तरंग निवारण कहो, मथरा जन जान कई जी साच, तो और कशुना विचारन कहो, हर ना भूत बड़ो कल मैं, अवसागर पार उतारन कहो, संत ही सत संगत संग,

अवतार जय मसरा जगतारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो काल समुद्र पय रूप प्रट हर नाम उदाहरण बसे संत जिस दे दुख दर्द निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मान भजन जानियो पयो ते संसार सोई तारण गागन नव खंड मैं जो स्वरूपी रहो पार पान मसरा कछ पेद नहीं गुर अर्जन प्रतख हर अजय गंग जल अटल शिव संगत सब नहावे नित पुराण बांचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो मेरे नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो हर वंश जगत जस संचरयो तो कवन कहे श्री गुरु मोयो देवपुरी मैं गयो आप

ना पदार्थ पाया अतुट परे भंडार हर गुरबाणी उच्चर है अंत न पारावार नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश इथे ऊंग ना पुख है हर अमृत नाम सुखवास नानक दुख सुख व्याप्त नहीं जिथे आत्म राम प्रकाश काम क्रोध का चोलड़ा सब गले आए पाए एक उपजे एक बिन सजावे हुक्मे आवे जाए जमन मरण ना चुकई रंग लगा दूजे पाए बंधन बंद पवाईयन करना कछु न जाए जिनको कृपा तारियन तिना सतगुर मिलिया आए सतगुर मिले उल्टी पई मर जीव्या सहज सुपाए नानक भगती रत्या हर हर नाम सुमाए मानव चंचल मत है अंतर

बिन सतगुरु जमकाल ना छोड़ई, दूजे पाए खुवाई, जोबन जानदा नदर ना आवई, जर पहुंचे मर जाई, पोत कलत मोहित है, अंत बेली को ना सखाई, सतगुर सेवे सो सुख पाए, नाव से मन आई, नांग से वड्डे वड पागी, जे गुरमुख नाम समाई, मनमुख नाम ना चेतनी, बिन नावे दुख रोए, आत्मा राम ना पूजनी, दूजे क्यों सुख होए, होमे अंतर मैल है, शब्द न काढ़े धोए, नानक बिन नावे मैलिया मोए, जन्म पदार्थ खोए, मनमुख बोले अंधले, जिसमें अग्नि का वास, बाणी सुरत ना बुझनी, शब्द ना करे प्रगास, ओ ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं, गुर भजन न करे विश्वास, ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है, नित हर लिवसदा विगास, हर ज्ञानिया की रखदा, हम सब बलेगा रीतास, गुरमुख जो घर सेम दे, जन नानकता का दास, माया पुयंगम सर्प है, या केरिया बिखमाए, बेका मारण हर नाम है, गुर गारड़ शब्द मुख पाए, जिनको पूर्व लिखया, तिन सतगुर मिलया आए, मिल सतगुर निर्मल होया, बेखो में गया बिलाए, गुरमुखा के मुख उजले, हर दरगे शोभा पाए, जन नानक सदा कुर्बान तेन, जो चाले सतगुर पाए, सतगुर पुरख निर्वैर है, निध हिरदे घर लिवलाए, निर्वैरे नाल, वैर रचाएं अपने कर लू की लाए, अंतर क्रोध अंकार है, अनदिन जले सदा दुख पाए, कूड़ बोल बोल निध पौंक दे, बिख खादे दूजे पाए, बिख माया कारण परम दे, फिर घर घर पत कवाए, बेसवा केरे पूत ज्यों, पिता नाम तुझ जाए, हर घर नाम ना चेतनी, करते आप खुवाए, हर गुरम कृपा तारियन, जन विछड़े आप मिलाए, जन नानक तस बलिहारणे, जो सतगुर लागे पाए, नाम लगे से ऊबरे, बिन नावे जमपुर जागे, नानक बिन नावे सुख नहीं, आए गए पछतागे, चिंता ताप तरे गए, तामन पया आनंद, गुर प्रसादी बुझिए, सातन सुती नचिंद, जिनको पूर्व लिखया, तिना पेटिया गुर गोविंद, नानक सहजे मिल रहे, हर पाया परमानंद, सतगुर सेवन अपना, गुर सबदी विचार, सतगुर का पाणा मन लैन, हर नाम रखे उरतार, ऐथे उथे मनियन, हर नाम लगे वापार, गुरमुख शब्द संजाप दे, इत साचे दरबार, सच्चा सौदा खर्च सच, अंतर प्रेम प्यार, जम काल नेड़ ना आवई, आ बख्शे करतार, नानक नाम रते, चेतनवंत हैन, निरतन होर संसार, जन की टेक हर नाम हर, बिन नावे ठवर न ठाओ, गुरमती नाओ मन मसे, सहजे सह सुमाओ, वडभागी नाम त्याया, ऐस लागा पाओ, जन नानक मंगे तूड़ तेन, पौ सत कुरबाने जाओ, लग चौरासी मेदनी, किसना जलती करे पुकार, यो मोह माया सा पसरिया, नाल चले न अंती वार, बिन घर सांत न आवई, किस आगे करी पुकार, वडभागी सतगुर पाया, बुझिया ब्रह्म विचार, तिसना अगन सब बुझ गई, जन नानक हर उर तार, असी खते बहुत कमान दे, अंत न पारावार, हर कृपा करके बख्श लै हो, हों पापी वड गुनेगार, हर जियो लेखे वार न आवई, तू बख्श मिलावनगार, गुर तुठे गरपा मेलिया, सब किल कट विकार, जिन्ना हर घर नाम त्याया, जन नानक तिन जयकार, विछड़ विछड़ जो मिले, सतगुर के पय पाए, जन्म मरण चल पय, गुरमुख नाम त्याए, गुर साधु संगत मिले, हीरे रत्न लभन, नानक लाल अमोल का, गुरमुख खोज लहन, मनमुख नाम न चेत्यो, तिग जीवन तिग वास, जेदा दिता खाना पहनना, तो माना वस्यो गुणतास, यो मन शब्द न पेद्यो, क्यों होवे करवास, मनमुखिया दोहा गणी, आमन जान मुहियास,
ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗ ਹੈ ਮਸਤਕਮਣੀ ਲਿਖਿਆਸ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਉਰ ਤਾਰਿਆ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਉ ਸਭ ਬਲਿਗਾਰੀ ਤਾਸ, ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਸੋਈ ਜਿਨ ਸਿੱਜੈ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਏ ਕਰੇ ਬੋ ਕਰਮ ਵਿਗੁੱਤੇ ਪਾਏ ਦੂਜੇ ਪਰਜ ਵਗੋਈ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨਾ ਪਾਈਏ ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਕੋਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਆਤਵੜ ਉੱਚਾ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਉੱਚਾ ਹੋਈ, ਅੱਪੜ ਕੋਏ ਨਾ ਸਕਈ ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਕੋਈ, ਮੁਖ ਸੰਜਮ ਖੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵਈ ਤਰ ਪੇਖ ਪਵੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਜਾਏ ਚੜੈ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਅੰਤਰ ਆਏ ਵਸੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਮਾਨੀਏ ਸਾਚੇ ਸਾਚੀ ਸੋਏ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੁਖ ਸਾਗਰ ਹੈ ਬਿਗਦ ਉੱਤਰ ਤਰਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਪਚਮੋਏ ਹਉਮੈ ਕਰਤ ਵਿਹਾਏ, ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ ਹੈ

हथ न पाए मन मुख से ती संग करे मोह कालख दाग लगाए मोह काले तिन लोभिया जसन जन्म गवाए सत संगत हर मेल प्रभ हर नाम वसै मन आए जन्म मरण की मल उतर है जन नानक हर गुण गाए तुर हर प्रभ करत लिखया सो मिटना ना जाए जियो पिंड सब तिसदा प्रतपाल करे हर राय चुगल निंदक भुखे रुल मोए।

दूर। कथ न कथि न आवै तोट, कथ कथ कथि कोटि कोट कोट, देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसै वे परवाहो, साचा साहिब साच नाए, पाख्या पाओ अपार।

तीर जसुन यार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित टाल घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल जिन को नजर कर्म।

तेरी अनक तेरी अनक करे हर पूजा जी, तब तापै जपै बेअंता, तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत शास्त्र जी। कर किरिया खड़ कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू मात पुरख अपरंपर करता जी, तू जेवड़े अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चल करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साई, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू देह सोई हाँ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुद बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेख्या जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवरड़ पहिले निवासा, पानी पावक तिनह किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तैं डूबी अले, मन एक ना चेत समूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हाँ जति सती नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा, भई प्रापत मान खुदे हुरिया, गोविंद मिरन की यह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत पज केवल नाम।

जप तप संयम धर्म ना कुमाया, सेवा साधना जान्या हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो शर्मा। सोहेला राग गौड़ी देव की महला पहला, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीर्ति।

वासा अराग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मेर साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुनवड्डा है कर डंडौत पुनवड्डा है रहाओ साक तहारा साधना जानिया तन अंतरा हम मैं कंडा है ज्यो ज्यो चल है चुवै दुख पावै जम काल सह है सर डंडा है हर जन हर हर नाम समाने दुख जन मरण पव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेसर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ बड़ा है।

संत टहल की बेला, इहां खाड़ चलो हरलाहा, आगे बसन सोहेला। औद कटै दिन सुरै नारे, मन गुरमिल का सवारे रहाओ। एहो संसार बिकार संसे मैं, तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगा।

सब मिलै संसार, नाउ सदाए अपना होवै सिद्ध सुमार। जा पद लिखै ना पवै सबा पूज खुवार, जिन कौ सतगुर थापिया तिन मेट ना सकै कोए। ओना अंदर नाम निदान है, नामो प्रगट होए, नाउ पूजियै नाउ मनियै, अखंड सदा सच सोए। खेहू खेर लाइयै तां जियो केहा होए, जलियां सब सियाणपां उठी चलिया रोए। नानक नाम विसारिया डर गया क्या होए। श्री राग महला पहला।

साल बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ाओ, गुर हर ध्यान निहाल, गुर पौड़ी बेड़ी गुरु, गुर तुल्हा हर नाव, गुर सर सागर बोए थो, गुर तीर्थ दरियाओ, जित पावे उजली सतसर नावन जाओ। पूरो पूरो आखिए पूरे तख्त निवास, पूरे थान सुहावन है, पूरे आस निरास, नानक पूरा जे मिले क्यों घट गुणतास। श्री राग महला पहला। आवहो भैने गल मिल है अंक सह लिड़िया, मिलके करे कहानियां सम्राथ कंत किया। साचे साहिब सब गुण अवगुण सब असाहा, करता सब को तेरे जोर, एक शब्द बिचारी है जा तू ता क्या होर। रहाओ जाए पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी, सहज संतोख सिंगारिया मिठा बोलनी, पिररी सालू ता मिले जा गुर का शब्द सुनी। केतियां तेरियां कुदरती केवड़ तेरी दात, केते तेरे जी जंत सिफत करे दिन रात, केते तेरे रूप रंग केते जात्या जात। सच मिले सच उपजै सच मैं सच समाए, सुरत होवै पत उगवै गुर बचनी पौ खाए। नानक सच्चा पात साहो आपे ले मिलाए। श्री राग महला पहला। भली सरी जे उबरी होमै मुई कराहो, दूत लगे फिर चाकरी सतगुर का वेसाहो। कल्प त्यागी बाद है सच्चा वे प्रवाहो, मन रे सच मिले पौ जाए। पै बिन निरपौ क्यों थी गुरमुख शब्द समाए। रहाओ केता आखण आखी आखण तोट न होए, मंगण वाले केतड़े दाता को सोए। जिसके जी प्राण है मन वसे सुख होए, जग सपना बाजी बनी खिन में खेल खिलाए। संजोगी मिले किसे विजोगी उठ जाए, ज्योतिष पाना सो थिए अवर न करना जाए। गुरमुख वस्त वेसाही है सच वखर सच रास, जिन्नी सच वणजिया गुरपूरे साबास। नानक वस्त पछाण सी सत सबदा जिस पास। श्री राग महल पहला। तात मिलै फुनतात कहो सिफती सिफत समाए, लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ। सच मिले संतोखिया हर जपे कह पाए, पाई रे संत जना की रेण संत सभा गुर पाई है, मुक्त पदार्थ तेण। रहाओ ऊंचो थान सुहावना ऊपर महल मुरार, सच करनी दे पाई है दर कर महल प्यार। गुरमुख मन समझाई है आत्म राम विचार, तिरबद कर्म कमाई है आसंदेसा होए। क्यों गुरबिन तृप्ति छुट सी सहज मिलया है सुख होए, निज कर महल पछाणिए नदर करे मल धोए। बिन गुर महल ना उतरे बिन हर क्यों करवास, एको शब्द विचारी है अवर ते आगे आस। नानक देख दिखाई है हो सतबलिहार जास। श्री राग महला पहला। त्रिग जीवन दोहागणी मुठी दूजे पाए, कलर केरी कंध ज्यों अहनस किर टह पाए। बिन शब्द सुख ना उठी है पिर बिन दुख ना जाए, मुंदे पिर बिन क्या सिंगार। दर कर टोई ना लह दरगह झूठ खुआर। रहाओ आप सुजान ना भुलई सच्चा वड किरसान, पहला तरती साध कै सच नाम दे दान। नौ

अंतर की गत जानिए गुर मिलिए संको तार, मोया जित कर जाइए तित जीवन दे अमर मार। अनहद शब्द सुहावणे पाइए गुर विचार, अनहद बाणी पाइए तैहो मैं होए बिनाश, सतगुर सेवे अपना।

मन मानक निर्मोल है, राम नाम पत पाए, मिल सत संगत हर पाई है, गुरमुख हर लिवलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल सलल समाए, जिन हर हर नाम ना चेतियो सो अवगुणे आवै जाए, जिस सतगुर पुरख ना भेटियो सो पौजल पचै पचाए, एहो मानक जियो निर्मोल है, इउ कौडी बदलै जाए, जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान, गुर मिल पौजल लंगी है, दरगह पत प्रवान, नानक ते मुख उजले तुन उपजै शब्द निशान, श्री राग महला पहला, वणज करो वणजारियो वखर लेहो समाल, तैसी वस्त विसाही है जैसी निभ नाल, अगे साहो सुजान है लैसी वस्त समाल, पाई रे राम कहो चितलाए, हर जस वखर लै चलो सहो देखे पति आए, रहाओ जिन्ना

से विष्टा महे समाए, तिनका जन्म सफल है जो चलै सतगुरु पाए। कुल उधारै अपना धन जने दी माए, हर हर नाम त्याई है जिसनो कृपा करे रजाए। जिनी गुरमुख नाम ते आया विचों आप गवाए, ओए अंदरों बारों निर्मले सच्चे सच समाए। नानक आए से प्रवान है जिन गुरमति हर ते आए। श्री राग महला तीजा, हर भगता हर तन रास है गुरपूछ करै व्यापार। हर नाम सलाहन सदा सदा वखर हर नाम आधार। गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया, हर भगता अतुट भंडार। भाई रे इस मन को समझाए, ए मन आलस क्या करै गुरमुख नाम ते आए रहाओ। हर भगत हर का प्यार है जे गुरमुख करे विचार। पाखंड भगत ना हो वई दुबदा बोल खुवार। सो जन रलाया ना रलै जिस अंतर बिबेक विचार। सो सेवक हर आखिया जो हर राख उर तार। मंतन सौपे आगे धरे होमै विचों मार। तन गुरमुख सो प्रवान है जे कदे ना आवै हार। कर्म मिलै ता पाई है मिण कर मैं पाया ना जाए। लख चौरासी तरस दे जिस मेले सो मिले हर आए। नानक गुरमुख हर पाया सदा हर नाम समाए। श्री राग महला तीजा, सुख सागर हर नाम है गुरमुख पाया जाए। अंदर नाम त्याई है सहजे नाम समाए। अंदर रचै हर सच स्यों रसना हर गुण गाए। भाई रे जग दुखिया दूजै पाए, गुरसरनाई सुख लहै अंदर नाम त्याए रहाओ। साचे महल न लग गई मन निर्मल हर त्याए। गुरमुख शब्द पछाणिया हर अमृत नाम समाए। गुर ज्ञान प्रचंड बलाया अज्ञाना दे राजाए। मन मुख मैले मल भरे होमै तृष्णा विकार। बिन शब्द महल न उतरै मर जमै होए खुआर। धातर बाजी पलच रहे ना उरवार ना पार। गुरमुख जप तप संजमी हर कै नाम प्यार। गुरमुख सदा त्याई है एक नाम करतार। नानक नाम त्याई है सबना जिया का आधार। श्री राग महला तीजा, मनमुख मोहे व्यापिया बैराग उदासी ना होए। शब्द ना चीने सदा दुख हर दर गै पत खोए। होमै गुरमुख खोई है नाम रते सुख होए। मेरे मन अहनिस पूर रही नित्यासा, सतगुर से मोह पर जलै करी माए उदासा रहाओ। गुरमुख कर्म कमावे बिकसै हर बैराग आनंद। अहनिस भगत करे दिन राती होमै मारने चंद। वड्डे भाग सतसंगत पाई हर पाया सहजानंद। सो साधु बैरागी सोई हिरदै नाम वसाए। अंतर लागना तामस मूले विचों आप गवाए। नाम निधान सतगुरु दिखा लिया हर रस पिया आगाए। जिन किने पाया साध संगति पूरै भाग बैराग। मनमुख फिरै न जाने सतगुरु होमै अंदर लाग। नानक शब्द रते

अंतरों दुख भ्रम कटिए सुख प्राप्त होए, गुर कै पाणे जो चले दुख ना पावे कोई। गुर के पाणे विच अमृत है सहजे पावे कोए, जिन्ना प्रभ तिन पिया हमें विचों खोए। नानक गुरमुख नाम तिहाई है सच में लावा होए। श्री राग महला तीजा, जा पिर जाना अपना तन मन अगे धरे, सुहागणी कर्म कमाम दिया से ही कर्म करे। सहजे सच मिलावड़ा सच वडाई दे, भाई रे गुरबिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाए।

अध्यात्म कर्म जे करे नाम ना कभी पाए। गुर कै शब्द जीवित मरे हर नाम वसै मन आए। सुन मन मेरे भज सतगुर सरना गुर प्रसादी छूटी है। बिख भव जल शब्द गुर तरना रहाओ। त्रैगुण सबा धात है दूजा पाओ विकार। पंडित पड़े बंधन मोबादा न बुझे बिख्या प्यार। सतगुर मिले त्रिकुटी छूटै चौथे पद मुक्त द्वार। गुरते मार्ग पाई है चूकै मोह गुबार। शब्द मरे ता उदरै पाए मुख द्वार। गुर प्रसादी मिल रहे सच नाम करतार। एहो मनुमा अत सबल है छड़े ना किता यो पाए। दूजे पाए दुख लाएंदा बहुती देश जाए। नानक नाम लगे से उबरे होमै शब्द गवाए। श्री राग महला तीजा। कृपा करे गुर पाई है हर नामों दे दृढ़ाए। बिन गुर किने ना पायो बिरथा जन्म गवाए। मनम कर्म कमावणे दरगह मिले सजाए। मन रे दूजा पाओ चुकाए अंतर तेरा हर वसै। गुर सेवा सुख पाए रहाओ। सच बाणी सच शब्द है जां सच तरे प्यार। हर का नाम मन वसै होमै क्रोध निवार। मन निर्मल नाम ते आई है ता पाए मुख द्वार। होमै विच जग बिनसदा मर जमै आवै जाए। मनमुख शब्द ना जाननी जासन पत गवाए। गुर सेवा नाउ पाईए सच्चे रहे समाए। शब्द मन्या गुर पाईए विचों आप गवाए। अंदन भगत करे सदा साचे कील बिलाए। नाम पदार्थ मन वसिया नानक साई समाए। श्री राग महला तीजा। जिनी पुरखी सतगुरना सेवियो से दुखी जुगचार। कर होंदा पुरख ना पछाणिया अब मान मुठे अहंकार। सतगुरु क्या फिटकिया मंग थके संसार। सच्चा शब्द ना सेवियो सब काज सवारन हार। मन मेरे सदा हर वेख हदूर। जन्म मरण दुख पर हरे शब्द रया भरपूर। रहाओ सच सलाहन से सच्चे सच्चा नाम आधार। सच्ची कार कमावनी सच्चे नाल प्यार। सच्चा साहो वर्तदा कोई ना मिटन हार। मनमुख महल ना पाए नी कूड मुठे कूड यार। हमें करता जग मुवा गुरबन कोर अंधार। माया मोहे विसारिया सुखदाता दातार। सतगुर सेवै ता उबरै सच रखै उर तार। कृपा ते हर पाई है सच शब्द विचार। सतगुर से मन निर्मला होमै तज विकार। आप छोड़ जीवित मरे गुर कै शब्द विचार। धंधा तापत रह गए लागा सच प्यार। सचर ते मुख उजले ते साचा दरबार। सतगुर पुरख ना मन्यो शब्द ना लगो प्यार। इस नाम दान जेता करे दूजे पाए खुआर। हर जियो अपनी कृपा करे ता लागे नाम प्यार। नानक नाम समाल तू गुर कै है ते अपार। श्री राग महला तीजा। के सहो सेवी क्या जप करी सतगुर पूछो जाए। सतगुर का पाना मन लई विचों आप गवाए। एहा सेवा चाकरी नाम वसै मन आए। नामे ही ते सुख पाईए सच्चा शब्द सुहाए। मन मेरे आन दिन जाग हर चेत।

जो सच रहे लिव लाए, नदरी नाम ते आई है विण कर्मा पाया ना जाए। पूरा पाग सत संगत लहे, सतगुर पेटे जिस आए, आन दिन नामे रतिया दुख बिखिया विचों जाए। नानक शब्द मिलावड़ा नामे नाम समाए। श्री राग महला तीजा। आपना भाव दिन पाए उन जिन गुर का शब्द विचार, सत संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुणसार। दुबदा मैल चुकाई अन हर रख

जिन कर कारण धारिया सोई सार करे, गुर कै शब्द पछाणी जा आपे नजर करे, सेजन शब्दे सोहने ते सच्चा दरबार, गुरमुख सच्चा शब्द रते आप मेले करतार। गुरमती सच सलाहना जिसदा अंत ना पारा वार, घड़ घड़ आपे हुक्म वसै हुक्मे करे विचार, गुर शब्दी सलाही है हमें विचों खोए, सात अन्ना में बाहरी अवगणवंती रोए, सच सलाही सच लगा सचे नाए तृप्त होए, गुण विचारी गुण संग्रह अवगुण कड्डा धोए, आपे मेल मिलाएदा फिर विछोड़ा ना होए, नानक गुर सलाही अपना जिद्दू पाई प्रभ सोए। श्री राग महला तीजा। सुन सुन काम गहेलिए क्या चले बाल उड़ाए, अपना पिरना पछाणे क्या मोह दिसै जाए, जिनी सखी कंत पछाणिया।

दूजे पाए प्यार, माया जेवड़ दुख नहीं, सब भव थके संसार, गुरमति सुख पाईऐ सच नाम और धार, जिसनों मेले सो मिलै हौ तिस बलिहारै जाओ, ए मन भगती रतिया सच बाणी निज थाओ, मन रते जिह वरती हर गुण सच्चे गाओ, नानक नाम ना विसरै सच्चे महे समाओ, श्री राग महला चौथा घर पहला, मैं मन तन बिरहवा त्यागला, क्यों प्रीतम मिलै घर आए, जा देखा प्रभ अपना प्रभ देखिया दुख जाए, जाए पुछा तिन सज्जना प्रभ कित बिद मिलै मिलाए, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर ना कोए, हम मूर्ख मुक्त शरणागति कर कृपा मेले हर सोए, रहाओ सतगुर दाता हर नाम का प्रव्या मिला वै सोए, सतगुर हर प्रभ बुझिया गुर जेवड़े अवर ना कोए, हाँ गुर शरण आई टह पवां कर दया मेले प्रभ सोए, मन अठकने ना पाया कर उपाव थके सब कोए, सहस सियाण पकर रहे मन को रह रंग न होए, कूट कपटकने ना पायो जो बीजै खावै सोए, सबना तेरी आस प्रभ सब जी तेरे तू रास, प्रभ तुद्दो खाली को नहीं दर गुरमुखा नो साबास, बिख पाओ जल डुबदे कढ लै जन नानकी अरदास, श्री राग महला चौथा नाम मिलै मन तृप्तिऐ बिन नामै त्रिक जीवास, कोई गुरमुख सज्जन जे मिलै मैं दसे प्रभ गुणतास, हाँ तिस विटो चौखनी है मैं नाम करे प्रगास, मेरे प्रीतमा हाँ जीवा नाम ते आए, बिन नाम है जीवन ना थी है, मेरे सदगुर नाम दृढ़ाए, रहाओ नाम अमोल रतन है पूरे सदगुर पास, सदगुर से वै लगया कड रतन दे वै प्रगास, धन वट भागी वट भागिया जो आए मिले गुर पास, जिन्ना सतगुर पुरख ना भेटियो से भागहीन वसकाल, ओए फिर फिर जोन पवाई है विचविष्टा कर विकराल, ओना पास दवास ना पिटी है जिन अंतर क्रोध चंडाल, सतगुर पुरख अमृत सार वड भागी ना वै आए, उन जन्म जन्म की महल उतरै निर्मल नाम दृढ़ाए, जन नानक उत्तम पद पाया सतगुर की लिवलाए, श्री राग महला चौथा गुण गावा गुण विथरा गुण बोली मेरी माए, गुरमुख सज्जन गुण कारिया मिल सज्जन हर गुण गाए, हीरे हीर मिल बेदया रंग चलूलै नाए, मेरे गोविंदा गुण गावा तृप्त मन होए, अंतर प्यास हर नाम की गुर तुस मिलावै सोए, रहाओ मन रंग हो वड भागी हो गुर तुठा करे पसाओ, गुर नाम दृढ़ाए रंग स्यों हम सतगुर कै बल जाओ, बिन सतगुर हर नाम न लभई लख कोटी कर्म कमाओ, बिन भागा सतगुर ना मिलै घर बैठिया निकट नित पास, अंतरा ज्ञान दुख भरम है विच पड़दा दूर पई आस, बिन सतगुर भेटे कंचन ना थीऐ मनमुख लोह बूढ़ा बेड़ी पास, सतगुर बोहे थार नाम है कित बिद चढ़िया जाए, सतगुर कै पाणै जो चलै विच बोहित बैठा आए, तन तन वड पागी नानका जिन्ना सतगुर लै मिलाए, श्री राग महला चौथा हाँ पंथ दसाई नित खड़ी कोई प्रभ दसे तिन जाओ, जिन्नी मेरा प्यारा रावया तिन पीछे लाग फिराओ, कर मिन्नत कर जोदड़ी मैं परम रलै का चाओ, मेरे भाई जना कोई मोको हर प्रभ मेल मिलाए, हाँ सतगुर विटो वारिया जिन हर प्रभ दिया दिखाए, रहाओ होए निमाणी टह पावा पूरे सतगुर पास, निमाणिया गुरमान है गुर सतगुर करे साबास, हाँ गुरसा लाहे नर जऊ मैं मेले हर प्रभ पास, सतगुर नो सब को लोईदा जेता जगत सब कोए, बिन भागा दर्शन ना थी है भागहीन बैरोए, जो हर प्रभ पाणा सो थिया तुर लिखिया ना मिटै कोए, आपे सतगुर आप हरो आपे मेल मिलाए, आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए, सब जग जीवन जग आप है
ਨਾਨਕ ਜਲ ਜਲੈ ਸਮਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸ ਆਤ ਭਲਾ, ਕਿਤ ਬਿਧ ਮਿਲੈ ਰਸ ਖਾਏ। ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਤੁਸਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਏ। ਓਏ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਬੋਲਨੀ, ਹਉ ਮਲ ਮਲ ਤੋਵਾਂ ਤਿਨ ਪਾਏ। ਭਾਈ ਰੇ ਮਿਲ ਸੱਜਣ ਹਰ ਗੁਣ ਸਾਰ, ਸੱਜਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕੱਢੈ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ। ਰਹਾਓ ਗੁਰਮੁਖੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਤਿਨ ਦਇਆ ਪਈ ਮਨ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਚਨ ਰਤਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਨੇ ਸੋ ਹਰ ਰਸ ਖਾਏ। ਸੇਵੜ ਭਾਗੀ ਵੜ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਰਸ ਖਾਧਾ ਗੁਰ ਪਾਏ। ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਵਣ ਤਿਣ ਸਬਤ ਹੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਨਹੀਂ ਖਾਏ। ਬਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੱਲੈ ਨਾ ਪਵੈ, ਮਨਮੁਖ ਰਹੇ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਓਏ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਨਾ ਨਿਵੈ, ਓਨਾ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਲਾਏ। ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਆਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਹਰ ਰਸ ਹੋਏ। ਆਪ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇਵਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋਏ। ਸਭ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਵਸਿਆ ਮਨ ਸੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਦਿਨ ਸ ਚੜੈ ਫਿਰ ਆਥ ਵੈ, ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਜਾਏ। ਆਪ ਘਟੈ ਨਰ ਨਾ ਬੁਝੈ, ਨਿਤ ਮੂਸਾ ਲਾਇ ਟੁਕਾਏ। ਗੁਣ ਮਿੱਠਾ ਮਾਇਆ ਪਸਰਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਲਗ ਮਾਖੀ ਪਚੈ ਪਚਾਏ। ਭਾਈ ਰੇ ਮੈਂ ਮੀਤ ਸਖਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਪੁਤਕਲਾ ਤਮੋ ਬਿਖ ਹੈ, ਅੰਤ ਬੇਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ। ਰਹਾਓ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਲਿਵੇ ਉਬਰੇ, ਅਲਿਪਤ ਰਹੇ ਸਰਣਾਏ। ਓਨੀ ਚਲਣ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲਿਆ, ਹਰ ਖਰਚ ਲਿਆ ਪਤ ਪਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗੈ ਮੰਨੀਐ, ਹਰ ਆਪ ਗਏ ਗੱਲਾਏ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟਾ, ਦਰ ਠਾਕ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਏ। ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹਨ ਨਾਮ ਮਾਨੋ, ਨਾਮ ਰਹਿਣ ਲਿਵਲਾਏ। ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਦਰ ਵਜਦੇ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਏ। ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹਿਆ, ਤਿੰਨਾ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਸਾਬਾਸ। ਤਿੰਨ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇਹ ਪ੍ਰਭ, ਮੈਂ ਜਾਚਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਨਾਨਕ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ, ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਰਤਾ ਦੇਖ ਕੈ, ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਸਿੰਗਾਰ। ਰਸ ਭੋਗੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੈ, ਮਾਣੈ ਰੰਗ ਅਪਾਰ। ਬਹੁਤ ਕਰੈ

आओ कपड़ भोग लपटाया सोए ना रूपा खाक हैवर गैवर बहुरंगे किए रथ या थाक किसी चेतना पावही बिसरिया सब साक सिरजन हार भुलाया विणा वैना पाक लेंदा बद दुआए तू माया करे अकत जिसनो तू पति आईदा सोसन तुझे अनित अहंकार करे अहंकारिया व्यापया मन की मत तिन प्रभ आप भुलाया ना तिस जात ना पत सतगुर पुरख मिलाया इको सजन सोए हर जन का राखा एक है क्या मानस हम मैं रोए जो हर जन पावे सो करे दर फेर ना पावे कोए नानक रता रंग हर सब जग में चरण होए श्री राग महला पंजवा मन बिलास बौरंकणा दृढ़ पूल खुशियां छतर तार बादशाहियां विषय से परियां पाई रे सुख सा संग पाया लिखिया लेख तिन पुरख बिधात दुख सह समट गया रहाओ जेते थान थनंतरा तेते पावे आया तन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परिया हुक्म चलाए निसंग होए वरता या फरिया सबको वसगत कर लयो न बिना मैं खाक रलिया कोट ततीस सेवका सिद्ध साधक दर खरिया ग्रंग बारी वड साहबी सब नानक सुपन थिया श्री राग महला पंजवा पाल के उठ पपोलिया मिन बुझे मुगदया जान सो प्रभ चेतना आयो छुट्टे गी बेबान सतगुर सेती चित लाए।

कुदम करे पसपंखिया दिसै नाही काल ओतै साथ मनुख है फाथा माया जाल। मुक्ते से ही पाली है जे सच्चा नाम संभाल जो कर छड गवावना सो लगा मन माहे जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाहे फाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाहे कोई रख ना सकई दूजा को ना दिखाए चारे कुंडा पाल के आए पया सरनाए नानक सच्चे पातशाहे डुबदा लिया कढ़ाए श्री राग महला पंजवा। घड़ी मुहत का पाहुना का स्वरण हार माया काम व्यापिया समझे नाही गावार उठ चलिया पछताया परिया वस जंदार अंधे तू बैठा कंदी पाहे जे होवी पूर्व लिखिया ता गुर का बचन कमाहे रहाओ। हरी नाही नह डडरी पक्की वडन हार लै लै दाद पहुतिया लावे कर तैयार जां होवा।

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिन की शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवा, मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वसिया मन आए, अंतर जोत प्रगासिया एक सो लिवलाए। मिल साधु मुखी उजला पूर्व लिखिया पाए, गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचै नाए। मेरे मन गुर शब्द सुखोए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोए रहाओ। मन किया इच्छा पूरिया पाया नाम निधान, अंतर जम इसदा संग करना हर पिछान। गुरप्रसादी मुखी उजला जप नाम दान इसनान, काम क्रोध लोभ बिनसया तजिया सब मान। पाया लाहा लाभ नाम पूर्ण होए काम, कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम। आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरबान, सच महल कर पाया गुर का शब्द पहचान। भक्त जना को राखदा।

कीमत कहन ना जाइए सागर गुणी अथाहो, वड भागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाहो, कर सेवा सुख सागर है सिर साहा पातशाहो, चरण कमल का आसरा दूजा नाही ठाओ, मैं तर तेरी पार ब्रह्म तेरे तन रहाओ, निमाणिया प्रमाण तू तेरे संग समाओ, हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद, जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद, नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद। श्री राग महला पंजवां, प्रीत लगी ते

दीन दर्द दुख भंजना सेव कै सत पाए अचरज रूप निरंजनो गुरमे लाया माए पाई रे मीत करो प्रभ सोए माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोए रहाओ दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार सखा सहाय अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार बालक बिरद ना जानिए निचल तिस दरबार जो मंगिए सोई पाईए नेदारा आधार जिस पेखत किल विखे हरै मन तन होवै सांत एक मन एक ते आईए मन की लहे परांत गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जा की दात सदा सदा आराधिए।

मन्य पूर राख ले हो प्रभ करण हार, जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखण हार, महा बिकट जम पया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर मया। श्री राग महला पंजवां। मेरा तन यार तन मेरा, राज रूप मैं देश, सुधारा बंता अनेक बहुत रंग यार वेश। हर नाम हृदय न वसई, कार्य कित न लेख, मेरे मन हर हर नाम ते आए, कर संगत नित साध की गुर चरणी चित लाए रहाओ। नाम निदान त्याई है मस्तक हो वै पाग, कार्य सब सवारी है गुर की चरणी लाग। हौ मैं रोग भ्रम कटी है ना आवै ना जाग, कर संगत तू साध की अड़सठ तीर्थ नाओ।

लेकर आए आप प्रभु सब किसी से ही हाथ मारा पे जीवाल दा अंतर बाहर साथ नानक प्रभ शरणागति सर्व कटा के नाथ श्री राग महला पंजवा शरण पय प्रभ अपने गुरु होवा कृपाल सतगुर कै उपदेशे है बिनसे सर्व जंजाल अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल मन मेरे सतगुर सेवा सार करे दया प्रभ अपनी एक

पूरा थान थंतर रव रहया प्रभ मेरा भरपूर सच पातशाही अमर सच सच्चे सच्चा थान सच्ची कुदरत धारियान सच सिर जियोन जहान नानक जपिया सच नाम सदा सदा कुर्बान श्री राग महला पंजवा उद्दम कर हर जापना वडभागी तन खाट संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू सब चूके सोग संताप रहाओ जिस कारण तन तारिया सोपर डिठा नाल जल थल महियल पूरिया प्रभे अपनी

सुकृत मंदे संसार सगलाना, दुह हूं ते रहत भगत है कोई विरला जाना। ठाकुरो सर्वे समाना, क्या कहो सुनो स्वामी, तू मड़ पुरख सुजाना रहाओ। मान अभमान मंदे सो सेवक नाही, तत्सम दर्शी संतो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन एहो कीर्त करला, कथन कहन ते मुक्ता गुरमुख कोई विरला। गत अवगत कछ नजर ना आया, संतन की रेण नानक दान पाया। श्री राग महला पंजवां घर सतवां तेरा

पूरा सतगुर भेटिया बिनस्या सब जंजाल मेरे सतगुरा हाँ तुद विटो कुरबान तेरे दर्शन कहो बलिहार नै तुस दिता अमृत नाम रहाओ जिन तू सेव्या पाओ कर सही पुरख सुजान तिन्ना पिछे छुट्टी है जिन अमृत तिन्ना पिछे छुट्टी है जिन अंदर नाम निदान गुरजेवड़ दाता को नहीं जिन दिता आत्मदान आए से प्रवान है जिन गुर मिलिया सुभाए सच्चे से तीरत्या दरगह बैसन जाए करते हथ वडे आईया पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करन हार सच साहिब सच टेक सचो सच वखाणिया सचो बुद्ध बबेक सर्ब निरंतर रव रहया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवां गुर परमेसर पूजिय मन तन लाए प्यार सतगुर दाता जी का सब सह दे आधार सतगुर बचन कमावणे सच्चा एहो विचार बिन साधु संगत रत्या माया मोह सब शार मेरे साजन हर हर नाम संभाल साधु संगत मन वसै पूर्ण होवै काल रहाओ गुर समरथ अपार गुर वडभागी।

श्री राग महला पहला कर पहला अष्टपदियां एक ओवंकार सतगुर प्रसाद आख आख मन वावना ज्यों ज्यों जापै वाए जिसनों वाए सुनाई है सो केवड़ कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आख रहे लिवलाए बाबा अल्लहो अगम अपार पाकी नाई पाक थाए सच्चा परवदगार रहाओ तेरा हुक्म ना जापी केतड़ा लिख ना जाने कोए जे सौ सायर मेली है तिल ना पुजावै रोए कीमत कने ना पाईया सब सुन सुन आखे सोए पीर पै कामर सालक साधक सोंदे और शहीद शेख मसायक काजी मुल्ला दर दर वे सरसीद बरकत तिनको अगली पढ़दे रहन दरूद।

गणत गण आवने आईया सुभावे स्वीकार पाखंड प्रेम ना पाई है खोटा पाज खुवार हर जियो इउ पिरावे नार तुद पावन सोहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाओ गुरसबदी सिंगारिया तन मन पिर कै पास दोए कर जोड़ खड़ी तकै सच कह अरदास लाल रती सच पै वसी पाए रती रंगरास प्रेकी चेरी कांडी ऐ लाली माने नाओ साची प्रीतना तुटई साचे मेल मिलाओ शब्द रती मन वेदया हो सतबलिहार जाओ सा तन रंड ना बैसई जे सतगुर माहे समाए पेरी सालू नौ तनौ साचो मरै ना जाए नित रवै सुहागणी साची नदर रजाए साच धड़ी धन मांडी ऐ कपड़ प्रेम सिंगार चंदन चीत वसाया मंदर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार शोभा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार बिन पिर पुरख ना जानई साचे गुर कै हित प्यार निस अंधियारी सुतिए क्यों पिर बिन रहन विहाए अंक जलो तन जालियो मन तन जल बल जाए जा तन कंत ना राविया ता बिरथा जो बन जाए सेजै कंत महलड़ी सूती।

कथनी झूठी जग पवै रहनी शब्द सो सार केते पंडित जोत की बेदा करै विचार वाद विरोध सलाहने वादे आवन जान बिन गुर कर्म ना छुट सी कह सुने आख बखान सब गुणवंती आखी है मैं गुण नाही कोए हर वर नर सुहावनी मैं भावे प्रभ सोए नानक शब्द मिलावड़ा नावे छोड़ा होए श्री राग महला पहला जप तप संजम साधी है तीर्थ की चैवास पुन दान चंगियाईया बिनसा चे क्या तास जिहा राधे तिहा लुणै बिन गुण जन्म विनाश मुंदे गुण दा सिख होए अवगण त्याग समाई है गुरमत पूरा सोए रहाओ विनरा सीवा पारिया तके कुंडा चार मूल ना बूझै अपना वस्त्र ही कर बार विण वखर दुख अगला कूड़ मुठी कूड़ यार लाहा अहन सनौतना परखे रतन विचार वस्त लहै कर अपने चलै कारज सार वणजा रिया स्यों वणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार संता संगत पाई है जे मेले मिलन हार मिलिया होए ना विछड़ै जिस अंतर ज्योतिया पार सच्चा आसन सच रहै सच्चा प्रेम प्यार जिनी आप पछाणिया घर मैं महल सो थाए सच्चे से तीरतिया सचो पल्लै पाए त्रिपवन सो प्रभ जानिया साचो सचै नाए सातन खरी सुहावनी जिन पर जाता संग महली महल बुलाई है सोपर रावे रंग सच सुहागण सा भली पिर मोही गुण संग पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूंगर जाओ बन मैं पूली जे फिरा बिन गुर बूझ ना पाओ नामो पूली जे फिरा फिर आवो जाओ पुछो जाए पदाऊआ चले चाकर होए राजन जाने अपना दर कर ठाक ना होए नानके को रव रहया दूजा अवर ना कोए श्री राग महला पहला गुर ते निर्मल जानिया निर्मल देह शरीर निर्मल साचो मन।

सुखदाता दुख मेटनो सतगुर असर संगार भाव जल बिखम डरावनो ना कंधी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिसवंज मलार सतगुर पै का बोए था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरै दुख लागे सुख जाए जिहवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए घट बिनसै दुख अगलो जम पगड़ै पहताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत ना साथ बिनना मैं तन बाद है भूलो मार गयाथ साचो साहेब सेवियै गुरमुख कथो काथ आवै जाए पवाईऐ पया किरत कमाए पूर्व लिखिया क्यों मेटियै लिखिया लेख रजाए बिन हर नाम ना छुटियै गुरमत मिलाए मिलाए तिस बिन मेरा को नहीं जिसका जियो प्राण हम मैं ममता जल बलो लोभ जलो अभमान नानक शब्द विचारी पाइए गुणी निदान श्री राग महला पहला रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी जल कमले लहरी नाल पिछाड़ी है पी विकस असनेह जल मैं जियो पाए कै बिन जल मरन तनेह मन रे क्यों छूटे बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहया बक्से भगत भंडार रहाओ रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी मछली नीर ज्यों अदको त्यों सुखणो मंतन सांस शरीर बिन जल कड़ी न जीवई प्रभ जान अब पीर रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चात्रक में है सार पर थल हरी आवले एक बूंद न पवी के कर्म मिले सो पाई है किरत पया सिर देह रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी जल दोए आवटन आपे खवे दुध को खपन ना दे आपे मेल विशुनिया सच वड़ियाई दे रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मनमुख सोजी ना पवै गुरमुख सदा हजूर मनमुख गणत गणावनी करता करे सो होए ता की कीमत ना पवै जे लोचे सब कोए गुरमत होए ता पाई है सच मिले सुख होए सच्चा निहो ना टुटई जे सतगुर पेटै सोए ज्ञान पदार्थ पाई है तरपवन सोजी होए निर्मल नाम ना विसरै जे गुण का गहक होए खेल गए से पंखनू जो चुग दे सर तल घड़ी के मुहत के चलना खेलन अज के कल जिस तू मिलै सो मिलै जाए सचा पिड़मल बिन गुर प्रीत न उपजाए हों मैं मैल ना जाए सोहंग आप पिछाणिए शब्द भेद पति आए गुरमुखे आप पिछाणिए अवर के करे कराए मिलिया का क्या मेली है शब्द मिले पति आए मनमुख सो जी ना पवै विछड़ चोटा खाए नानक दर कर एक है अवरना दूजी जाए श्री राग महला पहला मनमुख भुलै भुलाई है भूली ठौर ना काए गुरबिन को ना दिखावई अंधी आवै जाए ज्ञान पदार्थ खोया ठग्या मुठा जाए बाबा माया परम पुलाए परम पुली डोहागनी ना पर्यंक समाए रहाओ भूली फिर

आपे हर जग जीवन दाता, आपे बस मिलाए, जी जनते क्या विचारे, क्या को वक सुनाए। गुरमुख आपे दे वड़ियाई, आपे सेव कराए, देख कुटुंब मोहे लोभाना, चल दिया नाल ना जाई। सतगुर सेव गुण निधान पाया, तिस दी कीम ना पाई, प्रभ सखा हर जियो मेरा, अंते होए सखाई। पेई अड़ै जग जीवन दाता, मनमुख पत गवाई, बिन सतगुर को मग न जाने, अंधे ठौर ना काई। हर सुख दाता मनी वसिया, अंत गया पछताई। पेई अड़ै जग जीवन दाता, गुरमत मन वसाया, अन दिन भगत करै दिन राती, हों मैं मोह चुकाया। जिस स्यों राता तै सो होवै, सच्चे सच समाया, आपे नदर करे भाव लाए, गुर सबदी बीचार। सतगुर सेवे सहज उपजाय, हमें तृष्णा मार। हर गुण दाता सद मन वसै, सच रखिया उर धार। प्रभ मेरा सदा निर्मला, मन निर्मल पाया जाए। नाम निदान हर मन वसै, हमें दुख सब जाए। सतगुर शब्द सुनाया, हम सद बलिहार जाओ। अपने मन चित कहे कहाई, अपने मन चित कहे कहाए, बिन गुरे आप ना जाई। हर जियो भगत मच्छर सुखदाता, कर कृपा मन वसाई। नानक सोभा सुरत दे प्रभ, आपे गुरमुख दे वड़ियाई। श्री राग महला तीजा, हमें कर्म कमावंदे, जम डंड लगे तिन आए। जे सतगुर सेवन से उबरे, हर से ती लिवलाए। मन रे गुरमुख नाम ते आए, तुर पूर्व करत लिखिया, तिन्ना गुरमत नाम समाए रहाओ। विण सतगुर प्रतीत ना आवई, नाम ना लागा उपाओ। सुपने सुख ना पावई, दुख में सवै समाए। जे हर हर कीचै बहुत लुचिया, कीर्तना मिटिया जाए। हर का पाना भगति मन्या, से भगत पय दर थाए। गुर शब्द दृढ़ावै रंग स्यों, बिन कृपा लया ना जाए। जे सौ अमृत नीरी है, पी बिखपल लागै ताए। से जन सच्चे निर्मले, जिन सतगुर नाल प्यार। सतगुर का पाणा कमाम दे, बिख हमै तज विकार। मन हठ कितै उपाय ना छूटिया, सिमरत शास्त्र सोधो जाए। मिल संगत साधु उबरे, गुर का शब्द कमाए। हर का नाम निधान है, जसंत ना पारा वार। गुरमुख से ही सोह दे, जिन कृपा करे करतार। नानक दाता एक है, दूजा और ना कोए। गुर प्रसादी पाई है, कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा, पंखी बिरख सुहावड़ा, सच उगै गुर पाए। हर रस पीवै सहज रहै, उड़ै न आवै जाए।

ब्रह्म के बेते शब्द पछाण है, हो मैं जात गवाई। सुर नर तिन की बाणी गावे, कोई न मेटे भाई। दैत पुत कर्म धर्म किछ संजम ना पड़े, दूजा पाओ न जाने। सतगुर भेटे निर्मल होवा, अंदन नाम वखाणे। एको पढ़े एको ना बूझे, दूजा अवर न जाने। खड़ दर्शन जोगी सन्यासी, बिन कोई परम भुलाए। सतगुर सेवै ता गत मित पावे, हर जियो मन वसाए। सच्ची बाणी से उचित लागे, आवन जान रहाए। पंडित पढ़ पढ़ वाद वखाणे, बिन गुर परम भुलाए। लख चौरासी फेर पया, बिन शब्द मुक्त ना पाए। जा नाव चेतै तांगत पाए, जा सतगुर मेल मिलाए। सत संगत में नाम हर उपजै, जा सतगुर मिलै सुभाए। मन तन अर्पी आप गवाई, चला सतगुर पाए। सतबलिहारी गुर अपने विटाओ, जे हर से तीचित लाए। सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे, हर से तीरंग राता। प्रभ निकट वसै सबना घट अंतर, गुरमुख वर लै जाता। नानक नाम मिलै वडियाई, गुर कै शब्द पछाता। श्री राग महला तीजा, सहजै नो सब लोई दी, बिन गुर पाया ना जाए। पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके, पेखी परम भुलाए। गुर भेटे सहज पाया, अपनी कृपा करे रजाए। भाई रे गुर बिन सहज ना होए, शब्द ही ते सहज उपजै, हर पाया सच सोए। रहाओ सहजे गाव्या थाए पवै, बिन सहजै कथनी बाद। सहजे ही भगति उपजै, सहज पैर प्यार बैराग। सहजे ही ते सुख शांत होए, बिन सहजै जीवन बाद। सहज सलाही सदा सदा, सहज समाध लगाए। सहजे ही गुणी उचरै, भगत करे लिवलाए। शब्दे ही हर मन वसै, रसना हर रस खाए। सहजे काल विडारिया, सशरण आई पाए। सहजे हर नाम वसिया, सच्ची कार कमाए। सेवड भागी जिनी पाया, सहजे रहे समाए। माया विच सहजन उपजै, माया दूजै पाए। मनमुख कर्म कमावणे, हौ मैं जलै जलाए। जमण मरण ना चुकई, फिर आवै जाए। त्रेह गुणा में सहज ना पाई है, त्रै गुण परम भुलाए। पढ़िए गुणिया क्या कथिए, जा मुंडों को था जाए।

स्वार्थ स्वाओ ना को करे, ना किश होवै काज, चित आवै ओस पार ब्रह्मो, ता निचल होवै राज। जा कहो चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग, ग्रस्त कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग। गौण करे चहो कुंटका, कड़ी ना बैसन सोए, चित आवै उस पर ब्रह्मो, तन मन शीतल होए। काम क्रोध मोहे वस किया, किरपन लोग प्यार, चारे किलवख उन अग किए, होवा असर संघार। पोथी गीत कवित किश कदे ना करन धरिया, चित आवै उस पर ब्रह्मो, ता निमख सिमरत तरिया। शास्त्र सिमरत वेद चार, मुखागर बिचरे, तपे तपी सर जोगिया। तीर्थ गमन करे खटकर में, खटकर माते दुगणे, पूजा करता नाए, रंग ना लगी पार ब्रह्म, ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया, रस भोगन विस्थार, बाग सुहावे सोहणे, चले हुक्म अफार। रंग तमासे बहु विधि, चाए लग रहया, चेतना आयो पार ब्रह्म, ता सर्व की जून गया। बहुत तनाड्या चारवंत, शोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत भाइया, साजन संग प्रीत। लश्कर तरकस बंद बंद।

भगवती रहत जुगता, योगी कहत मुक्ता, तपसी तप है राता, मुनि मोन धारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता, भगत नमह प्रकारा, पंडित वेद पुकारा, गृहस्थी ग्रस्त धर्माता, एक शब्दी बहुरूप अवधूता, कापड़ी कवते जागूता, एक तीर्थ नाता, निरहार वर्ती अपरसा, एक लूकना देवै दरसा, एक मन ही ज्ञाता, घाट ना किन्ही कहाया, सब कहते हैं पाया, जिस मेले सो भगता, सगल उगत उपावा, त्यागी शरण पावा, नानक गुर चरण पराता, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला कर तीजा, जोगी अंदर जोगिया, तू भोगी अंदर भोगिया, तेरा अंत ना पाया, सुर्ग मछ पयाल जियो, हौं वारी हौं वारण, कुर्बान तेरे नाम नो रहाओ, तुद संसार उपाया, सिरे सिर तंदे लाया, वेख कीताया अपना, कर कुदरत पासा ढाल जियो, प्रगट पहार है जापदा, सब नावै नो परतापदा, सतगुर बाज ना पायो, सब मोही माया जाल जियो, सतगुर कौ बल जाइए, जित मिले परम गत पाइए, सुर नर मुन जन लोच दे, सो सतगुर दिया बुझाए जियो, सत संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम वखाणिए, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो, एहो जगत परम भुलाया, आपो तो दुखवाया, प्रताप लगा दोहागणी, भाग जिना के नाही जियो, दोहागणी क्या निशानिया, खसमो कुथिया फिर निमाणिया, मैले वेस्त ना कामनी, दुखी रहन विहाय जियो, सुहागणी क्या कर्म कमाया, पूर्व लिखिया फल पाया, नदर करे कह अपनी, आपे लय मिलाए जियो, हुक्म जिन्ना नो मनाया, तने अंतर शब्द वसाया, सही आसे सोहागणी, जिनसै नाल प्यार जियो, जिन्ना पाणे कार रसाया, तन विचों परम चुकाया, नानक सतगुर ऐसा जानी है, जो सबसे ले मिलाए जियो, सतगुर मिलिया फल पाया, जिन विचों अह करण चुकाया, दुरमत का दो कटिया, भाग बैठा मस्तक आए जियो, अमृत तेरी बाणिया, तेरिया भगतां हृदय समाणिया, सुख सेवा अंदर रखे है, अपनी नजर करे निस्तार जियो, सतगुर मिलिया जानिया, जित मिलिया नाम वखाणिया, सतगुर बाज ना पायो, सब थकी कर्म कमाए जियो, हौ सतगुर विटों कुमाया, जिन परम पुला मार्ग पाया, नजर करे जे अपनी, आपे लय रलाए जियो, तू सबना माहे समाया, तन करता है आप लुकाया, नानक गुरमुख प्रगट होया, जाको जोत तरी करतार जियो, आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड दे साजिया, मेरा प्रभ सब किश पाया, आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड दे साजिया, अपने सेव की पैज रखिया, दोए कर मस्तक तार जियो, सब संजम रहे सियाण पा, मेरा प्रभ सब के जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोग करे जयकार जियो, सब संजम रहे सियाण पा, मेरा प्रभ सब के जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोग करे जयकार जियो।

मात्र पिता सुत ने कनेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करनी कर कराई राम नाम बिन मुक्त ना होई बुढ़ी दूजा हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छूटे गार चेत दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा पर जोबन मैं मत अहनस काम व्यापिया मन जा रहा मित्रा अंदले नाम ना चित राम नाम कट अंतर नाही होर जाने रस कस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही जनों मरोंगे झूठे तीर्थ वर्त सुच संजम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक भाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा तीजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा सरहंस अलथड़े आए जोबन कटै जरुआ जनैवन जा रहा मित्रा आप कटै दिन जाए अंत काल पछतासी अंदले जां जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिन मैं पया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाणप करे अवगण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चे तो लिवलाए चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा बिरद पया तन खीण अखी अंध ना दिसई वन जा रहा मित्रा कन्नी सुने ना वैण अखी अंध जीव रस नाही रहे परा को ताना गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे मन मुख आवन जाना खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै आए चले क्या मान कहो नानक प्राणी चौथे पहरे गुरमुख शब्द पछाण ओढ़ के आया तिन साहया वन जा रहा मित्रा जर जर वाणा कन एक रती गुण ना समाण आवन जा रहा मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संयम जावे चोट ना खावे ना तिस जमण मरना काल जाल जम जोहे ना साकै पाए भगत पै तरना पत सेती जावै सहज समावै सगले दुख मिटावै कहो नानक प्राणी गुरमुख छूटै साचे ते पत पावै श्री राग महला चौथा पहले पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा हर पाया उदर मझार हर त्यावै हर उचरै वन जा रहा मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपया राधे विच अग्नि हर जप जीविया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थीविया जिसकी वस्तु ते चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख विचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिया कृपा तार दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा मन लागा दूजे पाए मेरा मेरा कर पाली एवन जा रहा मित्रा ले मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाए जो देवे तसे न जाने मूड़ा दिते नो लपटाए कोई गुरमुख होवे।

मित्र, हर नामा हर ना संभाल, हर नामा हर हर कदे ना संभाल, जे होवै अंत सखाई, एहो तन संपै माया झूठी, अंत छोड़ चलिया पछताई।

सुंदर स्वामी धाम भगत विश्राम आसा लग जीवते जियो मन तन गुलतान सिमरत प्रभ नाम हर अमृत पीवते जियो अमृत हर पीवते सदा थिर थीवते बिखै बन फीका जानिया भय किरपाल गोपाल प्रभ मेरे साध संगत निद मानिया सर्ब सो सुख आनंद घन प्यारे हर तन मन अंतर सीवते एक तिल नहीं विसरै प्राण आधारा जप जप नानक जीवते डखणा जो तौ कीने अपने तिन्ना को मिले ओहे आपे ही आप मोए ओहो जस नानक आप सुने ओहे संत प्रेम ठगौरी पाए री जाए गोविंद मन मोया जियो संतन कै प्रसाद आगाद कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोहया दुख सब जोहया भगत लखन कर वस भए मन सर्व सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच पुजाया बौण ना माया होहया कर गए लीने नानक प्रप्यारे संसार सागर नहीं पोहया डखणा साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो जिन्ना भाग मथा है से नानक हर रंग मान दो संत कहते पवित्र सुनते सब धन लिखती कुल तारिया जियो जिन कौ साधु संग नाम हर रंग तिन्नी ब्रह्म विचारिया जियो ब्रह्म विचारिया जन्म सवारिया पूर्ण कृपा प्रभ करी कर गै लीने हर जसो दीने जो ना तावै नह मरी सतगुर दयाल कृपाल भेटत हरे काम करो लो मारिया कथ ना जाय अकथ स्वामी सद कह जाए नानक वारिया श्री राग महला चौथा वणजारा एक ओंकार सतनाम गुरप्रसाद हर हर उत्तम नाम है जिन सरिया सब कोय जियो हर जी सबे प्रतपालदा घट घट रमैया सोए सो हर सदा त्याई है तिसबिन अवर ना कोए जो मोहे माया चित लाएं दे से छोड़ चले दुख रोए जन नानक नाम त्याया हर अंत सखाई होए मैं हर बिने अवर ना कोए हर गुरसरण आई पाई है वन जारिया मित्रा वड भाग प्राप्त होए रहाओ संत जनामिन पाईया हर किने ना पाया नाओ विच हों मैं कर्म कमावंदे ज्यों वेसवा पुत निनाओ पिता जाता होई है गुर तुठा करे पसाओ वड भागी गुर पाया हर अहनस लगा पाओ जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीर्त कर्म कमाओ मन हर हर लगा चाओ गुरपूरै नाम दृढ़ाया हर मिलिया हर प्रभ नाओ रहाओ जब लग जोबन सास है तब लग नाम ते आए चल दिया ना

तोर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम ते आए। मन हर हर प्रीत लगाए वड भागी गुर पाया गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हर आपे आपो पाएंदा हर आपे देवै ले हर आपे परम भुलाएंदा हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है से विरले के हम बलिहारी तिन कहो जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया मन हर हर उठड़ाओ है मन हर हर जपन करे हर गुरसरण आई भज पाओ जिंदु। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ घट घट रमैया मन वसै क्यों पाई कित भत। गुरपुरा सतगुर भेटिया हर आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है हर नामे ते गत मत। मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामे ही जत पत। जन नानक नाम ते आया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत। रहाओ जिन कहो पूर्व लिखिया से आए मिले गुरपास। सेवक पाए वन जा रहा मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वन जवा पारिया जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिना पाया जिन्ना आप तुठा गुणतास। हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा। हर नाम जिन्ना रहरास रहाओ एक ओंकार। सतगुर प्रसाद श्री राग की वार महला चौथा श्लोका नाल श्लोक महला तीजा। रागां विच श्री राग है जे सच तरे प्यार। सदा हर सच मन वसै निश्चल मत अपार। रतन मोलक पाया गुर का शब्द विचार। जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा श्री रियाकार। नानक सच्चा सतगुर सेवै सदा सच वापार महला तीजा। होर बिरहा सब धात है जब लग साहिब प्रीत ना होए। एहो मन माया मोहया वेखण सुन ना होए। सह देखे बिन प्रीत ना उपजै अंधा क्या करे। नानक जन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी। हर एको करता एक एको दी बाण हर। हर एक सह दा है अमर एको हर चित तार। हर तिस बिन कोई नाहे डर भ्रम पौ दूर कर। हर तिसै नो सालाहे जे तुद रखै बाहर घर। हर जिसनो होए दयाल सो हर जप पौ बिखमतार। श्लोक महला पहला। दाती साहेब संधियां क्या चलै तिस नाल। एक जा गंदे ना लहन एक ना सुत्यां दे उठाल। महला पहला। सिदक सबूरी साधका सबर तो सा मलायका। दीदार पूरे पाए सा थाओ नाही खाएका। पौड़ी सब आपे तो दियो पाए कै आप कर लाई। तू आपे वेख वेखदा अपनी वड्याई। हर तुदो बाहर किश नाही तू सच्चा साई। तू आपे आवरदा सबनी थाई। हर तिसै त्यावो संत जनों जो ले छड़ाई। श्लोक महला पहला। फकड़ जाती फकड़ नाओ सबना जिया इका शाओ। आपो जे को पला कहाए नानक ता पर जापै जा पत लेखै पाए। महला दूजा। जिस प्यारे स्यो ने हो तिस आगै मर चलिया। त्रिग जीवन संसार ता कै पाछै जीवना पौड़ी। तुदे आपे धरती साजी है चंद सूरज दोए दीवे। दस चार हट तुद साजिया वापार करीवे। इकना नो हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे। तिन जम काल ना वे आपै जिन सच अमृत पीवे। ओए आप छुटे परवार सिओ तिन पिछे सब जगत छुटीवे। श्लोक महला पहला। कुदरत करके

सरै सरैयत करै बिचार, बिन बूझे कैसे पावै पार। सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद, जेह तिर देखा ते तिर मौजूद। महला तीजा गुरसभा एव ना पाई है, ना नेड़ै ना दूर। नानक सतगुर तां मिलै, जा मन रहै हदूर। पौड़ी सप्त दीप सप्त सागरा, नव खंड चार वेद दस अष्ट पुराणा। हर सबना वे तू वरदा, हर सबना पाणा। सब तुझै ते आवै जी जंत, हर सारंग पाणा। जो गुरमुख हरिया राज दे, तिन्हौ कुरबाणा। तू आपे आ वरदा, कर चोज विडाणा। श्लोक महला तीजा। कलो मसाजनी क्या सदाई है, हृदय ही लिख ले हो। सदा साहिब कै रंग रह, कऊ न तूट सने हो। कलो मसाजनी जाए सी, लिखिया पी ना ले जाए। नानक सह प्रीत ना जाए सी, जो तुर छोड़ी सचै पाए। महला तीजा। नदरी आमदा नाल न चलई, वेखो को वे उपाय। सतगुर सच दृढ़ाया, सच रहो लिवलाए। नानक सबदी सच है, करमी पल्लै पाए। पौड़ी

पाए, जब तब संयम पाणा सतगुरु का करमी पल्ले पाए। नानक सेवा सुरत कमावनी, जो हर भावे सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित सदा सुख होवै दिन राती। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित सिमर तो सब किल विख पाप लहाती। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित दाल दो दुख भुख सब लै जाती। हर हर नाम जपो मन मेरे, मुख गुरमुख प्रीत लगाती। जित मुख भाग लिखिया तुर साचै, हर तित मुख नाम जपाती। श्लोक महला तीजा, सतगुर जिनी ना सेवयो, शब्द ना कीतो विचार। अंतर ज्ञान ना आयो, मृतक है संसार। लख चौरासी फेर पया, मर जमै होए खुआर। सतगुर की सेवा सो करे, जिसनो आप कराए सोए। सतगुर विच नाम निधान है, कर्म प्राप्त होए। सच रते गुर शब्द सेओ, तिन सच्ची सदा लिव होए। नानक जिसनो मेले ना विछड़ै, सहि समावै सोए। महला तीजा, सो भगवती जो भगवंतै जाणै, गुर प्रसादी आप पछाणै। धावत राखै इकत कर आणै, जीवित मरै हर नाम वखाणै। ऐसा भगवती उत्तम होए, नानक सच समावै सोए। महला तीजा, अंतर कपट भगवती कहाए। पाखंड पार ब्रह्म कदे ना पाए, पर निंदा करे अंतर मन लाए। बाहर मल धोवे मन की झूठ ना जाए, सत्संग स्यों बाद रचाए। अंदिन दुखिया दूजे पाए रचाए, हर नाम ना चेतै बहु कर्म कमाए। पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए, नानक बिन सतगुर सेवे मोख ना पाए पौड़ी। सतगुर जिनी त्याया से कड़न सवाही, सतगुर जिनी त्याया से तृप्त आगाही। सतगुर जिनी त्याया तिन जम डर नाही, जिन का होवा कृपाल हर से सतगुर पैरी पाही। तिन ऐथै उथै मुख उजले, हर दरगह पैंदे जाही। श्लोक महला दूजा, जो सिर साई नानवै सो सिर दीजै डार। नानक जिस पिंजर

पौड़ी। सो ऐसा हर नाम त्याई है मन मेरे, जो सबना उपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो अंति अवसर ले छाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरमुख नाम जपिया वडभागी, तिन निंदक दुष्टो सब पैरी पाए। नानक नाम आराद सबना ते वड्डा, सब नामे अगे आण निवाए। श्लोक महला तीजा। वेस करे क्रूप को लखनी, मन खोटे कूड़ियार। पिर कै पाणे ना चले, हुक्म करे गावार। गुर कै पाणे जो चले, सब दुख निवारण हार। लिखिया मेट न सकिए, जो तुर लिखिया करतार। मन तन सौ पेकंत कहो, सब दे तरे प्यार। बिन नामे कने ना पाया, देखो हृदय विचार। नानक साह सुआल्यो सुलखणी, जे रावी सृजनहार। महला तीजा। माया मोह गुबार है, तिसदा ना दिसै और वार ना पार। मनमुख अज्ञानी महा दुख पाएं दे, डुबे हर नाम विसार। पाल के उठ बहु कर्म कमावै, दूजे पाए प्यार। सतगुर सेवै अपना, पौजल उतरे पार। नानक गुरमुख सच समावै, सच नाम उरतार। पौड़ी। हर जल थल महियल भरपूर, दूजा नाहे कोए। हर आप बै करे न्याओ, कूड़ियार सब मार कढोए। सचियारा दे वड़ियाई, हर धर्म न्याओ की ओए। सब हर की करो उसत, जिन गरीब अनाथ राख ली ओए। जयकार कियो धर्मिया का, पापी को दंड दी ओए। श्लोक महला तीजा। मनमुख मैली कामणी, कुलखणी कुनार।

जे दिन दिन अवध घटता है, मोर मोर कर अधकलाड़ धार, पेखत ही जमराव हसै। ऐसा तैं जग परम लाया, कैसे बुझै जा मोया है माया रहाओ। कहत कबीर छोड़ बिख्या रस, इत संगत नहिचो मरनार, मैया जपो प्राणी अंत जीवन बाणी। इन बिद पव सागर तरना, जात पावै ता लागै पाओ, भरम भुलावा विचों जाए, उपजै सहज ज्ञान मत जागै, गुर प्रसाद अंतर लिव लागै। इत संगत नाही मरना, हुक्म पछाण ता खसमै मिलना, रहाओ दूजा श्री राग त्रिलोचन का। माया मोह मन आगलड़ा प्राणी, जरा मरण पौ विसर गया, कुटुंब देख बिकसै कमला ज्यों, पर कर जो है कपट नरा।

तुमरी आस प्यासा तुमरी तुम ही संग मन लीना जियो। ज्यो बारक पीखी रिया गावै ज्यो निर तन तन देख सुख पावै। त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यो हर संग एहो मन पीना जियो। ज्यो अंधार है दीपक प्रगासा परता चितवत पूर्ण आसा। मिल प्रीतम ज्यो होत आनंदा त्यो हर रंग मन रंगीना जियो। संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गजाया। हर हमरा हम हर के दासे नानक शब्द गुरु साई दीना जियो। माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बिडार नहरिया। अवर साधु चक सगले देखे मन हर रस सब ते मीठा जियो। जो जो पीवै सो तृप्तावै अमर होवै जो नाम रस पावै। नाम निदान तसे प्राप्त जे शब्द गुरु मन मूठा जियो। जिन हर रस पाया सो तृप्तिया गाना जिन हर साध पाया सो नाहीं डोलाना। तिसै प्राप्त हर हर नामा जिस सबत जिस मस्तक पागीठा जियो। हर एक साथ आया वरसाने बहुतेरे तिस लग मुक्त पए कन्हेरे। नाम निदाना गुरमुख पाईऐ कहो नानक विरली डीठा जियो। माज महला पंजवा निद सिद रिद हर हर हर मेरा। जन्म पदार्थ गैर गंभीर है लाख कोट खुशिया रंग रावै जो गुर लागा पाई जियो। दर्शन पेखत पए पुनीता सगलो दारे पाई मीता। आगमा गोचर स्वामी अपना गुर कृपा ते सच त्याई जियो। जा को खोजै सर्वियो पाए वडभागी दर्शन को विरला पाए। ऊचा पारा गोचर थाना ओ मैल गुरु देखाई जियो। गहर गंभीर अमृत नाम तेरा मुक्त भया जिस दैव सेरा। गुरबंधन तिनके सगले काटे जा नानक सहि समाई जियो। माज महला पंजवा प्रभु कृपा ते हर हर त्यावो प्रभु दया ते मंगल गावो। उठत बैठत सोवत जागत हर त्याईया सगल अवरदा जियो। नाम औखद मोको साधु दिया किलब काटे निर्मल थिया। अनद भया निकसी सब पीरा सगल बिनासे दरदा जियो। जिसका अंग करे मेरा प्यारा सो मुक्ता सागर संसारा। सत करे जिन गुरु पछाता सो काहे कौ डरदा जियो। जब ते साधु संगत पाए गुर पेड़ तहो गई बिलाए। सा सा सर गावै नानक सतगुर ढाक लिया मेरा पड़दा जियो। माज महला पंजवा ओत पोत सेवक संगराता प्रप्रत पाले सेवक सुखदाता। पानी पखा पीसो सेवक कै ठाकर ही काया हर जियो। काट सिरक प्रभ सेवा लाया हुक्म साहिब का सेवक मन पाया। सोई कमावै जो साहिब पावै सेवक अंतर बाहर माहर जियो। तू दाना ठाकर सब जानै ठाकर के सेवक हर रंग मानै। जो किछ ठाकर का सो सेवक का सेवक ठाकर ही संग जाहर जियो। अपने ठाकर जो पहराया बहुर ना लेखा पुछ बुलाया। ते सेवक है नानक कुर्बानी सो गहर गंभीरा गौहर जियो। माज महला पंजवा सब किश घर मैं बाहर नाही। बाहर टोलै सो परम पुलाही। गुर प्रसादी जिनी अंतर पाया सो अंतर बाहर सुहेला जियो। चिम चिम वरसै अमृत धारा मन पीवै सुन शब्द बिचारा। अनद बिनोद करे दिन राती सदा सदा हर केला जियो। जन्म जन्म का विछड़िया मिलिया साध कृपा ते सूका हरिया। सुमत पाए नाम ते आए गुरमुख होए मेला जियो। जल तरंग ज्यों जलै समाया त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया।
कहो नानक परम कटे केवाड़ा बहु न होइए जौला जियो माज महला पंजवा तिस कुरबाणी जिन तू सुनिया तिस बलिहारी जिन रसना भणिया वार वार जाई तिस विटो जो मन तन तो द्यारा दे जियो तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चल नैन निहाली तिस पुरख दयाल मन देवा तिस अपने साजन जिन गुरमिल सो प्रभ ला दे जियो सेवड़ भागी जिन तुम जाने सब कै मद्दे अलिप्त निर्वाणे साध कै संग उन पौ जल तरिया सगल दूत उन साधे जियो तिन की शरण भरिया मन मेरा मान तान तज मोह अंधेरा नाम दान दीजे नानक कहो तिस प्रभ अगम अगा दे जियो माज महला पंजवा तू पेड़ साख तेरी फूली तू सूखम होवा असूली तू जल निद तू फेन बुद बुदा तुद बिन अवरना पालिए जियो तू सूत मणिए पी तू है तू गंठी मेर सिर तू है आद मद अंत प्रभ सोई अवरना कोय दिखा लिए जियो तू निर्गुण सरगुण सुखदाता तू निर्वाण रसिया रंग राता अपने कर्तव्य आपे जाने आपे तुद संभालिए जियो तू ठाकर सेवक फुन आपे तू गुप्त प्रगट प्रभ आपे नानक दास सदा गुण गावे एक पूरी नजर निहालिए जियो माज महला पंजवा सफल सो बाणी जित नाम वखाणी गुर प्रसाद किने विर लै जानी तन सो वेला जित हर गावत सुनना आए ते परवाना जियो से नेत्र प्रवान जिनी दर्शन पेखा से कर भले जिनी हर जस लेखा से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले हम बलतन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारे सा संखिन माहे उधारे किल विख काट हुआ मन निर्मल मिट गए आवन जाना जियो दोए कर जोड़िक बिनो करी जय कर कृपा डुबदा पत्थर लीजै नानक कौ प्रभ पै कृपाला प्रभ नानक मन पाणा जियो माज महला पंजवा अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो सुख पाया दुख दूर पराना संत रसन हर नाम वखाना जल थल नीर भरे सर सुबर बिरथा कोय ना जाए जियो दया तारी तिन सृजन हारे जी जंत सगले प्रतपारे मेहरवान किरपाल दयाला सगले तृप्त गाए जियो वन तृण त्रिपवन की तोन हरिया करण हार खिन पीतर करिया गुरमुख नानक तसै अराधे मन की आस पुजाए जियो माज महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदप तू मेरा प्राता तू मेरा राखा सब नी थाई ता पौ केहा काड़ा जियो तुमरी कृपा ते तुद पछाणा तू मेरी ओट तू है मेरा माणा तुझ बिन दूजा और ना कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो जी जंत सब तो देव पाए जिजत पाना तित तलाए सब किश कीता तेरा होवै नाही किश असाड़ा जियो नाम ते आए महा सुख पाया हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया गुर पूरे वजी वाधाई नानक जिता बिखाड़ा जियो माज महला पंजवा जी प्राण ब्रह्म ने अधारा भगत जीवै गुण गाए अपारा
गुण निदान अमृत हर नामा, हर त्याय त्याय सुख पाया जियो, मनसा तार जो करते आवे, साध संग जन मरण मिटावे, आस मनोरथ पूर्ण होवे, भेटत गुरदर साया जियो, आगम्या गोचर किस्मित नहीं जानी, साधक सिद्ध ते आवे ज्ञानी, खुदी मिट्टी चूका पोलावा, गुरमन ही मह प्रगटाया जियो, आनंद मंगल कल्याण निधाना, सुख सहज हर नाम वखाना, हुए कृपाल स्वामी अपना, ना ओ नानक कर मैं आया जियो, माझ महला पंजवा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, तू प्रीतम ठाकर अत भारी, तुमरे करतब तुम ही जाना, तुमरी ओट गोपाला जियो, गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत मन सगली खोवे, पेटत संग साध संतन कै, सदा जपो दयाला जियो, प्रभ अपना सास सास सुमारो, एह मत गुर प्रसाद मन धारो, तुमरी कृपा ते होए परगासा, सर्व मया प्रतपाला जियो, सत सत सत प्रभ सोई, सदा सदा सद आपे होई, चलत तुम्हारे प्रगट प्यारे, देख नानक पय निहाला जियो, माझ महला पंजवा, हुक्मी वरसन लागे मेहा, साजन संत मिल नाम जपेहा, शीतल सांस सह सुख पाया, ठांड पाई प्रभ आपे जियो, सब किश बहुतो बहुत उपाया, कर कृपा प्रभ सगल रिजाया, दात करो मेरे दातारा, जी जंत सब त्रापे जियो, सच्चा साहेब सच्ची नाई, गुर प्रसाद तिस दाते आई, जन्म मरण पै काटे मोहा, बिनसे सोख संतापे जियो, सास सास नानक सालाहे, सिमरत नाम काटे सफाहे, पूर्ण आस करी खन पितर, हर हर हर गुण जापे जियो, माझ महला पंजवा, आओ साजन संत मीत प्यारे, मिल गावे गुण अगम्या पारे, गावत सुनत सबे ही मुक्ते, सो त्याई है जिन हम किए जियो, जन्म जन्म के किल बिख जावे, मन चिंदे से ही फल पावे, सिमर साहेब सो सच स्वामी, रिजक सब सकौ दिए जियो, नाम जपत सर्ब सुख पाई है, सब पौ बिनसै हर हर त्याई है, जिन सेव्या सो पार ग्रामी, कार्ज सगले थिए जियो।

अमृत वर्ष है अनहद बाणी मन तन अंतर सांत समाणी तृप्ता गाय रहे जन तेरे सतगुर किया दिलासा जियो जिसका साथ तिसते फल पाया कर कृपा प्रभ संग मिलाया आवन जान रहे वडभागी नानक पूर्ण आसा जियो माज महला पंजवा मीहो पया परमेसर पाया जी जंत सब सुखी वसाया गया कलेश पया सुख साचा।

माज महला पंजवां सबे सुख पए प्रभु तुठे गुरपुरे के चरण मन उठे सह समाध लगी लवे अंतर सोरा सोई जाने जियो आगमा गोचर साहिब मेरा कड़कड़ अंतर वर्त नेरा सदा लिप्त जिया का दाता को बिरलाया पछाने जियो प्रमृण की है निशानी मन को सच्चा हुक्म पछाणी सह संतोख सदा तृप्ता से अंध खसम कह पाने जियो हथी दिती प्रभ देवन हार जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माने जियो माज महला पंजवा कीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार की आतन करता दुखा डेरा टाहया जियो मंतन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा थान न दिसै कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो जो किश करे सो आपे आपै बुद्ध सियाणप किशु ना जापै अपनिया संतां नू आप सहाई प्रभ भरम भुलावा लाया जियो चरण कमल जन काया धारो आठ पहर राम नाम वापारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जे सच धियाई है सोरदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा धरत सुहावी जित वसै हर जन सच्चे नाम विटों कुर्बानो जियो सच वडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म ना कहना जाई त्याए त्याए जीवै जन तेरे सच शब्द मन मानो जियो सासा लाहन वट पागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरा तुद भावै सच नाम निशानो जियो सच्चे अंतना जाने कोई थान थन अंतर सच्चा सोई नानक साहित्य आई है सदही अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला कड़ी मूर्त सिमरत पल वन्या जीवन सफलत थाई जियो सिमरत नाम दोग सब लाथे अंतर बाहर हर प्रभ साथे पै पाओ परम खोया गुरपूरै देखा सबनी जाई जियो प्रभ समरथ वाडी ऊचा पारा नौनद नाम परे पंडारा आद अंत मध प्रभ सोई दूजा लवै न लाई जियो

ब्रह्म जो सदी से वह सो गुरमिल ने चल कहना। प्रेम भगत जिसके मन लागी गुण गावे अंदन जागी बहा पकड़ो ते स्वामी मिले जिसके मस्तक लेना। चरण कमल भगता मन मुठे विन परमेश्वर सगले मुठे संत जना की धूड़ नित बांछे नाम सचे का गहना। उठत बैठत हर हर गाइए जे सिमरत वार ने चल पाइए नानक प्रभु है दयाला तेरा कीता सहना। राग माज अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। शब्द रंगाए हुक्म सबाए सच्ची दरगह महल बुलाए सच्चे दीन दयाल मेरे साहेबा सच्चे मन पतिया बनिया। हाँ वारी जियो वारी शब्द सुहावणिया अमृत नाम सदा सुखदाता गुरमती मन वसावणिया रहाओ। ना को मेरा हों किसकेरा साचा ठाकरो त्रिपवन मेरा हों मैं कर कर जाए कनेरी कर अवगण पछोतावणिया। हुक्म पछाणे सो हर गुण वखाणे गुर कै शब्द नाम निशाणे सबना कादर लेखा सच्चै। छूटस नाम सुहावणिया मनमुख पूला ठौर ना पाए जमदर बद्दा चोटा खाए। बिन नामै को संग ना साथी मुक्ते नाम ते आवणिया सकत कूड़े सच ना भावै दुबदा बांदा आवै जावै। लिखिया लिखना मेटै कोई गुरमुख मुक्त करावणिया पेयड़ै पिर जातो नाही झूठ विछुन्नी रोवै ताही। अवगण मुठी महल ना पाए अवगण गुण बख्सावणिया पेयड़ जन जाता प्यारा गुरमुख बूझै तत बिचारा। आवण जाना ठाक रहाए सच्चा नाम समावणिया गुरमुख बूझै कथ कहावै सच्चे ठाकर साचो पावै। नानक सच कहै बेनंती सच मिलै गुण गावणिया माज महला तीजा कर पहला। कर्म होवै सतगुरु मिलाए सेवा सुरत शब्द चित लाए। हौ मैं मार सदा सुख पाया माया मोह चुकावणिया हौ वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारणिया। गुरमती प्रगास हुआ जी अंदर हर गुण गावणिया रहाओ तन मन खोजे ता ना उपाए तावत राखे ठाक रहाए। गुर की बाणी अंदन गावै सहजे पद करावणिया इस काया अंदर वस्त असंखा गुरमुख साच मिलै ता वेखा। नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द वजावणिया सच्चा साहेब सच्ची नाई गुरप्रसादी मन वसाई। आन दिन सदा रह रंगराता दर सच्चा सोजी पावणिया पाप पुन की सार न जानी दूजै लागी परम भुलाणी। अग्ञानी अंदा मग न जाने फिर आवन जावने आ गुर सेवा ते सदा सुख पाया हौ मैं मेरा ठाक रहाया गुरसाखी मिटिया अंधियारा बजरक पाड़ खुलावने आ। हौ मैं मार मन वसाया गुर चरणी सदा चित लाया गुर कृपा ते मन तन निर्मल निर्मल नाम ते आवने आ। जीवन मरना सब तो दैताई जिस बख्शे तिस दे वड़ियाई नानक नाम ते आए सदा तू जम्मण मरण सवारणिया। माज महला तीजा मेरा प्रभ निर्मल अगम्या पारा बिन तकड़ी तोले संसारा गुरमुख।

कर अवगण पछोतावणिया, मनमुख अंधे किछु ना सूझै, मरण लिखाए आए नहीं बूझै, मनमुख कर्म करे नहीं पाए, बिन नावै जन्म गवावणिया। सच करनी शब्द है सार, पूरे गुर पाईए मुख द्वार, अंदर बाणी शब्द सुनाए, सच राते रंग रंगावणिया। रसना हर रस राती रंग लाए, मंतन मोया सहज सुभाए, सहजे प्रीतम प्यारा पाया, सहजे सहज मिलावणिया। जिस अंदर रंग सोई गुण गावै, गुर कै शब्द सहजे सुख समावै। हाँ बलिहारी सात निविटों, गुर सेवा चितलावणिया। सच्चा सचो सच पतीजै, गुर प्रसादी अंदर भीजै, बै सुथान हर गुण गावै, आपे कर सत मनावणिया। जिसनो नजर करे सो पाए, गुर प्रसादी हों मैं जाए, नानक नाम वसै मन अंतर, दर सच्चै सोभा पावणिया। माज महला तीजा, सतगुर सेवे है वड्डी वड्याई, हर जी चिंत वसै मन आई, हर जियो सफलियो बिरख है अमृत, जिन पीता तिस्त खल हावणिया। हां वारी जियो वारी, सच संगत मेल मिलावणिया, हर सत संगत आपे मिलै, गुर सबदी हर गुण गावणिया। रहाओ सतगुर सेवी शब्द सुहाया, जिन हर का नाम मन वसाया, हर निर्मल हों मैं मैल गवाए, दर सच्चै सोभा पावणिया। बिन गुर नाम ना पाया जाए, से साधक रहे बिल लाए, बिन गुर सेवे सुख ना होवी, पूरे पा गुर पावणिया। एहो मन आरसी कोई गुरमुख वेखै, मोरचा ना लागै जाहो मैं सुखै। अनहत बाणी निर्मल शब्द बजाए, गुर शब्दी सच समावणिया। बिन सतगुर केहो ना देखिया जाए, गुर कृपा कर आप दिता दिखाए, आपे आप मिल रहिया, सहजे सहज समावणिया। गुरमुख होवै सो इक सिसो लिवलाए, दूजा भरम गुर शब्द जलाए, काया अंदर वणज करे वापारा, नाम निधान सच पावणिया। गुरमुख करनी हर कीर्त सार, गुरमुख पाए मोख द्वार, अंदर रंग रता गुण गावै, अंदर महल बुलावणिया। सतगुर दाता मिलै मिलाया, पूरे भाग मन शब्द वसाया, नानक नाम मिलै वड्याई, हर सच्चे के गुण गावणिया। माज महला तीजा, आया वंजाए तां सब कुछ पाए, गुर शब्दी सच्ची लिवलाए, सच वणंजै सतसंगरै, सचवा पार करावणिया। हाँ वारी जियो वारी, हर गुण अंदन गावणिया, हाँ तेरा तू ठाकर मेरा, शब्द वड्याई देवणिया। रहाओ वेला वक्त सब सुहाया, जे सच्चा मेरे मन पाया, सच्चे सेवै सच वड्याई, गुर कृपा ते सच पावणिया। पाओ भोजन सतगुर तुठै पाए, अनरस चूकै हर रस मन वसाए, सच संतोख सहज सुख बाणी, पूरे गुरते पावणिया। सतगुर ना सेवै मूर्ख अंद गवारा, फिर ओए किथो पाए न मुख द्वारा। मर मर जमै फिर आवै, जमदर चोटा खावणिया। शब्दै सा जाणै ताया पछाणै, निर्मल बाणी शब्द वखाणै, सच्चे सेव सदा सुख पाए न, नौ निध नाम मन वसावणिया। सो थान सुहाया, जो हर मन पाया, सत्संगत बै हर गुण गाया, अंदन हर साला है साचा, निर्मल नाद वजावणिया। मनमुख खोटी रास खूटा पासारा, कूड़ कमावन दुख लागै भारा, भरमे भूले फिरन दिन राती, मर जन्मै जन्म गवावणिया। सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरे गुर कै शब्द आधारा, नानक नाम मिलै वड्याई, दुख सुख सम कर जाननिया। माज महला तीजा, तेरियां खाणी तेरियां बाणी, बिना मैं सब परम भुलाणी, गुर सेवा ते हर नाम पाया, बिन सतगुर कोई ना पावणिया। हाँ वारी जियो वारी, हर सेती चित लावणिया, हर सच्चा गुर भगती पाईऐ, सहजे मन वसावणिया। रहाओ सतगुर सेवे तां सब कुछ पाए, जेही मनसा कर लागै तेहै फल पाए, सतगुर दाता सबना वथू का, पूरे पाग मिलावणिया।
ਇਹੋ ਮਨ ਮਹਿਲਾ ਇਕ ਨਾ ਧਿਆਏ, ਅੰਤਰ ਮਹਿਲ ਲਾਗੀ ਬਹੁ ਦੂਜੇ ਭਾਏ, ਤਟ ਤੀਰਥ ਦਸੰਤਰ ਪਵੇ ਹੰਕਾਰੀ, ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮੱਲਾ ਬਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਮਲ ਜਾਏ, ਜੀਵਿਤ ਮਰੈ ਹਰਿ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਸੱਚ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਸੱਚ ਲਾਗੈ ਮੈਲ ਗਵਾਵਣਿਆ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ, ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰਾ, ਬਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਮਾਵੈ, ਫਿਰ ਬਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹੇ ਪਚਾਵਣਿਆ, ਮੁਕਤੇ ਸੇਵੇ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੈ, ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਸਭ ਦੇਖ ਹੋਵੈ, ਅੰਦਰ ਹਰ ਜਿਉ ਸੱਚਾ ਸੇਵੀ, ਪੂਰੇ ਪਾਗ ਗੁਰ ਪਾਵਣਿਆ, ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਨਿਧ ਪਾਏ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਮਨ ਸੱਚਾ, ਸਤ ਸੇਵੇ ਦੁਖ ਗਵਾਵਣਿਆ, ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਗੁਰਸਬਦੀ ਹਰ ਅੰਤਰ ਪਛਾਣੋ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵਣੇ ਆ ਬਾਜ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਐਥੈ ਸਾਚੇ ਸੋ ਆਗੈ ਸਾਚੇ, ਮਨ ਸੱਚਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਚੇ, ਸੱਚਾ ਸੇਵੈ ਸੱਚ ਕਮਾਵੈ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵਣਿਆ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਸੱਚੇ ਸੇਵੈ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ, ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ, ਰਹਾਓ ਪੰਡਿਤ ਪੜੈ ਸਾਧਨਾ ਪਾਵੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਮਾਇਆ ਮਨ ਪਰਮਾਵੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਸਭ ਸੁਧ ਗਵਾਈ, ਕਰ ਅਵਗਣ ਪਛੋ ਤਾਵਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਤਤ ਪਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਮਨ ਮਾਰੈ ਆਪਣਾ, ਮੁਕਤੀ ਕਾਦਰ ਪਾਵਣਿਆ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟੈ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖੈ ਉਰਧਾਰੇ, ਸੱਚ ਰਤੇ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ, ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਮਿਲਾਵਣਿਆ, ਅੰਤਰ ਰਤਨ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਵਧ ਮਨਸਾ ਤ੍ਰਿਵਧ ਮਾਇਆ, ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਿਤ ਮੋਨੀ ਥੱਕੇ, ਚੌਥੇ ਬਤਕੀ ਸਰ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ, ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਰੰਗ ਚੜਾਏ, ਸੇਜਨ ਰਾਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰੰਗਾਏ, ਹਰ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਤਿਆ ਪਾਰਾ, ਹਰ ਰਸ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਸੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਮੁਕਤ ਹੋਈ, ਗੁਰਮਕਾਰ ਸੱਚ ਕਮਾਵੈ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਥਾਪੇ ਥਾਪੋ ਥਾਪੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਭ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ, ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ, ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਉਤਪੁਤ ਪੁਰਲੋ ਸਭ

रसना रस चाख सदा रह रंग राती सहजे हर गुण गामण्या रहाओ। गुर प्रसादी सहज को पाए दुबदा मारे इकस सो लिवलाए। नदर करे ता हर गुण गावै नदरी सच समावण्या। सबना उपर नदर प्रभ तेरी किसे थोड़ी किसे है कनेरी। तुझ ते बाहर किश ना होवै गुरमुख सोजी पावण्या। गुरमुख तत् है बीचारा अमृत भरे तेरे भंडारा। बिन सतगुर सेवे कोई ना पावै गुर कृपा ते पावण्या। सतगुर सेवै सो जन सोहै अमृत नाम अंतर मन मोहै। अमृत मन तन बाणी रता अमृत सहज सुनावण्या। मन मुख पूला दूजे पाए खुआए नाम ना लेवै मरै बिख खाए। अन्दिन सदा विष्ट

पूर्ण पूर रहया सब आपे गुरमत नदरी आवणिया आपे आप निरंजन सोई जिन सिर जीतन आपे गोई नानक नाम समाल सदा तू सहजे सच समावणिया। माज महला तीजा से सच लागे जो तुद पाए सदा सा सेवै सह सुभाए सच्चै शब्द सच्चा सालाही सच्चै मेल मिलावणिया। हाँ वारी जियो वारी सच सालाहणिया सच ते आए नो से सच राते सच्चे सच समावणिया। रहाओ जह देखा सच सबनी थाई गुर प्रसादी मन वसाई तन सच्चा रसना सच राती सच सुन आख वखानणिया। मनसा मार सच समाणी इन मन डीठी सब आवण जानी सतगुर सेवे सदा मन निचलो निज कर वासा पावणिया। गुर कै शब्द हृदय दिखाया माया मोह सब जलाया सचो सच्चा वेख सालाही गुर शब्दी सच पावणिया। जो सच राते तन सच्ची लिव लागी हर नाम समालै से वड भागी सच्चै शब्द आप मिलाए सतसंगत सच गुण गावणिया। लेखा पढ़ी जे लेखे विच होवै ओह अगमे अगोचर शब्द सुध होवै आन दिन सच शब्द सालाही होर कोई ना कीमत पावणिया। पढ़ पढ़ थाके सांत ना आई तृष्णा जाले सुध ना काई बिख विहाजै बिख मोह प्यासे कूड़ बोल बिख खावणिया। गुर प्रसादी एको जाना दूजा मार मन सच समाणा नानक एको नाम वरतै सब अंतर गुर प्रसादी पावणिया। माज महला तीजा वर्ण रूप वरतै सब तेरे मर मर जमै फेर पवै कनेरे तू एको नहि चलो अगमया पारा गुरमती बूझ बुझावणिया। हाँ वारी जियो वारी राम नाम मन वसावणिया जिस रूप ना रेखिया वर्ण ना कोई गुरमती आ बुझावणिया। रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई सतगुर सेवे प्रगट होई गुप्त प्रगट वरतै सब थाई ज्योति ज्योत मिलावणिया। तिसना यगन जलै संसारा लोभ अवमान बहुत हंकारा मर मर जन्मै पत गवाए अपनी बिरथा जन्म गवावणिया। गुर का शब्द को विरला बूजै आप मारे तांत्र पवन सूजै फिर ओह मरै ना मरना होवै सहजे सच समावणिया। माया मह फिर चेतना लाए गुर कै शब्द सद रह समाए सच सा लाहे सब घट अंतर सचो सच सुहावणिया। सच सा लाही सदा हजूरे गुर कै शब्द रहया परपूरे गुर प्रसादी सच नदरी आवै सच्चे ही सुख पावणिया। सच मन अंदर रहया समाए सदा सच निह चलो आवै ना जाए सच्चे लागै सो मन निर्मल गुरमती सच समावणिया। सच सालाही अवरना कोई जित सेवै सदा सुख होई नानक नाम रते विचारी सचो सच कमावणिया। माज महला तीजा निर्मल शब्द निर्मल है बाणी निर्मल जोत समहे समाणी निर्मल बाणी हर सा लाही जप हर निर्मल मैल गवावणिया। हाँ वारी जियो वारी सुखदाता मन वसावणिया हर निर्मल गुर शब्द सा लाही शब्दो सुनत सा मिटावणिया। रहाओ निर्मल नाम वसिया मन आए मन तन निर्मल माया मोह गवाए निर्मल गुण गावै नित साचे के निर्मल नाद बजावणिया।
ਨਿਰਮਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਮੁਵਾ ਤਿੱਥੈ ਮੋਹ ਨਾ ਮਾਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਸੇਵੇ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗੁਰਸਬਦੇ ਧੋਵੈ। ਨਿਰਮਲ ਵਾਜੈ ਅਨਹਤੁਨ ਬਾਣੀ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸਭ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਨਿਰਮਲ ਮਨੁਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰੋਵੈ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਵਡਭਾਗੀ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ। ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਸ਼ਬਦੇ ਸੋ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਮਨ ਤਨ ਮੋਹੈ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਮਲ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਮੁਖੀ ਉਜਲ ਸੱਚ ਕਰਾਵਣਿਆ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਦੂਜੈ ਪਾਏ, ਮੈਲਾ ਚੌਕਾ ਮੈਲਾ ਥਾਏ, ਮੈਲਾ ਖਾਏ ਫਿਰ ਮੈਲ ਵਧਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਮੈਲ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਮੈਲੇ ਨਿਰਮਲ ਸਭ ਹੁਕਮ ਸਵਾਏ, ਸੇ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਹਰ ਸਾਚੇ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੈਲ ਚੁਕਾਵਣਿਆ। ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਗੋਵਿੰਦ ਉਜਲ ਉਜਲ ਹੰਸਾ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਮੇਰੀ ਮਨਸਾ। ਮਨ ਉਜਲ ਸਦਾ ਮੁਖ ਸੋ ਹੈ, ਅਤ ਉਜਲ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਿਆ। ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਉ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਪੈ ਉਜਲ ਹਉਮੈ ਮਲ ਜਾਏ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਮਨੁਆ ਨਾਚੈ ਭਗਤ ਦਿਰੜਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ

माया मोहे जोहया जमकाले, माया मोह इस मने निचाए अंतर कपट दुख पावने आ। गुरमुख भगत जा आप कराए, तन मन राता सह सुभाए, बाणी वजाए शब्द वजाए।

दूजै पाए दुख पावणिया। जिस अंतर प्रीत लगै सो मुक्ता, इंद्री वस सच संजम जोगता। गुर कै शब्द सदा हर त्याए, एहा भगत हर पावणिया। गुरमुख भगत जुगचारे होई, होरत भगत ना पाए कोई। नानक नाम गुर भगती पाईऐ, गुर चरणी चित लावणिया। माज महला तीजा, सच्चा सेवी ससा लाही। सच्चे नाए दुख कभी नाही, सुखदाता सेवन सुख पाए न। गुरमत मन वसावणिया, हाउ वारी जियो वारी, सुख सह समाध लगावणिया। जो हर सेवै से सदा सोहै, शोभा सुरत सुहावणिया। राओ सब को तेरा भगत कहाए, सही भगत तेरा मन पाए। सच बाणी तुदै सालाहनो, रंग राते भगत करावणिया। सब को सच्चे हर जियो तेरा, गुरमुख मिलै तां चूकै फेरा। जां तुद पावै तां नाए रचावै, तू आपे नाउं जपावणिया। गुरमती हर मन वसाया, हरक सोख सा मोह गवाया। एक सस्यों लिव लागी सदही, हर नाम मन वसावणिया। भगत रंग राते सदा तेरे चाए, नवनिद नाम वस्या मन आए। पूरे भाग सदगुर पाया, सब दे मेल मिलावणिया। तू दयाल सदा सुखदाता, तू आपे मेलै गुरमुख जाता। तू आपे देवै नाम वडाई, नाम रते सुख पावणिया। सदा सदा साचे तुद सा लाही, गुरमुख जाता दूजा को नाही। एक सस्यों मन रहा समाए, मन मनै मनै मिलावणिया। गुरमुख होवै सो सा लाहे, साचे ठाकर वे प्रवाहे। नानक नाम वसै मन अंतर, गुर सबदी हर मेला बणिया। माज महला तीजा, तेरे भगत सो है साचे दरबारे। गुर कै शब्द नाम सवारे, सदा आनंद रहै दिन राती। गुण कै गुणी समावणिया, हाउ वारी जियो वारी, नाम सुन मन वसावणिया। हर जियो सच्चा ऊचो ऊचा, हाउ मैं मार मिलावणिया। रहाओ हर जियो साचा साची नाई, गुर प्रसादी किसै मिलाई। गुर शब्द मिलै से विछड़ै नाही, सहजे सच समावणिया। तुझ ते बाहर कछु ना होए, तू कर कर वेख्या जाणै सोए। आपे करे कराए करता, गुरमत आ मिलावणिया। कामण गुणवंती हर पाए, पै पाए सिंगार बनाए। सतगुर सेव सदा सोहागण, सच उपदेश समावणिया। शब्द विसारण।

बहु कर्म कमावे मुक्त ना पाए, देसंतर पावे दूजे पाए खुवाए। बिरथा जन्म गवाया कपटी, बिन शब्द दुख पावनिया, तावत राखे ठाक रहाए। गुर प्रसादी परम पद पाए, सतगुरे आपे मेल मिलाए। मिल प्रीतम सुख पावनिया, एक कूड़ लागे कूड़े फल पाए, दूजे पाए बिरथा जन्म गवाए। आप डुबे सगले कुल डोबे, कूड़ बोल बिखावणिया, इस तन मैं मन को गुरमुख देखे, पाए पग जाह मैं सोखे। सिद्ध साधक मोन तारी रहे लिवलाए, तिन पी तन मैं मन ना दिखावणिया। आप कराए करता सोई, होर के करे कीते क्या होई। नानक जिस नाम देवै सो लेवै, नामो मन वसावणिया। माज महला तीजा, इस गुफा मैं खुट भंडारा, तिस विच वसै हर लख अपारा। आपे गुप्त प्रगट है आपे, गुर शब्दी आप वणिया। हौ वारी जियो वारी, अमृत नाम मन वसावणिया। अमृत नाम महारस मीठा, गुरमती अमृत पिया वणिया। रहाओ हौ मैं मार, बजर कपाट खुलाया, नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया। बिन शब्द नाम ना पाए कोई, गुर कृपा मन वसावणिया। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। ज्योति ज्योत मिली मन मानिया, हर दर शोभा पावणिया। शरीरो पालन को बाहर जाए, नाम ना लह बहुत वेगार दुख पाए। मनमुख अंधे सूजे नाही, फिर घेरे आए, गुरमुख वथ पावणिया। गुर प्रसादी सच्चा हर पाए, मन तन वेखे हों मैं मैल जाए। बैस सुथान सद हर गुण गावे, सच्चा शब्द

अंदर महल रतनी परे भंडारा गुरमुख पाए नाम अपारा गुरमुख वणजे सदा वापारी लहा नाम सद पावणिया आपे वथ राखै आपे दे गुरमुख वणजै केई के नानक जिस नदर करे सो पाए कर कृपा मन वसावणिया माज महला तीजा हरे आपे मेले सेव कराए गुर कै शब्द भाव दूजा जाए हर निर्मल सदा गुणदाता हर गुण मैं आप समावणिया हाँ वारी जियो वारी सच सच्चा हिरदय वसावणिया सच्चा नाम सदा है निर्मल गुर शब्दी मन वसावणिया रहाओ आपे गुरदाता कर्म विधाता सेवक सेवै गुरमुख हर जाता अमृत नाम सदा जन सोहै गुरमत हर रस पावणिया इस गुफा मैं कथान सोहाया पूरे गुरह मैं भरम चुकाया अंदर नाम सलाहन रंग राते गुर कृपा ते पावणिया गुर कै शब्द एहो गुफा विचारे नाम निरंजन अंतर वसै मुरारे हर गुण गावै शब्द सुहाए मिल प्रीतम सुख पावणिया जम जा गाती दूजे पाए कर लाए नाम पूले दे सजाए कड़ी मोहत का लेखा लेवै रतियो मासा तोल कढ़ावणिया पेयड़ै प्रचेते नाही दूजे मुठी रोवै ताही खरी कुवाल्यो क्रूप कुलखणी सुपने पर नहीं पावणिया पेयड़।

अवर ना कोई, गुर प्रसाद करे नाम देवै, नामे नाम समावणे आ। तू आपे सच्चा सिरजनहारा, भगती परे तेरे भंडारा, गुरमुख नाम मिले मन भीजै, सह समाद लगावणे आ। आन दिन गुण गावा प्रभ तेरे, तुसा लाही प्रीतम मेरे, तुद बिन अवर ना कोई जाचा, गुर प्रसादी तू पावणे आ। आगमया गोचर मित नहीं पाई, अपनी कृपा करै तू लह मिलाई, पूरे गुर कै शब्द तिहाई है, शब्द सेव सुख पावणे आ। रसना गुणवंती गुण गावै, नाम सलाहे सच्चे पावै, गुरमुख सदा रह रंग राती, मिल सच्चे सोभा पावणे आ। मनमुख कर्म करे अहंकारी, जुवै जन्म सब बाजी हारी, अंतर लोभ महा गोबारा, फिर आवणे जावणे आ। आपे करता दे वडियाई, जिनको आप लिख तुर पाई, नानक नाम मिलै पौ भंजन, गुर सबदी सुख पावणे आ। माज महला पंजवां घर पहला, अंतर अलख न जाई लखिया, नाम रतन लै गुजा रखिया, आगमै गोचर सब ते उचा, गुर कै शब्द लिखावणे आ। हाउ वारी जियो वारी, कल मैं नाम सुनावणे आ, संत प्यारे सच्चै तारे, वडभागी दर्शन पावणे आ। रहाओ साधक सिद्ध जिसै को फिर दे, ब्रह्मे इंद्र त्याय निहरदे, कोट ततीसा खोजै ता कहो, गुरमिल हिरदै गावणे आ। आठ पहर तुद जापे पवना, धरती सेवक पायक चरना, खानी बाणी सर्ब निवासी, सबना कै मन पावणे आ। साचा साहिब गुरमुख जापै, पूरे गुर कै शब्द सियापै, जिन पिया से तृपता से, सच्चे साचा गावणे आ। तिस घर सहजा सोई सुहेला, आनंद विनोद करे सदकेला, सो धनवंता।

तुद जेवड़ दाता है वरना स्वामी लवै ना कोई लावण्या। जिस तू तुठा सो तुद त्याए, साजना का मंत्र कमाए। आप तरै सगले कुल तारे, तिस दरगह ठाग ना पावण्या। तू वड्डा तू उचो उचा, तू बेअंत वत मूचो मूचा। हाँ कुर्बानी तेरे वन्या, नानक दास दसावण्या। माज महला पंजवां, कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता, कौन सो ज्ञानी कौन सो भगता। कौन सो गिरही कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो। किन बिद बाधा किन बिद छूटा, किन बिद आवन जावन तूटा। कौन कर्म कौन निह कर्मा, कौन सो कह कहाए जियो। कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया। किन बिद मिली है किन बिद बिछरै, एह बिद कौन प्रगटाए जियो। कौन सो अखर जे तावत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख समसहता। कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याए, किन बिद कीर्तन गाए जियो। गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी गुरमुख भगता। धन गिरही उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जियो। हम मैं बाधा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवण जावण तूटा। गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो। गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया। गुरमुख मिलिया मनमुख बिछरै, गुरमुख बिद प्रगटाए जियो। गुरमुख अखर जे तावत रहता, गुरमुख उपदेश दुख सुख समसहता। गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याए, गुरमुख कीर्तन गाए जियो। सगली बणत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे। एक स्ते होयो अनंता, नानक एक समाए समाए जियो। माज महला पंजवां, प्रभु बनासी ता क्या काड़ा। हर भगवंता ता जन खरा सुखाला। जी प्राण मान सुखदाता, तू करै सोई सुख पावण्या। हां वारी जियो वारी, गुरमुख मंतन पावण्या। तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवै ना लावण्या। रहाओ तेरा कीता जिस लागै मीठा, घट घट घट घट पार ब्रह्म तिन जन डीठा। थान थनंतर तू है इको एक वरतावण्या। सगल मनोरथ तू देवनहारा, भगती पाए भरे भंडारा। दया तार राखे तुद से ही, पूरे कर्म समावण्या। अंध कूप ते कंडे चाड़े, कर कृपा दास नजर निहाले। गुण गावे पूर्ण अबनासी, कह संतोट न आवण्या।

हर जेठ जोड़न दा लोड़िया जिस अगे सब निवान हर सज्जन दावन लग्या किसे ना देई बन माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन रंग सबे नारायण जेते मन पावन जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए तन अपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसकै भाग मथन आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर ना हो ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संदियास दोया पाए विगुची है गल पई सो जम की फास जिहा बीजै सोलुण मथै जो लिखियास रैण विहानी पछताणी उठ चली गई निरास जिन कौ साधु भेटिया सो दरगह होए खलास कर किरपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ा व्या दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तेन प्रभ संग मौलिया समर्थ पुरखिया पार हर मिलने नो मन लोचदा करम मिलावन हार जिनी सखिए प्रभ पाया हो तिनकै सबर हार नानक हर जी माया कर शब्द सवारन हार सावन तिना सुहागनी।

नानक मंगे दर्शदान कृपा करो हरे। माज महला पंजवां दिन रहन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवी सतगुर अपना हर सिमरी दिन सब रहन आप त्याग सरनी पवां मुख बोली मिठड़े वैण जन्म जन्म का विछड़िया हर मेलो सज्जन सैन जो जी हरते विछड़े से सुख न वसन पैण हर पिर बिन चैन न पाईए खोज डिठे सब गैण आप कमाण विछड़ी दोष न काहू देण कर कृपा प्रभ राख लेहो होर नाही करन करेण हर तुद बिन खाकू रूलना कहिए किथै वैण नानक की बेनंती।

तिन कह सत बलिहार, संत आराधन सत सदा सबना का बख्शेंद, जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दिती निजिंद। गुर सबदी आराधी है जपिए निर्मल मंत, कीमत कहन ना जाइए परमेश्वर बेअंत। जिस मन वसै नारायण सो कहिए भगवंत, जी की लोचा पूरी है मिलै स्वामी कंत। नानक जीवै जप हरी दोख सबे ही हंत, दिन रहन जिस ना विसरै सो हरिया होवै जंत। सर्व कला प्रभ पूर्ण मन न मानी थाओ, हर ओट गही मन अंदरे जब जब जीवा नाओ। कर कृपा प्रभ अपनी जंतूड़ी संग समाओ, जो तू राख्या त्यो रहा तेरा दिता पैना खाओ। उद्म सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ, दूजी जाए न सुजई किथे कूकण जाओ। अज्ञान बिनासन तम हरण ऊचे अगमया माओ, मन विछड़िया हर मेली है नानके हो सवाओ। सर्व कल्याणा तित दिन हर परसी गुर के पाओ। वार माज की तथा श्लोक महला पहला, मालिक मुरीद तथा चंद्रहड़ा सुहिया की तुनी गावनी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद, श्लोक महला पहला। गुरदाता गुर है वैकार, गुरदीपक तेह लोए अमर पदार्थ नानका, मन माने सुख होए महला पहला।

पुकारिता उड़िया हंस दसायरा आया गया मुया ना पिछे पतल सद्यो का नानक मनमुख अंध प्यार वाजगुरु डुबा संसार महला पहला दस बालतन भी श्रवण तीसा का सुंदर कहावे चालीसी पर होए पचासी पग खिसै।

डुम डिठ मैं नानक जगत हुए का तवलहार पौड़ी तू करता पुरख्या गम है आप सृष्टि उपाती रंग परंग उपार जना बहु बहु विद पाती तू जाने जिन्हें उपाई है सब खेल तुमाती एक आवे खजाए उठ बिन्ना में मर जाती गुरमुख रंग चिलू लिया रंग हर रंग राती सो से वो सत निरंजनो हर पुरख बिदाती तू आपे आप सुजान है वड पुरख बढ़ाती जो मन चेत तुद ध्याय दे मेरे सच्चिया बल बल हों तिर जाती श्लोक महला पहला।

तू आपे खेल करे सब करते कै दूजा अख बखानी है जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति बिच तू बोलै वेण ज्योति कोई किश करो दिखा सियाणी है नानक गुरमुख नदरी आया हर इको सूट सुजानी है पौड़ी तुदे आपे जगतो पाए कै तुदे आपे तंदे लाया मोठ गौली पाए कै तुदे आपो जगत खोआया तिसना अंदर अगन है।

क्या खादै क्या पैदा होए, जम नाही सच्चा सोए। क्या मेवा क्या क्यो गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मास। क्या कपड़ क्या से सुखाली, की जय भोग बिलास। क्या लश्कर क्या नेवखवासी, आवे महली वास। नानक सच्चे नाम विण सबे टोल विनाश पवड़ी। जाति रह क्या हाथ सच परखी है, मवरा होवे हाथ मरिय चखी है। सच्चे की सरकार जुग जुग जानी है, हुक्म ने सरदार दर दीवानी है। फुरमानी है कार खसम पठाया, तबल बाज बिचार शब्द सुनाया। एक होए असवार एक ना साखती, एक नी बदे पार एक ना ताकती। श्लोक महला पहला। जा पक्का ता कटिया रही सो पलरवाड़, सन की सारा चिथिया कर लया तन झाड़। दोए पुड़ चक्की जोड़ कै पीसने आए बैठ, जो दर रहे सो बरे। नानक अजब डेठ महला पहला, वेख जे मिठा कटिया कट कुट बदा पाए। खुंडा अंदर रख कै दिन सो मल सजाए, रस कस टटर पाईए तपै तैवल लाए। पीसो फूक समालिए दिचै विजा लाए, नानक मिठै पतरिए वेखो लोका आए। पवड़ी एक ना मरना चेत आस कनेरिया, मर मर जमै नित किसै ना केरिया। आपन रह मन चेतो कहन चंगेरिया, जबरा जै नित नित मन मुख हेरिया। मन मुख लून हराम क्या ना जानिया, बदे करन सलाम खसम ना पाणिया। सच मिलै मुख नाम साहिब पावसी, कर संतख सलाम लिखिया पावसी। महला पहला श्लोक। मच्छी तारू क्या करे, पंखी क्या आकाश। पत्थर पाला क्या करे, खुसरे क्या करवास। कुत्ते चंदन लाई है पीसो कुत्ती तात, बोला जे समझाई है पढ़िए समर्थ पाठ। अंधा चानन रखिए दीवे बले पचास, चौने सोई ना पाईए चुन चुन खावे कास। लोहा मारन पाईए टह ना होए कपास, नानक मूर्ख एह गुण बोले सदा विनाश। महला पहला। कहा कंचन तुटे सार, अग्नि गंढ पाए लोहार। गोरी सेती तुटे पतार, पुत्ती गंढ पवै संसार। राजा मंगै दित्ते गंढ पाए, भुखिया गंढ पवै जा खाए। काला गंढ नदियां मीह झोल, गंढ प्रीति मिठे बोल। बेदा गंढ बोले सच कोए, मोया गंढ नेकी सत होए। एत गंढ वरतै संसार, मूर्ख गंढ पवै मोह मार। नानक आखै हो बिचार, सिफती गंढ पवै दरबार। पौड़ी आपे कुदरत साज कै, आपे करे बिचार। एक खोटे एक खरे आपे परखणहार। खरे खजाने पाईए खोटे सटिए बार वार। खोटे सच्ची दरगह सुटिए किस आग्या करे पुकार। सतगुर पिछे भज पवै एह करनी सार। सतगुर खोट्यो खरे करे शब्द सवारन हार। सच्ची दरगह मनियन गुर कै प्रेम प्यार। गणत तिना दी को क्या करे, जो आप बख्शे करतार। श्लोक महला पहला। हम जेर जिमी दुनिया पीरा मसाए कराया, मेर वद बाद सहा अफजू खुदाए। एक तू ही महला पहला। ना देव दानवा नरा, ना सिद्ध साध का तरा। अस्त एक दिगर कोई, एक तू ही महला पहला। ना दादे देहां दे आदमी, ना सबत जेर जिमी। अस्त एक दिगर कोई, एक तू ही महला पहला। ना सूर सस मंडलो, ना सपत दीप नह जलो। अन्न पौन थिर ना कोई, एक तू ही महला पहला। ना रिजक दस्त आकसे, हमारा एक आस वसे। अस्त एक दिगर कोई, एक तू ही महला पहला। परंदे ना ग्रह जर, दरख्त आव्यास कर। देहंद सुई एक तुई महला पहला। नानक ललार लिखिया सोए, मेटना सकै कोए।
ਕਲਾ ਧਰੈ ਹਿਰੈ ਸੁਈ, ਏਕ ਤੁਈ ਪੌੜੀ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਾਣਿਆ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚ ਸਮਾਣਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਕੂੜਿਆਰ ਪਰਮ ਭੁਲਾਣਿਆ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਆਵਣ ਜਾਣਿਆ, ਨਾਨਕ ਪਾਰਖ ਆਪ ਜਿਨ ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਪਛਾਣਿਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਿਹਾਂ ਬਾਜਾਂ ਚਰਗਾਂ ਕੁਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਲੇ

असगा कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे सुवा जेते जी जीवे लै साहा जीवा ले तां के असा नानक ज्यों ज्यों सच्चे पावे त्यों त्यों दे गिरा। महला पहला।

दुए भौकिया खादा हुए सुहा पी खाने स्यों दोस्ती चौथे आई ऊंग अखी मीट पवार गया पी उठ रचियोन वाद सैवरिया की पिड़ बदी सबे वेला भक्त सब जे अठी पौ होए नानक साहिब मन वसै सच्चा नावन होए महला दूजा से पूरे साहा जिनी पूरा पाया अठी वे परवाह रहन एक तैरंग दर्शन रूपया था विरले पाई है कर्म पूरा पूरा गुरु पूरा जाका बोल नानक पूरा जे कर कटे नाही तोल पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाई है मुठी तंदे चोर महल ना पाई है इना चित कठोर सेव गवाई है जित घट सच ना पाए सो भन कढ़ाई है क्यों कर पूरे वट तोल तुलाई है कोई ना आखे घट हों मैं जाई है लियन खरे परख दर भी नाई है सौदा एक तहट पूरे गुर पाई है श्लोक महला दूजा अठी पहरी अठ खंड नावा खंड शरीर तिस विच नौ निध नाम एक पाले गुणी गहीर कर्मवंती साला हया नानक कर गुर पीर चौथे पैर सबाह कै सुरतिया उपजै चाओ तिन्ना दरियावां स्यों दोस्ती मन मुख सच्चा नाओ ओथे अमृत वंडी है करमी होए पसाओ कंचन काया कसी है वन्नी चढ़ै चढ़ाओ जे होवै नदर सराफ की बहुना पाई ताओ सत्ती पहरी सत भलिया सत्ती पहरी सत भला बहिया पढ़िया पास उथे पापुन बिचारी है कूड़े कट्टे रास उथे खोटे सट्टी है खरे कीचे सा बास बोलन फादल नानका दुख सुख असमै पास महला दूजा पौन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिन सरात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे तरम हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले होर केती छुट्टी नाल पौड़ी सच्चा पोजन पाओ सतगुर दस्या सच्चे ही पति आए सच विगस्या सच्चे कोट गिराए निज कर वस्या सतगुर तुठे नाओ प्रेम रहस्या सच्चे दै दी बाण कू ना जाइए झूठो झूठ वखाण सो महल खुवाइए सच्चा शब्द निशान ठाक ना पाइए ससुण बुझ वखाण महल बुलाइए श्लोक महला पहला पहरा अग्न हिवै कर बादा भोजन सार कराई सगले दुख पानी कर पीवा धरती हाग चलाई तारता राजी अंबर तोली पिछे टंग चढ़ाई एवड वदा मावा नाही सबसे नथ चलाई एता तान होवै मन अंदर करी पे आख कराई जेवड़ साहेब तेवड़ दाती दे दे करे रजाई नानक नदर करे जिस उपर सच नाम वड्याई महला दूजा आखने आख न रजिया सुन न रजे कन अखी देख न रजिया गुण गाह के कवन भुखिया भुख न उतरै गली भुख ना जाए नानक भुखा ता रजै जा गुण कै गुणी समाए पौड़ी विण सच्चे सब कूड़ कूड़ कमाई है विण सच्चे कूड़ यार बन चलाई है विण सच्चे तन शार शार लाई है विण सच्चे सब भुख जे पैजै खाई है विण सच्चे दरबार कूड़ ना पाई है कूड़ै लालच लग मैल खुवाई है सब जग ठगे ओ ठग आई है जाई है तन मैं तृष्णा अग शब्द बुझाई है श्लोक महला पहला नानक गुर संतोख रुख धर्म फुल फल ज्ञान रस रसिया हरिया सदा पक्कै कर्म ध्यान पत के साध खांदा लह दाना कै सिरदान महला पहला
सोने का बिरख पत परवाला, फुल जवेहर लाल, तित फल रतन लगे मुख पाखत, हृदय हृदय निहाल। नानक कर्म होवे मुख मस्तक, लिखिया होवे लेख, आठ सठ तीर्थ गुर की चरणी, पूजे सदा वसेख। हंस हेत लोभ कोप, चारे नदियां अग, पवे दजे नानका, तरिये कर्मी लग पौड़ी। जीव दया मर मार न पछो ताई है, झूठा उस संसार किन समझाई है, सच ना तरे प्यार तंदे ताई है। काल बुरा खै काल, सिर दुनियाई है, हुक्मी सरजनदार मारे दाई है, आपे दे प्यार मन वसाई है। मोहत ना चसा विलम, परिये पाई है, गुर प्रसादी भोज सच समाई है। श्लोक महला पहला। तुम्मी तुम्मा विस, आकत तूरा निम फल, मन मुख वसै तिस, जिस तू चेतना आ वही। नानक कहिए किसो, हंडन करमा बाहरे महला पहला। मत पंखेरू किरत साथ, कब उत्तम कब नीच, कब चंदन कब अकडाल, कब उच्ची परीत, नानक हुक्म चलाई है, साहिब लगी रीत पौड़ी। केते कह वखाण कह कह जावना, वेद कह वखियाण अंत ना पावना, पढ़िया नाही भेद बुझे पावना। खड़ दर्शन कह भेख, किसे सच समावना, सच्चा पुरख्या लख शब्द सुहावना। मन्ने नाम बिसंख, दरगह पावना, खालक कहो आदेश ढाडी गावना। नानक जुग जुग एक मन वसावना, श्लोक महला दूजा। मंत्री होए अठूहिया, नांगी लगे जाए, अपन हथी अपने दे कूचा आपे लाए। हुक्म पया तुर खसम का, अति हूं तका खाए, गुरमुख स्यों मनमुख अड़े, डुबे हक ने आए। दुहा सिरिया आपे खसम, वेखे कर व्यो पाए, नानक ए वै जानिए, सब कित सहर जाए। महला दूजा। नानक परखे आप कहो, ता पारख जान, रोग दारू दोवै बुझै, ता वैद सुजान। वाट ना करी मामला, जाने मेहमान, मूल जान गल्ला करे, हान लाए हान। लब ना चली सच रह, सो विष्ट परवान, सर संदे आगास कहो क्यों पहुंचे बाण। अगै यो आगम है, वाहे दड़ जान पौड़ी। नारी पुरख प्यार प्रेम सिंगारिया, करण भगत दिन रात ना रहनी वारिया। महिला मंज निवास शब्द सवारिया, सच कहन अरदास सेवे चारिया। सोहन खसमै पास हुक्म सिधारिया, सखी कहन अरदास मनो प्यारिया। बिन नावै त्रिगवास फिट सो जीविया, शब्द सवारी आस अमृत पीविया। श्लोक महला पहला। मारू मिहि ना त्रिपत्या, अगी लह ना भुख, राजा राज ना त्रिपत्या, सायर परे किसको, नानक सचे नाम की। केती पुछा पुछ महला दूजा। नेह फलंग तस जनमस, जावद ब्रह्म ना बिंदते, सागरंग संसारस गुर प्रसादी तरह के। कारण कारण समर्थ है, कहो नानक विचार, कारण करते वस है। जिन कल रखी तार पौड़ी, खसमै कै दरबार ढाडी वसया, सचा खसम कलाण कमल विगसया। खसमो पूरा पाए मनो रहस्या, दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरसया, सच्चा सतगुर सेवनो सच्चा मार्ग दसया। सच्चा शब्द विचार काल विधंसया, ढाडी कथया कथ शब्द सवारया। नानक गुण गहरास हर जियो मिले प्यारया। श्लोक महला पहला। खतयो जम्मे खते कार,
नित खतियां विच पाहे तोते मूल ना उतरै जे सौ तोवन पाहे नानक बख्से बख्सीऐ नाहे ता पाही पाहे महला पहला नानक बोलन चखना दुख छट मंगियै सुख सुख दुख दोए दर कपड़े पहरै जाए मनुख जिथे बोलन हारियै तिथे चंगी चुप पौड़ी चारे कुंडा देख अंदर पालिया सच्चे पुरख्या लख सिर जनिहालिया उजड़ पुले राह गुर वेखा लिया सतगुर सच्चे वाहो सच समालिया पाया रतन कराहो दीवा बालिया सच्चे शब्द सलाहे सुखिए सच वालिया नेडरिया डर लग गर्व से गालिया नावो पुला जग फिर बेता लिया श्लोक महला तीजा पै विच जमै पै मरै पी पौ मन मै होए नानक पै विच जे मरै सहला आया सोए महला तीजा पैवन जीवै बहुत बहुत खुशियां खुशी कमाए नानक पैवन जे मरै मोहे काले उठ जाए पौड़ी सतगुर होए दयाल ता सरदा पूरी है सतगुर होए दयाल ना कबहू चूरी है सतगुर होए दयाल ता दुख ना जानी है सतगुर होए दयाल ता हर रंग माणी है सतगुर होए दयाल ता जम का डर केहा सतगुर होए दयाल ता सद ही सुख देहा सतगुर होए दयाल ता नव निद पाईऐ सतगुर होए दयाल ता सच समाईऐ श्लोक महला पहला सिर खोहाए पीऐ मलवाणी जूठा मंग मंग खाही फूल फदिहत मोह लैन पढ़ासा पानी देख सगाही भेडा वांगी सिर खोहाए न भरियन हथ सवाही माऊ पिउ किरत गवाए नो टब्बर रोवन ताही ओना पिंड ना पतल किरिया ना दीवा मोए किथा उपाही अड़सठ तीर्थ देन ना ढोई ब्राह्मण अन्न ना खाही सदा कुचील रह दिन राती मथे टिके नाही चुंडी पाए बहन नित मरणै दर्दी बाण ना जाही लकी कासे हथी फुमण अगो पिछी जाही ना ओए जोगी ना ओए जंगम ना ओए काजी मुल्ला दैव गोए फिरे विगुते फिटा वत्ता ए गल्ला जिया मारजी वाले सोई अवर ना कोई रखै दानो तैस नानो मंजे पस पई सिर खुथै पानी विचों रतन उपन्ने मेर की आमादानी अठ सठ तीर्थ देवी थापे पुरबी लगे बाणी नायन वाजा नाते पूजा नावनो सदा सुजानी मुया जीवदियां गत होवै जां सिर पाईऐ पाणी नानक सिर खुथे सैतानी एना गल ना पाणी वुठै होया होए बिलावल जियां जुगत समाणी वुठै अनक मादक पाहा सबसे पड़दा होवै वुठै कहो चरै नित सुरही सातन दही विलोवै तित के होम जग सद पूजा पै कारज सो है गुरु समुंद नदी सब सिखी नातै जित वडियाई नानक जे सिर खुथे नावन नाही ता सत चट्टे सिर शाई महला दूजा अग्गी पाला के करे सूरज के ही रात चांदा नेरा के करे पौन पानी क्या जात धरती चीजी के करे जिस विच सब किश होए नानक ता पत जानिए जा पत रखै सोए पौड़ी तुद सच्चे सुभान सदा कलाणिया तू सच्चा दीबान हो रिया मन जानिया सच जे मंगै दान से तुदै जेहया सच तेरा फुरमान सब दे सोहया
मन्या ज्ञान ध्यान तुदै ते पाया, कर्म पवै निशान न चले चलाया। तू सच्चा दातार नित देवै चढ़ै सवाया, नानक मंगै दान जो तुद पाया। श्लोक महला दूजा। दीख्या आख बुझाया, सिवती सच समेओ, तिन कहो क्या उपदेशिय, जिन गुरु नानक देओ। महला पहला। आप बुझाए सोई बूझै, जिसे आप सुझाए ते सबके सूझै। कह कह कथना माया लूझै, हुक्मी सगल करे आकार, आपे जाने सर्ब विचार। अखर नानक अखे हो आप, लह प्रात होवै जिस दात पौड़ी। हाउ टाडी वेकार, कारे लाया राध है कै वार, तुरो फुरमाया टाडी सच्चै महल, खसम बुलाया। सच्ची सिफत सलाह, कपड़ा पाया सच्चा अमृत नाम, भोजन आया। गुरमती खादा राज, तिन सुख पाया, टाडी करे पसाओ शब्द बजाया। नानक सच सा लाहे, पूरा पाया सुध। राग गौड़ी गुआरे री। महला पहला। चौपदे दोपदे एक ओंकार, सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सह भंग गुर प्रसाद। भौ मुझ पारा वड्डा तोल, मन मत हौली बोले बोल, सिर तर चलिए सहिए पार, नदरी करमी गुर बिचार। पै बिन कोय न लंघ सपार, पै पौ राखिया पाए सवार, रहाओ पै तन अगन पखे पै नाल, पै पौ कड़िए शब्द सवार। पै बिन काड़त कच्चन कच, अंधा सच्चा अंधी सट। बुद्धि बाजी उपजै चाओ, सह सियाणप पवै ना ताओ, नानक मनमुख बोलन वाओ, अंधा अखर वाओ दवाओ। गौड़ी महला पहला। डार कार कार।

जय कारण तट तीर्थ जाही, रत्न पदार्थ कट ही माही। पड़ पड़ पंडित बाद वखाण है, भीतर होंदी वस्त न जाण है। हो ना मुआ मेरी मुई बलाए, ओह ना मुआ जो रया सुमाए। कहो नानक गुर।

तीन अवस्था कह वखियान, तुरी अवस्था सदगुर ते हर जान। राम भगत गुर सेवा तरना, बहुड़ जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोई। बिन गुर अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जां कह हृदय वसिया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई। हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद। जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा महे निराश बुझाया। दीनानाथ सर्व सुखदाता, नानक हर चरणी मन राता। गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रहै सुखाली। बाजी यो संसारो, लब लोभ मुझ कूड़ कमावै, बहुत उठावै पारो। तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यों तारी उपर इशारो। सुन सुन सिख हमारी, सुकिरत कीता रहसी मेरे जियड़े। बहु नया व्यवारी रहाओ, हाँ तो दियाखा मेरी काया। तू सुन सिख हमारी, निंदा चिंदा करै पराई, झूठी लाए तबारी। वेल पराई जो है जियड़े, करै चोरी बुरियारी। हंस चलिया तू पिछे रही है, छुट्टड़ होई है नारी। तू काया रही है सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया। कर चोरी मैं जाकछ लिया, ता मन भला पाया। हालत ना सोबा पलत ना टोई, अहला जन्म गवाया। हाँ खरी दोहेली होई, बाबा नानक।

बिन बूझे तन मन फीका होए, बिन ना मैं दुखिया चलिया रोए। रसना हरस जाखिया सह सुभाए, गुर कृपा ते सच समाए, साचे राती।

ना कोई गुर शब्दी मन नाम निवास, नानक सच भांडा जिस शब्द प्यास। गौड़ी गुआरे री महला तीजा, एक गावत रहे मन साध ना पाए। हम मैं विच गावे बिरथा जाए, गावन गावे जिन नाम प्यार। साची बाणी शब्द विचार, गावत रह जे सतगुर पावै। मंतन राता नाम सुहावै रहाओ। एक गावै एक भगत करे, नाम ना पावै बिन असनेह। सच्ची भगत गुर शब्द प्यार, अपना पर राखिया सदा उरतार। भगत करै मूर्ख आप जनावै, नच नच टपै बहुत दुख पावै। नचे टपे भगत ना होए, शब्द मरे भगत पाए जन सोए। भगत वछल भगत कराए सोए, सच्ची भगत विचों आप खोए। मेरा प्रभ साचा सब जाने, नानक बख्शे नाम पछाणे। गौड़ी गुआरे री महला तीजा, मन मारे तात मर जाए। बिन मुए कैसे हर पाए, मन मरे दारू जाने कोए। मन शब्द मरे बूझे जन सोए, जिसनो बख्शे दे वडियाई। गुरप्रसाद हर वसे मन आई रहाओ। गुरम करनी कार कमावे, ता इस मन की सोजी पावे। मन में मत

आप भुला के प्रभ आप भुलाया, एहो जियो वडाणी चाकरी लाया, महा दुख हटे बिरथा जन्म गवाया, किरपा कर सतगुरु मिलाए, को नाम चेते विचो भरम चुकाए, नानक नाम जपे नाव नाव निध पाए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, जिन्ना गुरमुख ते आया तिन पूछो जाए, गुर सेवा ते मन पति आए, से धनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरमुख सेवा हर काल थाए पाई रहाओ, आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावै सोए, हर गुण गावै मातूतम होए, सहजे सही समावै सोए, दूजे पाए ना सेव्या जाए, हमें माया महा बिख खाए, पुत कुटंब गृह मोया माए, मन खयंदा आवै जाए, हर हर नाम देवै जन सोए, अंदर भगत गुर सबदी होए, गुरमत विरला बूझै कोए, नानक नाम समावै सोए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जनकार कमावै कोई, अखुट नाम तन हर तोट ना होई, ऐथे सदा सुख दर सोभा होई, ए मन मेरे भरम ना कीजै, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ, सतगुर सेवै ऐसे महापुरुष संसारे, आप उदरे कुल सगल निस्तारे, हर का नाम रखे और तारे, नाम रते भौजन उतरे पारे, सतगुर सेवै सदा मन दासा, हम मैं मार कमल प्रगासा, अनहद वाजै निकर वासा, नाम रते कर माहे उदासा, सतगुर सेवै तिन की सच्ची बाणी, जुग जुग भक्ति आख वखाणी, आन दिन जपै हर सारंग पाणी, नानक नाम रते नेह केवल निर्बाणी, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, सतगुर मिलै वडभाग संजोग, हृदय नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा ते किने विरलै चख डीठा, कर्म कांड बहु करै आचार, बिना मैं त्रिग त्रिग हंकार, बंदर बांधे हो माया फास, जन नानक छूटै गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण, जैसी धरती उपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्ये पानी नाही, जैसे धरती मध्ये पानी परगासिया, बिन पग्गा वरसत फिराही, बाबा तू ऐसे परम चुकाही, जो किश करत है सोई कोई है रे, तैसे जाय समाही रहाओ, स्त्री पुरख होए कै क्या वे कर्म कमाही, नाना रूप सदा है तेरे तुझी मैं समाही, इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही, जा का कार्य सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही, तेरा शब्द तू है आपे परम कहाही, नानक तत् तत् सो मिलिया, पुनरप जन्म ना आही, गौड़ी बैरागण महला तीजा,

बाद पंडित शास्त्र सिमरत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूर्ख हर हर जब पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर भजमन मेरे तार पौजल तू तारी रहाओ सन्यासी विपूत लाए देह सवारी परतरे त्याग करी ब्रह्मचारी मैं मूर्ख हरियास तुम्हारी खत्री कर्म करे सूरतन पावे सूद वैस पर किरत कमावे मैं मूर्ख हर नाम छड़ावे सब तेरी सृष्ट तू आप रहा समाई गुरमुख नानक देवड़े आई मैं दले हर टिक टिकाई गौड़ी गुआरे री महला चौथा निर्गुण कथा कथा है हर की भज मिल साधु संगत जन की तार पौजल अकथ कथा सुन हर की गोविंद सतसंगत में लाए हर रस रसना राम गुण गाए रहाओ जो जन त्यावे हर हर नामा तिन दासन दास करो हमरा मां जन की सेवा उत्तम कामा जो हर की हर कथा सुनावे सो जन हमरे मन चित पावे जन पग रेण वडभागी पावे संत जना स्यों प्रीत बने आई जिनको लिखत लिखिया तुर पाई ते जन नानक नाम समाई गौड़ी गुआरे री महला चौथा माता प्रीत करे पुत खाए मीने प्रीत भई जल नाए सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए ते हर जन हर मिलो हम प्यारे जिन मिलिया दुख जाए हमारे रहाओ जो मिल बछरे गऊ प्रीत लगावे कामन प्रीत जा पिर कर आवे हर जन प्रीत जा हर जस गावे सारंग प्रीत बसै जल तारा नारपत प्रीत माया देख पसारा हर जन प्रीत जपै निरंकारा नर प्राणी प्रीत माया तन खाटे गुरसिख प्रीत गुर मिलै गलाटे जन नानक प्रीत साध पग चाटे गौड़ी गुआरे री महला चौथा पीखक प्रीत पीख प्रपाए पूखे प्रीत होवै अन खाए गुरसिख प्रीत गुर मिलिया गाए हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी कर कृपा लोज पूर हमारी रहाओ चकवी प्रीत सूरज मुख लागै मिलै प्यारे सब दुख त्यागै गुरसिख प्रीत गुरु मुख लागै बछरे प्रीत

नित दिन सरात लालच करे भरमै भरमाया वे गार फिरै वे गारिया सिर पहाड़ उठाया जो गुर की जन सेवा करे सो कर कै कम हर लाया मेरे राम तोड़ बंधन माया कर कै कम लाए नित हर गुण गावै हर नाम समाए रहाओ नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजे हर सब माया कह बंदे कह डान ले कह नरपत मर जाया तन तन सेवा सबल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सूद कीचे बहु भांत कर माया कह ताई जा लाहा दे ता सुख मने तोटे मर जाई जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे जिस हरे आप कृपा करे सो वेचे सिर गुरिया गै जन नानक हर रस तृप्त आ फिर भूख ना लागे गौड़ी बैरागण महला चौथा हमरे मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दर्स तुम्हारा जन प्रीत लाई सो जानता हमरे मन चित हर बहुत प्यारा हों कुर्बानी गुरे अपने जिन विछड़िया मेलिया मेरा सृजनहारा हारा

मेरा जियो पिंड सब सतगुरे आगै, जिन विछड़िया हर गल आया, मेरा अंतर प्रीत लगी देखन कहो, गुर हिरदे नाल दिखाया, सहजानंद भया मन मोरै, गुरे आगै आ विचाया। हम अपराध पाप बहु कीने, कर दुष्टि चोर चुराया, अब नानक शरणागत आए, हर राखो लाज हर पाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, गुरमत बाजै सबदा नहद, गुरमत मनुआ गावे, वडभागी गुर दर्शन पाया, तन धन गुरु लिवलावै, गुरमुख हर लिवलावै, रहाओ। हमरा ठाकर सतगुर पूरा, मन गुर की कार कमावै, हम मलमल धोवै पाप गुरु के, जो हर हर कथा सुनावै। हृदय गुरमत राम रसायण, जेवा हर गुण गावै, मन रसक रसक हर रसिया गाने, फिर बहुर ना पूख लगावै। कोई करे उपाव अनेक बहु तेरे, बिन कृपा नाम ना पावै, जन नानक कहो हर कृपा तारी, मत गुरमत नाम दृढ़ावै। जप नाम करमा, मत माता मत जियो, नाम मुख रामा, संतोख पिता कर, गुरपुरख्या जन्मा, वडभागी मिल रामा, गुर जोगी पुरख मिलया, रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा, सदा निर्वाणी जियो, वडभागी मिल सुगड़ सुजानी जियो। मेरा मन तन हर रंग भिन्ना, आवो संतो मिल नाम जपाहा, वे संगत नाम सदा लै लाहा जियो, कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो। मिल पूर्व लिखियाड़े तुर करमा, सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो, मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया, हर अमृत वुठड़ा मिलिया हर राया जियो। जन नानक प्रेम रतन्ना, गौड़ी माज महला चौथा, आओ सखी गुण कामन करीहा जियो, मिल संत जना रंग माने रलिया जियो, गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो, हर तुठे टोल टोल मिलिया जियो। मेरा मंत्र प्रेम लगा हर ढोले जियो, मैं मेले मित्र सतगुर वे चोले जियो, मन देवा संता मेरा प्रमेले जियो, हर विटड़ियो सदा कोले जियो। वस मेरे प्यारिया, वस मेरे गोविंदा, हर कर कृपा मन वस जियो, मन चिंदियाड़ा फल पाया मेरे गोविंदा, गुरपूरा वेख विगस जियो। हर नाम मिलिया सुहागणी मेरे गोविंदा, मन अनदिन अनदर हस जियो, हर पायाड़ा वडभागी मेरे गोविंदा, नित लै लाहा मन हस जियो। हर आपो पाए हर आपे वेखे, हर आपे कार लाया जियो, एक खावे बख्स तोट ना आवे, एक ना फुका पाया जियो, एक राजे तख्त बह नित सुखिए, एक ना पिख मंगाया जियो, सब एको शब्द वर्तदा मेरे गोविंदा, जन नानक नाम ते आया जियो। गौड़ी माज महला चौथा, मन माही मेरे गोविंदा, हर रंग रता मन माही जियो, हर रंग नाल ना लखिए मेरे गोविंदा, गुरपूरा लख लखाही जियो, हर हर नाम प्रगासिया मेरे गोविंदा, सब दाल दो दुख लह जाही जियो, हर

संचारे खोजत खोजत नहीं कर पाया, अमोल रतन साच दिखलाया। कर कृपा जा मिले साहे, कहो नानक गुर कै वे साहे। गौड़ी महला पंजवां ग्वारेरी, रैन दिनस रहे करंगा। प्रभ को जाने सधी संगा, ठाकर नाम कियो उन वर्तन। तृप्ता गावन हर कै दर्शन, हर संग्राते मंतन हरे। गुर पूरे की सरनी परे रहाओ, चरण कमल आत्म आधार। एक निहार आज्ञाकार, एको बनजो एको व्यवहारी। अवर न जाने बिन रंकारी, हरख सोग दहूं ते मुक्ते। सदा अलिपत जोग हर जुगते, दिसे सब मैं सब ते रहते। पार ब्रह्म का होए ध्यान तरते, संतर की महिमा कमन बखाना। आगाध बोध किस्मत नहीं जानो, पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय। तूर संतन की नानक दी जय। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत। तू मेरा प्रीतम तुम संगहीत, तू मेरी पात।

तुम राखो तिवि ही रहना, जो तुम कहो सोई मोहे करना, जह पेखो तहां तुम बसना, निरपो नाम जपो तेरा रसना। तू मेरी नवनिध तू पंडार, रंग रसा तू मन आधार, तू मेरी शोभा तुम संगरचिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया, सतगुर ते दृढ़ केक, नानक दास हर हर हर टेक, गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। व्यापत हरक सोग विस्तार, व्यापत स्वर्ग नरक अवतार, व्यापत धन निरतन पेक शोभा, मूल व्याधि व्याप सलोभा। माया व्याप्त बहु प्रकारी, संत जीव प्रभु उठ तुम्हारी रहाओ, व्यापत अहम बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्र संग्राता। व्यापत हस्त घोड़े अर बस्ता, व्यापत रूप जोबन मदमस्ता, व्यापत भूम रंग कर रंगा, व्याप्त गीत ना सुन संगा, व्याप्त सेज मैल सिंगार, पाई दूध व्याप्त अंधियार। व्यापत कर्म करे हो फासा, व्याप्त ग्रस्त व्याप्त उदासा, आचार व्यवहार व्याप्त हे जात, सब किश व्याप्त बिन हर रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहा व्यापे माए, कहो नानक जन तूर संत पाई, ताके निकट न आवे माई। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, नैनो नींद पर दृष्ट विकार, सर्वन सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लो मीठा साद, मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रहे, सावत वस्तु अपनी लह रहाओ। सगल सहेली अपने रस माती, गृह अपने की खबर ना जाती, मुसनहार पंच बटवारे, सुने नगर परे ठगहारे। उनते राखे बाप ना माई, उनते राखे मीत ना भाई, दर्ब से अणप ना होए रहते, साह संग दुष्ट वस होते। कर कृपा मोहे सारिंग पाण, संतन तूर सर्व निधान, सबत पूंजी सतगुर संग, नानक जागे पार ब्रह्म कै रंग। सो जागे जिस प्रभ कृपाल, एह पूंजी सब धन माल, रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा। जा कै वस खान सुल्तान, जा कै वस है सगल जहान, जा का किया सब किश होए, तिसते बाहर नाही कोए। कहो बेनंती अपने सतगुर पाहे, काज तुम्हारे दे निवाहे रहाओ। सब ते ऊच जा का दरबार, सगल भगत जा का नाम आधार, सर्व व्यापत पूर्ण धनी, जाकी शोभा कड़कड़ बनी। जिस सिमरत दुख डेरा ट है, जिस सिमरत जम किशु नाम कह, जिस सिमरत होत सूके हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे। संत सभा कहो सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण आधार। कहो नानक मेरी सुनी अरदास, संत प्रसाद मोको नाम निवास। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, सतगुर दर्शन यज्ञ निवारी, सतगुर पेड़ तो मैं मारी, सतगुर संग नाही मंडोलै, अमृत बाणी गुरमुख बोलै। सब जग साचा जा सच मैं राते, शीतल सांत गुरते प्रभ जाते रहाओ। संत प्रसाद जपै हर नाओ, संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे। संत कृपा ते मिटे मोह भरम, साध रेण मजन सब धर्म, साध कृपाल दयाल गोबिंद, साधा मैं अहमरी जिंद। कृपा निध कृपाल त्यावो, साध संगता बैठन पावो, मोहे निर्गुण कहो प्रभ की नींदया, सा संग नानक नाम लया। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, सा संग जप्यो भगवंत, केवल नाम दियो गुरमंत, ताजा मान पै निर्वैर, आठ पैर पूजो गुर पैर। अब मत बिनसी दुष्ट बेगानी, जब ते सुनिया हर जसकानी रहाओ। सहज सुखिया नंद निदान, राखण हार रख ले निदान,
दुख दर्द बिन से पै भरम आवन जान रखे कर करम पेखै बोलै सुने सब आप सदा संग ताको मन जाप संत प्रसाद भयो प्रगास पूर रहे कै गुणतास कहत पवित्र सुनत पुनीत गुण गोविंद गावे नित नीत कहो नानक जां को हो कृपाल ते जन कीसा पूर्ण काल गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा बंधन तोड़ बोलावे राम मन में लागे साहि ध्यान मिटै क्ले सुखी हो रही है ऐसा दाता सतगुर कही है सो सुखदाता जे नाम जपावे कर कृपा ते संग मिलावे रहाओ जिस होए दयाल तिस्या मिलावे सर्वनिदान गुरु ते पावे आप त्याग मिटै आवन जाना साध कै संग पार ब्रह्म पिछाणा जानी ऊपर प्रभ दयाल जन की टेके गोपाल एका लेवे को मन पाओ सर्वनिदान जन कै हर नाओ पार ब्रह्म से लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपुरै मेटिया दिहारा नानका प्रभ अपरिया पारा गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा जिस मन वसै तेरा जन सोए जा कै कर्म प्राप्त होए दुख रोग कछ पौ ना ब्यापै अमृत नाम हृदय हर जापै पार ब्रह्म परमेश्वर त्याई है गुरपुरे ते ए मत पाई है रहाओ करण करावन हार दयाल जी जंत सगले प्रतपाल अगमा गोचर सदा बेअंता सिमरमना पूरे गुरमंता जाकी सेवा सर्वनिधान प्रभ की पूजा पाई है मान जाकी टहल न बिरथी जाए सदा सदा हर के गुण गाए कर कृपा प्रभ अंतर जामी सुख निधान हर लख स्वामी जी जन तेरी सरनाई नानक नाम मिलै वडियाई गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा जी जुगत जा कह हाथ सो सिवरो अनाथ को नाथ प्रवचित आए सब दुख जाए पैसा बिन सहर कह नाए बिन हर पौ काहे का मान हर बिसर तो काहे सुख जान रहाओ जिन तारे बहुत तरनिया गास जा की जोत जी प्रगास जा की बख्शना मेटै कोए सिमर सिमर प्रभ निरपौ होए आठ पहर सिमरो प्रभ नाम अनक तीर्थ मजन इशनान पार ब्रह्म की सरनी पाहे कोट कलंक खिरमै

गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवां, गुरप्रसाद नाम मन लागा, जन्म जन्म का सोया जागा, अमृत गुण उचरै प्रभाणी, पूरे गुर की समत प्राणी, प्रभ सिमरत कुशल सब पाए, घर बाहर सुख सह सुबाए, रहाओ सोई पछाता जनै उपाया, कर कृपा प्रभ आप मिलाया, बह पकड़ो लीनो करे अपना, हर हर कथा सदा जप जपना, मंत्र तंत्र औखद पुनै चार, हर हर नाम जी प्राण आधार, साचा तर पायो हर रंग, दुत्तर तरे साध कै संग, सुख बैसो संत सज्जन परवार, हर तन खटियो जाका नाहे सुमार, जिसै प्राप्त तिस गुरदे, नानक बिरथा कोई नाहे, गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवां, हस प्रनीत होए तत्काल, बिरस जाए माया जंजाल, रसना रमो राम गुण नीत, सुख पावो मेरे पाई मीत, लिख लेखण कागद मसवाणी, राम नाम

इतना जो है माया मगन न कछु है मोह है उधर आप तरह संसार राम नाम जप एक ओंकार आप कमाओ अवरा उपदेश राम नाम हृदय प्रवेश जा कै माथा एहो निदान सोई पुरख जपै भगवान आठ पहर हर हर गुण गाओ कहो नानक हौ तिस बल जाओ राग गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा चौपदे दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो प्रायो सोई अपना जो ता छोड़न ते स्यो मन रचना कहो गुसाई मिली है के है जो बिवर्जित ते स्यो ने है रहाओ झूठ बात सा सच कर जाती सत होवन मन लगे ना राती बावे मार्ग टेढ़ा चलना सीधा छोड़ा पूठा बुनना दुहा सरिया का खसम प्रभ सोई जिस मेले नानक सो मुक्ता होई गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा कल युग में मिले आए संजोग जिचर आ गया तिचर पोगे भोग जले ना पाईए राम स्नेही किरत संजोग सती उठ होई रहाओ देखा देखी मन हट जल जाइए प्रे संग ना पावे बहुजोन पवाइए सील संजम प्रयाया गया मन तिस नारी कहो दुख ना जमाने कहो नानक जिन प्रयो परमेसर कर जाने तन सती दरगह परवाने गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा हाव तन मन तो पालक सच नाए हर गुण गावे सही सुभाए रहाओ पियू दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरा मन पया निधाना अर्तन लाल जाका कछु ना मोल परे पंडारा खूटा तोल खावे खर्चे रल मिल पाई तोट ना आवे वद दो जाई कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए सो एत खजाने लिया रलाए गौड़ी महला पंजवा डर डर मरते जब जानिए दूर डर चुका देखिया भरपूर सत

गाम बुरा भला कोई ना कही जय छोड़ मन हर चरण कही जय कहो नानक गुर मंत्र चितार सुख पावै साचा दरबार गौड़ी महला पंजवा जा का मीत सजन है समिया तिस जन कहो कहो का की कमिया जा की प्रीत गोबिंद स्यों लागी दुख दर्द प्रमता का भागी रहाओ जा कहो रस हर रस है आयो सो अनरस नाही लपटायो जा का कहया दरगह चले सो किसको नजर लाया वै तले जा का सब हिता का होए नानक ता कहो सदा सुख होए गौड़ी महला पंजवा जा कै दुख सुख सम कर जापै ताको काड़ा कहां ब्यापै सहजर अंदर साधु माहे आज्ञाकारी हर हर राय रहाओ जा कै चिंत वसै मन आए ताको चिंता कतहू नाहे जा कै बिरस्यो मन ते भरमा ता कै कछु नाही डर जमा जा कै हृदय दियो गुरनामा कहो नानक ता कै सगल निदाना गौड़ी महला पंजवा अगम रूप का मन मैं थाना गुरप्रसाद किने वर लै जाना सहज कथा के अमृत कुंटा जिसे प्राप्त तिसलै पुंचा रहाओ अनहत बाणी थान निराला ताकि तुन मोहे गोपाला तै सहजा खारे अनेक अनंता पार ब्रह्म के संगी संता हर ख्यानंत सोग नहीं बिया सो घर गुर नानक कौ दिया गौड़ी महला पंजवा कवन रूप तेरा आरा दो कवन जो काया ले सा दो कवन गुण जो तुझ लै गावो कवन बोल पार ब्रह्म रिझावो रहाओ कवन सो पूजा तेरी करो कवन सो बेद जित भव जलता रहो कवन तापो जित तपिया होए कवन सो नाम हम मैं मल खोए गुण पूजा ज्ञान ध्यान नानक सगल कहाल जिस कर कृपा सदगुरु मिले दयाल तिस ही गुण तिन्ही प्रभ जाता जिसकी मान ले सुखदाता रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा आपन तन नहीं जा को गरबा राज मिलख नहीं आपन दरबा आपन नहीं का को लपटायो आपन नाम सदगुर ते पायो रहाओ सुत बनता आपन नहीं पाई इष्ट मीत आप बाप ना माई सोना रूपा फुन नहीं दाम हैवर गैवर आपन नहीं काम कहो नानक जो गुर बख्श मिलाया तिसका सब किश जिसका हर राया गौड़ी महला पंजवा गुर के चरण उपर मेरे माथे ताते दुख मेरे सगले लाथे सतगुर अपने कौ कुर्बानी आत्म चीन परम रंग।

सहे सुभाए बोले हर बाणी, आठ पहर प्रभ सिमरो प्राणी। दुख दर्द जम निर्णय आवै, कहो नानक जो हर गुण गावै। गौड़ी महला पंजवां, पले दिनस पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निरजोग। ओह बेला को हम बल जाओ, जित मेरा मन जपै हर नाओ रहाओ। सफल मूर्त सफल ओह करी, जित रसना उचरै हर हरी। सफल ओह माथा संत नमस्कार, सो चरण पुनीत चले हर मार्ग। कहो नानक भला।

पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी सगल कटाके अंतरजामी करो अरदास अपने सतगुर पास नानक नाम मिले सचरास गौड़ी महला पंजवा कण बिना जैसे थोथर तुखा नाम बिहून सुने से मुखा हर हर नाम जपो नित प्राणी नाम बिहून त्रिगदेह बेगानी रहाओ नाम बिना नाही मुख भाग परत बिहून कहां सोहाग नाम बिसार लगे अनसवाए ताकि आसना पूजे काए कर कृपा प्रभ अपनी दात नानक नाम जपै दिन रात गौड़ी महला पंजवा तू समर्थ तू है मेरा स्वामी सब किश तुम ते तू अंतर जामी पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट तेरी शरण उधरे जन कोट रहाओ जेते जी ते सब तेरे तुमरी कृपा ते सुख नेरे जो किश वरतै सब तेरा पाणा हुक्म बूझै सो सच समाणा कर कृपा दीजै प्रभदान नानक सिमरै नाम निधान गौड़ी महला पंजवा ताका दर्श पाईऐ वडभागी जा की राम नाम लिव लागी जा कै हर वसिया मन माही ताको दुख सुपने पी नाही रहाओ सर्व निधान राखे जन्मा है ताकै संग किलविख दुख जाए जन की महिमा कथी न जाए पार ब्रह्म जन रया समाए कर कृपा प्रभ बिनो सुनिजै दास की तूर नानक कहो दीजै गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत तेरी जाए बलाए सर्व कल्याण वसै मन आए पज मन मेरे को नाम जी तेरे कै आवै काम रहाओ रैन दिनस गुण गाओ अनंता गुरपूरे का निर्मल मंता छोड़ उपाव एक टेक राख महापदार्थ अमृत रस चाख बिखम सागर तेई जन तरे नानक जा कौन नदर करे गौड़ी महला पंजवा हिरदय चरण कमल प्रभ धारे पूरे सतगुर मिल।

सुख सहज सांत आनंदा, जब जब जीवे परमानंदा, नाम रास साध संखाटी, कहो नानक प्रभ अपदा काटी। गौड़ी महला पंजवा, हर सिमरत समट कलेस, चरण कमल मन में प्रवेश, उचरो राम नाम लख बारी, अमृत रस पीओ प्रप्यारी, रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा, जब जब जीवे परमानंदा, काम क्रोध लो मद खोए, साध कै संग किल बिख सब धोए, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक दी जय सादर वाला। गौड़ी महला पंजवा, जिसका दिया पहने खाए, तिस्यों आलस क्यों बने माए, खसम बिसार आन कम लागे, कौडी बदले रतन त्याग, रहाओ प्रभु त्याग लागत अनलोभा, दास सलाम करत कत सोभा, अमृत रस खावे खान पान, जिन दिए तसै न जाने सुवान,

प्रभ के चरण मन माहे ध्यान, सगल तीर्थ मजन इशनान, हर दिन हर सिमरन मेरे भाई, कोट जन्म की मन ले जाई रहाओ, हर की कथा रिद माहे बसाई, मन बाहित सगले फल पाई, जीवन मरण जन्म परवान, जा कर दे वसै भगवान, कहो नानक से ही जन पूरे।

कोट बिगन हेरे खिनमाहे, हर हर कथा साध संग सुनाहे, पीवत राम रस अमृत गुण जास, जप हर चरण मिटी खोतास, रहाओ सर्व कल्याण सुख सहज निदान, जा कर दैवसै भगवान, औखद मंत्र तंत सब शार, करने हर दे मैं तार, ताज सब परम पजो पार ब्रह्म, कहो नानक टाल्यो धर्म, गौड़ी महला पंजवां, कर कृपा भेटे गुर सोई, तित बल रोग न व्यापै कोई, राम रमण तरन पै सागर, सरन सूर फारे जमकागर, रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम, एह असर पूर्ण पय काम, जप तप संजम पूरी वड्याई, गुर कृपाल हर पय सहाई, मान मोह खोए गुर भरम, पेख नानक पसरे पार ब्रह्म, गौड़ी महला पंजवा, बिखै राज ते अंदला भारी, दुख लागै राम नाम चितारी, तेरे दास को तुही वड्याई, माया मगन नरक लै जाई, रहाओ रोग ग्रस्त चितारे नाओ, बिख माते का ठौर ना ठाओ, चरण कमर स्यों लागी प्रीत, आन सुखा नहीं आवै चीत, सदा सदा सिमरो प्रभु स्वामी, मिल नानक हरे अंतर जामी, गौड़ी महला पंजवा, आठ पहर संगी बटवारे, कर कृपा प्रभु ले निवारे, ऐसा हरस रमो सब कोए, सर्व कला पूर्ण प्रभु सोए, रहाओ महातपत सागर संसार, प्रभु खिन मैं पारो तारन हार, अनक बंधन तोरे नहीं जाए, सिमरत नाम मुक्त फल पाए, उगत सियानप इस्ते कछ नाहे, कर कृपा नानक गुण गाहे, गौड़ी महला पंजवा, थाती पाई हर को नाम, बिचर संसार पूर्ण सब काम, वड़ भागी हर की

साधु संग करो सब कोए, सदा कल्याण फिर दुख ना होए। प्रेम भगत पज गुणी निधान, नानक दरगह पाई है मान। गौड़ी महला पंजवा, जल थल महियल पूर्ण हरमीत, प्रम बिन से गाए गुणनीत। ऊठत सोवत हर संग पहरुआ, जा कै सिमरन जमने डरुआ। रहाओ चरण कमल प्रभु दे निवास।

हर हर नाम मजन कर सूचे, कोट ग्रहण पुन फल मुचे। रहाओ हर के चरण हृदय में बसे, जन्म जन्म के किलबख नसे। साध संग कीर्तन फल पाया, जमका मार्ग दृष्ट न आया। मन बच क्रम गोविंद आधार, ताते छुट्यो बिक संसार। कर कृपा प्रभ कीनो अपना, नानक जाप जपे हर जपना। गौड़ी महला पंजवा, पौ सरण आई जिन हर जाते। मन तन शीतल चरण हर राते। पै पंजन प्रभ माना बसाही, डरपत डरपत जन बहुत जाही। रहाओ जा कर दे बस्यो हर नाम, सग मनोरथ ताके पूर्ण काम। जन्म जरा मृत जसवास, सो समर्थ सिमर सास गिरास। मीत साजन सखा प्रभ एक, नाम स्वामी का नानक टेक। गौड़ी महला पंजवा।

गुर प्रसादी सागर तरिया, जन्म जन्म के किलवक सब हिरिया, शोभा सुरत नाम भगवंत, पूरे गुर का निर्मल मंत, चरण कमल हृदय में जाप, नानक पेख जी वै प्रताप, गौड़ी महला पंजवा, तन एहो थान गोविंद गुण गाए, कुशल खेम प्रभ आप बसाए, रहाओ विपत तहां जहां हर सिमरन नाही, कोट आनंद जय हर गुण गाही, हर बिसरे है दुख रोग कनेरे, प्रभ सेवा जम लगे नानेरे, सो वड़ पागी निश्चल थान, जह जपिए प्रभ केवल नाम, जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी, नानक कहो मिलिया अंतर जामी, गौड़ी महला पंजवा, जो प्राणी गोविंद त्यावै, पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावै, साधु संग सिमर गोपाल, बिना मैं झूठा तन माल, रहाओ रूपवंत सो चतर सियाणा, जिन जन मान्या प्रभ का पाणा, जग मैं आया सो प्रवाण, घट घट अपना स्वामी जान, कहो नानक जाके पूर्ण भाग, हर चरणी ता का मन लाग, गौड़ी महला पंजवा, हर के दास स्यों सागत नहीं।

बैल कहो नेत्रा पाए दुहावै, गऊ चर सिंह पाछै पावै। गाडर ले काम तेन कर पूंजी, सौदे कौतावै बिन पूंजी। नानक राम नाम जपचीत, सिमर स्वामी हर सामीत। गौड़ी महला पंजवां, सामत निर्मल कहियत धीर। राम रसायन पीवित बीर, हर के चरण हृदय कर ओट। जन्म मरण ते होवत छोट रहाओ। सो तन निर्मल जित उपजै ना पाप, राम रंग निर्मल प्रताप। साध संग मिट जात बेकार, सब ते ऊंच एहो उपकार। प्रेम भगत राते गोपाल, नानक जाचै सादरवाल। गौड़ी महला पंजवा, ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी। मेल लए पूरा

आठ पहर त्याई है गोपाल, नानक दर्शन देख निहाल, गौड़ी महला पंजवा, सांत भई गुरु गोविंद पाई, ता पाप बिन से मेरे भाई रहाओ, राम नाम।

गई ब्याद उबरे जनमीत, मन बच कर्म प्रभ अपना त्याई, नानक दास तेरी सरनाई। गौड़ी महला पंजवा, नेत्र प्रगास किया गुरुदेव, परम गए पूर्ण पई सेव रहाओ। सीतलाते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी, नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै। गौड़ी महला पंजवा, तन ओह मस्तक तन तेरे नेत, तन ओए भगत जिन तुम संग हेत, नाम बिना कैसे सुख लईऐ, रसना राम नाम जस कहियै रहाओ। तेन उपर जाइय कुरबान, नानक जिन जपया निर्वाण। गौड़ी महला पंजवा, तू है मसलत तू है नाल, तू है राखै सार समाल, ऐसा राम दीन दुनी सहाई, दास की पैज रखै मेरे भाई रहाओ। आगे आप एहो थान वस जाकै, आठ पैर मन हर को जापै, पत प्रवान सच निशान, जाको आप करै फुरमान, आपे दाता या प्रतपाल, नित नित नानक राम नाम समाल। गौड़ी महला पंजवा, सतगुर पूरा पया कृपाल, हृदय वसिया सदा गोपाल, राम रवत सदी सुख पाया, माया करी पूर्ण हर राया रहाओ। कहो नानक जाके पूरे भाग, हर हर नाम अस्तर सोहाग। गौड़ी महला पंजवा, तोती खोल विछाए हेठ, गर्द पवांगू लाहे पेट, बिन कर तूती मुक्त ना पाई है,

करो दास दासन की अनक पांत करो निहोरा, तुला तहार तोले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा। संत प्रसाद गाय गुण सागर जन्म जन्म को जात बहोरा, आनंद सुख पेट तहर नानक जन्म कृतार्थ सबल सवेरा। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। केन विद मिले गुसाई मेरे राम राय, कोई ऐसा संत सह सुखदाता मोहे मार्ग दे बताई रहाओ। अंतर अलख न जाई लखिया, विच पढ़दा हूं मैं पाई, माया मोहे सबो जग सोया एहो परम कहो क्यों जाई। एका संगत एकत ग्रह बसते, मिल बात ना करते भाई, एक बसद बिन पंच दुहेले ओ बसदा गोचर ठाई। जिसका गृह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सौ पाई, अन क्यों पाव करे नहीं पावै बिन सतगुर सरनाई। जिनके बंधन काटे सतगुर, तिन साध संगत लिव लाई, पंच जना मिल मंगल गाया, हर नानक भेद ना पाई। मेरे राम राय इन बिद मिले गुसाई, सहज पया परम खिन मैं नठा, मिल ज्योति जो समाई। रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा, ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीठ लै, सतगुर मजै बतायो रहाओ। जात का देखो ताता तुम ही, मोहे एहो विश्वास होए आयो, कै पै करो अरदास बेनती जो सुनतो है रगरायो। लयो सहसा बंधन गुर तोरे, ता सदा सह सुख पायो, होना सा सोई फुन होसी। सुख दुख कहां दिखायो, खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा, गुर पर्दा खोल दिखायो। नाव निद नाम निधान इकठाई, तो बाहर कैठ जायो। एक कनक अनक भांत साजी, बहु प्रकार रचायो, कहो नानक परम गुर खोई है, इव तत् तत् मिलायो। गौड़ी महला पंजवा, औद कट है दिन सुरै नारे, मन गुरमिल का इसवारे। रहाओ करो बेनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की वेला, इहां खाड़ चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। एहो संसार बेकार सहसे मैं, तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पी आए हर रस, अकथ कथा तिन जानी। जां को आए सोई विहा जाओ, हर गुरते मने बसेरा, निज कर महल पावो सुख सहजे, बहुर ना होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख विधाते, सरदा मन की पूरे, नानक दास ही सुख मांगे, मोको कर संतन की तूरे। गौड़ी महला पंजवा, राख पिता प्रभ मेरे, मोहे निर्गुण।

ले वर्ण ना साकौ तुमरे रंगा गुणदान सुखदाते अगमै गोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुर ते जाते भ्रम पौ काट किए नह केवल जब ते हमें मारी जन्म मरण कौ चूको सहसा साध संगत दरसारी चरण पखार करो गुर सेवा बार जाओ लख बरिया जेह प्रसादे पौ जल तरिया जन नानक प्रिय संग मिरिया गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन कमनरी जावे तो ही तेरो रूप सगल देख मोही रहाओ सुर्ग पयाल मृत भू मंडल सर्व समानो एक ओही शिव शिव कर तो सगल कर जोर सर्व माया ठाकर तेरी दोही पतत पावन ठाकर नाम तुमरा सुखदाई निर्मल सीत लोही ज्ञान त्यान नानक वड्याई संत तेरे स्यों गाल गलोही गौड़ी महला पंजवा मिलो प्यारे जिया प्रभ किया तुम्हारा थिया रहाओ अनक जन्म बजोनी भ्रमिया बहुर बहुर दुख पाया तुमरी कृपा ते मान खुदेह पाई है देहो दर्श हर राया सोई होवा जो तिस पाणा यवरना किन्ही कीता तुमरे पाणे परम मोहे मोहया जगत नाही सूता बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारे कृपा निदयाला राख लेहो पिता प्र मेरे अनाथ कर प्रतपाला जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन साध संगत कै पाचे कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक एहो बाचै।

रहाओ। अनक जुगत नहीं पाया, गुरचा कर लै लाया, मारे पंच बिखा दिया, गुर कृपा ते दल साध्या, बख्शीस वजो मिले एक नाम, सुख सहज आनंद विश्राम। प्रभ के चाकर से भले, नानक तिन मुखी उजले, गौड़ी महला पंजवा, जिया रे ओला नाम का, अवर जे करन करावनो, तिन मैं पाओ है जाम का रहाओ। अवर जतन नहीं पाई है, वड़े पाग हर त्याई है, लाख हिकमती जानी है, आगे तिल नहीं मानी है। आहू बुद्ध कर्म कमावने, ग्रह बालू नीर बहावने, प्रभ कृपाल कृपा कर, नाम नानक साधु संग मिले। गौड़ी महला पंजवा, बार न बलिहार न लख बरिया, नामो हो नाम साहिब को, प्राण अदरिया रहाओ। करन करावन तुही एक, जी जंत की तुही टेक, राज जोबन प्रभ तू तनी, तू निर्गुण तू सरगुनी। इहां उहां तुम रखे, गुर कृपा ते को लखे, अंतर जामी प्रभ सुजान, नानक तकिया तू ही तान। गौड़ी महला पंजवा, हर हर हर आराधिये, संत संग हर मन वसै, परमोह पौसा दिए रहाओ। वेद प्राण सिमरत बने, सब ऊच बरायत जन सुने, सगल अस्थान पै पीत चीन, राम सेवक पै रहत कीन। लख चौरासी जोन फिर, गोविंद लोक नहीं जन्म मरै, बल बुद्ध सियान पहुं मैं रही, हर साध सरन नानक गही। गौड़ी महला पंजवा, मन राम नाम गुन गाइय, नीत नीत हर सेवी है, सास सास हर त्याई है रहाओ। संत संग हर मन वसै, दुख दर्दा नेरा प्रम नसै, संत प्रसाद हर जापी है, सो जन दुख ना व्यापी है। जां को गुर हर मंत्र दे, सो उबरिया माया अग्न ते, नानक को प्रमया कर, मेरे मंत्र वसै नाम हर। गौड़ी महला पंजवा, रसना जपिए एक नाम, इहां सुख आनंद कना, आगे जी के संग काम रहाओ। कटिए तेरा अहंग रोग, तू गुर प्रसाद कर राजयोग, हर रस जिन जन चाखिया, ताकि तृष्णा लाथिया, हर विश्राम निध पाया, सो बौर नकत ही ताया, हर हर नाम जा को गुर दिया, नानक ता का पौ गया। गौड़ी महला पंजवा, जा को बिसर राम नाम, ताहू को पीर, साध संत मिल हर रवै, से गुणी गहीर रहाओ। जा को गुरमुख हृदय बुद्ध, ता कै कर तल नव निध सिद्ध, जो जाने हर प्रभ तनी, किश नाही ता कै कमी। करने हर पिछानिया, सर्ब सुख रंग माणिया, हर तन जा कै गृह वसै, कहो नानक तिन संग दुख नसै। गौड़ी महला पंजवा, गर्भ बड़ो मूल इतनो, रहन नहीं गहो कितनो रहाओ। बेबर्जित बेद संतना, उवाहू स्यों रे हितनो, हार जुआर जुआ बिदे, इंद्री वस लै जितनो। हरन परन संपूर्णा, चरण कमल रंग रितनो, नानक उदरे साध संग, कृपा निध मैं दितनो।

शरण पर्यो ठाकुर वजीरा, तिना देख मेरा मन तीरा। एक टेक एको आधारा, जन नानक हर की लागा कारा। गौड़ी महला पंजवा, है कोई ऐसा हो मैं तोरे, इस मीठी ते हो मन हो रै रहाओ। अज्ञानी मानख पाया, जो नाही सो लो रै। रैन अंधारी कारिया, कवन जुगत जित पोरे। प्रम तो हारिया, अनक विधि कर टोरे। कहो नानक कृपा पई, साध संगत निध मोरे। गौड़ी महला पंजवा, चिंता मन करना मैं रहाओ। दीन दयाला पार ब्रह्म, जा कै सिमरन सुख पए। अकाल पुरख अगाध बोध, सुनत जसो कोट अग खए। कृपा नित प्रमया तार, नानक हर हर नाम ले। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए। जा दिन बिसरे प्राण सुखदाता, सो दिन जात आ जाए रहाओ। एक रैन के पाहुन तुम आए, बोजुग आस बधाए। गृह मंदिर संपै जो दिसे, जो तरवर की शाए। तन मेरा संपै सब मेरी, बाग मिलक सब जाए। देवनहारा बिसरो ठाकरो, खिर मैं होत पर आए। पहरे बागा कर इशनाना, चोवा चंदन लाए। निरपो निरंकार नहीं चीनिया, ज्यो हस्ती ना वाए। जौ होए कृपाल, ता सतगुर मिले, सब सुख हर के नाए। मुक्त पाया बंधन गुर खोले, जन नानक हर गुण गाए। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए। रतन जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बलिहारिए रहाओ। जेते सास ग्रास मान लेता, तेते ही गुण गाइए। जा होए दयाल सतगुर अपना, ताए मत बुद्ध पाइए। मेरे मन नाम ले, जम बनते छूटे। सर्व सुखा सुख पाइए, सेव स्वामी सतगुर दाता। मन वंचित फल आइए, नाम इष्ट मीत सुत करता। मन संग तुहारे चाले, कर सेवा सतगुर अपने की। गुरते पाइये पाले, गुर कृपाल कृपा प्रभ तारी। बिन से सर्ब अंदेसा, नानक सुख पाया हर कीर्तन। मिट्यो सगल कलेसा, राग गौड़ी महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तृष्णा बिरले ही की बुझी है रहाओ। कोट जोरे।

ओही पाठी ओही पोचा, ओही प्यारो ओही रुचा, मन ओहो सुख जातो सहज केलो, अनद खेलो रहे फेरो पय मेल, नानक गुरशब्द परातो, राग गौड़ी मालवा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर नाम ले हो मीता ले हो, आगे बिखम पंथ पयान रहाओ, सेवत सेवत सदा सेव, तेरा संग बस्त है काल, कर सेवा तू साध की हो कटिए जमजाल, होम जग तीर्थ किए बिचह मैं बदे बेकार, नरक सुर्ग दोए पुंच ना होए बहुर बहुर अवतार, शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी निचल को थाओ नाहे, बिन हर सेवा सुख नहीं हो साक्त आवे जाहे, जैसो गुर उपदेसया मैं तैसो कहया पुकार, नानक कह सुन रे मना कर कीर्तन होए उदार, राग गौड़ी माला महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पायो बाल बुद्ध सुख रे, हरख सोग हान मृत, दुख सुख चित संसार गुर मिले रहाओ, जाओ लो हाँ के सोचो चितवाओ, तौ लो दुखन परे, जाओ कृपाल गुर पूरा पेटिया, तौ आनंद सहजे, जेती सियानप कर्म हों किए, तेते बंद परे, जौ साधु कर मस्तक धरयो तब हम मुक्त पए, जौ लो मेरो मेरो कर तो तौ लो बिख घेरे, मन तन बुद्ध अर्पी ठाकर कहो तब हम सहज सोए, जौ

त्यागियो सर्व सुखे आनंद मंगल रस मान गोविंद आग्यो रहाओ मान अभमान दो उस माने मस्तक डार गुर पाग्यो संपत हरख ना आपत दुखा रंग ठाक रह लाग्यो बास बासरी एक है स्वामी उद्यान दृष्टा गयो निरपव पय संत भ्रम डार्यो पूर्ण सर्वाग्यो जो किश करता है कारण कीनो मन बुरो ना लाग्यो साध संगत प्रसाद संतन कह सोयो मन जाग्यो जल नानक ओड़ तुहारी परयो आयो सरनाग्यो नाम रंग सहज रस माने फिर दुख ना लाग्यो गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन शीतल मन शीतल थिया सतगुर शब्द समाया रहाओ लाथी भूख त्रिशन सब लाथी चिंता सगल बिसारी कर मस्तक गुरपुरे धरयो मन जीतो जग सारी तृप्त गाए रहे हृदय अंतर डोलन ते अब चुके अखुट खजाना सतगुर दिया तोट नहीं रे मुके अचरज एक सुनो रे भाई गुर ऐसी बूझ बुझाई लाहे पर्दा ठाकर जाओ भेटियो तो बिसरी तात पर आई कहो ना जाई यो अचंभो सो जाने जिन चाखिया कहो नानक सच भय बिगासा गुर निधान हृदय लै राखिया गौड़ी माला महला पंजवा उबरत राजा राम की सरनी सर्वलोक माया के मंडल गिर गिर परते धरनी रहाओ सात सिमरत वेद बिचारे महापुरख ने ओ कहया बिन हर भजन नाही निस्तारा सुख न किन्हू लहया तीन पवन की लक्ष्मी जोरी बुझत नाही लहरे बिन हर भगत कहां थित पावै फिर तो पहरे पहरे अनक बिलास करत मन मोहन पूर्ण होत ना कामा जल तो कबहू ना बूझत सगल बिरथे बिन नामा हर का नाम जपो मेरे मीता एह सार सुख पूरा साध संगत जन मरण निवार नानक जन की तूरा गौड़ी माला महला पंजवा मोको हिबद को समझावे करता होए जनावे रहाओ अनजानत किश इन्हें कमानो जब तब कछु ना सादा दह दिस लयो मन दौरायो कमन कर्म कर बादा मन तन तन भूमिका ठाकर हाँ इसका हो मेरा भरम मोह कै सूझ सुनाही एह पैखर पै बैरा तब यो कहां कमावन परया जब यो कछु ना होता जब एक निरंजन रंकार प्रभु सब कुछ आपे करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिने हो रचन रचाया कहो नानक करण हार है आपे सतगुर परम चुकाया गौड़ी माला महला पंजवा हर बिन अवर क्रिया बिरथे जप तप संयम कर्म कमाने एह ओर मूसे रहाओ बरत नेम संयम में रहता तिनका आड ना पाया आगे चरण ओर है भाई ऊहा काम न आया तीर्थ नाए

क्यों पेखा प्रीतम कवन सुकरणी जियो, संता दासी सेवा चरणी जियो। एहो जियो बताई बल बल जाई जियो, तिस निम निम लागों पाई जियो। पोथी पंडित बेद खोजनता जियो, होए बैरागी तीर्थ नावंता जियो। गीत नाद कीर्तन गावंता जियो, हर निरपौ नाम ते आई जियो। पए कृपाल स्वामी मेरे जियो, पतत पवित लग गुर के पैरे जियो। भ्रमपो काढ़ किए निर्वैरे जियो, गुरमन की आस पुराई जियो। जिन नाव पाया सो तनवंता जियो, जिन प्रभ त्याया सो सोभावंता जियो। जिस साधु संगत ते सब सुकरणी जियो, जन नानक सहज समाई जियो। गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो। रहन दिन सो साथ साथ चितारे जियो। संत देव संदेसा पै चरणारे जियो, तुद बिन कित बिन तरिए जियो। संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वन त्रिण त्रिभवन सुख परमानंदा जियो। से सुहावी ओ मन बिकसंदा जियो, पेख दर्शन ओ सुख लई है जियो। चरण पखार करी ने सेवा जियो, पूजा अर्चा बंदन देवा जियो। दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकर पै कही है जियो। इच्छ पुन्नी मेरी मंतन हरिया जियो, दर्शन पेख तो सब दुख पर हरिया जियो। हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, एहो अजर नानक सुख सही है जियो। गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन।

जन नानक तिन बल जात, गौड़ी महला पंजवा मांझ। दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम, आठ पहरे आराधी है पूर्ण सतगुर ज्ञान। रहाओ जित कट वसै पार ब्रह्म, सोई सुहावा थाओ, जम कंकर नेड़ न आवई, रसना हर गुण गाओ। सेवा सुरत ना जानिया, ना जापै आराध, ओट तेरी जग जीवना, मेरे ठाकर अगम अगाध। पय कृपाल गुसा

एक बिन एक अस्थिर मन अचरज लख्यो ना जाई रहाओ। काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूर्त बिसराई। झूठा तन साचा कर मान्यो ज्यो सुपना रहनाई। जो दिसै सो सगल बिनासै ज्यो बादर की शाई। जन नानक जग जान्यो मिथ्या रहयो राम सरनाई। गौड़ी महला नावा प्राणी को हर जस मन नहीं आवे। अहनिस मगन रह माया मैं कहो कैसे गुण गावे। रहाओ पूत मीत माया ममता स्यों एह विद्या बंधावे। मृग तृष्णा ज्यो झूठो एहो जग देखता से उठतावे। भुगत मुगत का कारण स्वामी मूड ताहे बिसरावे। जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे। गौड़ी महला नावा साधो एहो मन गहयो ना जाई। चंचल तृष्णा संग बस्त है या ते थिर ना रहाई। रहाओ कठन क्रोध कठी के पीतर जेह सुध सब बिसराई। रतन ज्ञान सब को हिरलीना तासों कछना बसाई। जोगी जतन करत सब हारे गुनी रहे गुन गाई। जन नानक हर पय दयाला तो सब बिद बने।

पत तपुनीत दीन बंद हर शरण ताहे तुम आवो, गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत तुम काहे बिसरावो। ताज अब महान मोह माया फोन भजन राम चित लावो, नानक कहत मुक्त।

वेद पुराण साध मग सुन करो, निमख ना हर गुण गावे रहाओ। दुर्लभ देह पाए मानस की, वृथा जन्म सिरावे, माया मोह महासंकट बानो, ता सो रुच उपजावे। अंतर बाहर सदा संग प्रभु, ता सो नेहु ना लावे, नानक मुक्ता है तुम मानो, जेकट राम समावे। गौड़ी महला नावा, साधो राम शरण बिश्रामा, वेद पुराण पढ़े को एह गुण, सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता फोन, औ बिखियन की सेवा। हरख सोग परसै जेह नहन, सो मूर्त है देवा। स्वर्ग नरक अमृत बिख ए सब, त्यों कंचन अर पैसा। उस्तत निंदा ए समझा कै, लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए दे जे नाहन, तेह तुम जानो ज्ञानी। नानक मुगता है तुम मानो, ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा, मन रे कहां पयो तै बौरा, अहन से औद कटै नहीं जाने, पयो लोभ संग हौरा। रहाओ जो तन तै अपनो कर मान्यो, अर सुंदर गृह नारी। इन मैं कछ तेरो रे नाहन, देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तै हारियो, गोविंद गत नहीं जानी। निमख ना लीन पयो चरणन स्यो, बिरथा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे। और सगल जग माया मोहया, निरपै पद नहीं पावे। गौड़ी महला नावा, नर अचेत पाप ते डर रे, दीन दयाल सगल पै भंजन, शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत, ताको नाम ही है मो धर रे। पावन नाम जगत में हर को, सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देह बहुर नह पावे, कशु उपाओ मूत का कर रे। नानक कहत

निर्मल बाणी परम चुकाया, लाल पय सूहा रंग माया, नदर पई बिख ठाक रहाया, उल्ट पई जीवत मर जागया, शब्द रवै मन हरस्यों लागया, रस संग्रह बिख पर हर त्यागया, पाए बसे जमका पौ भागया, साध रहे बादम अहंकारा, चित हरस्यों राता हुक्म अपारा, जात रहे पथ के आचारा, दृष्ट पई सुख आत्म धारा, तुझ बिन कोय ना देखो मीत, किस सेवो किस देवो चीत, किस पूछो किस लागो पाए, किस उपदेश रहा लिवलाए, गुर सेवी गुर लागो पाए, भगत करी रचो हरनाए, सिख्या दीख्या भोजन पाओ, हुक्म संजोगी निज कर जाओ, गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना, जोत पई ज्योति महे समाना, लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना, करता करना करता जाना, नह पंडित नह चतर सियाना, नह पूलो नह परम पुलाना, कथो न कथनी हुक्म पिछाना, नानक गुरमत सहि समाना, गौड़ी ग्वारेरी महला पहला, मन कुंचर काया उद्यान, गुर अंकस सच शब्द निशान, राज द्वारे सोभ सो मान, चतराई नह चीनिया जाए, बिन मारे क्यों कीमत पाए, रहाओ घर में अमृत तस कर ले, नन्ना कारना कोई करेई, राख आप वड़ियाई दे, नील अनिल अग्न इकठाई, जल निवरी गुर बुझ बुझाई, मन दे लिया रैस गुण गाई, जैसा कार बाहर सो तैसा, बैस गुफा मैं आखो कैसा, सागर डूगर निरपो ऐसा, मुवे कहो कहो मारे कौन, निडरे कहो कैसा डर कवन, शब्द पछाने तिने पौन, जिन कहया तिन कहन वखानिया, जिन बूझिया तिन सहज पछानिया, देख विचार मेरा मन मानिया, कीर्त सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रया समाई, निज कर व्याप रया निठाई, उस्त करह केते मुन प्रीत, तन मन सूचे साच सोचीत, नानक हर पज नीता नीत, गौड़ी ग्वारेरी महला पहला, ना मन मरे ना कार्ज होए, मन वस दूता दुरमत दोए, मन माने गुरते एक होए, निर्गुण राम गुणे वस होए, आप निवार बिचारे सोए, रहाओ मन पूलो बहुचते विकार, मन पूलो सिर आवे पार, मन माने हर एक अंकार, मन पूलो माया कर जाए, काम विरुद्ध रह ना ठाए, हर पज प्राणी रसन रसाए, गैवर हैवर

ऐसा जग देखिया जुवारी, सब सुख मांगै नाम विसारी रहाओ। अदिष्ट दिसै ता कहया जाए, बिन देखे कहने बिरथा जाए। गुरमुख दिसै सै सुभाए, सेवा सुरत एक लिवलाए। सुख मांगत

हरनाक्षले नखो विदासा दैत संघारे बिन भगत अभ्यासा जरा संद काल जमन संघारे रक्त बीज काल नेम बिदारे दैत संघार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द विचारे दूजे पाए दै संघारे गुरमुख साच भगत निस्तारे बूढ़ा दुर्योधन पत खोई राम ना जान्या करता सोई जन को दुख पचै दुख होई जन में जय गुर शब्द ना जानिया क्यों सुख पावे परम भुलानिया एक तिल भूले बहुर पछतानिया कंस केस चांडूर ना कोई राम ना चीनिया अपनी पत खोई बिन जगदीश ना राख कोई बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए गुरमुख गुरमत धर्म तीर जहर नाए नानक नाम मिलै गुण गाए गौड़ी महला पहला चोवा चंदन अंक चढ़ावो पाट पटंबर पहरा हंडावो बिन हर नाम कहां सुख पावो क्या पहराओ।

लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहां सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोड़ सिंगार करे अत प्यारी, बिन जगदीश भजे नित खुआरी, दर कर मैला से सुखाली, एहनस फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो दे दुखाली, हैवर गैवर नेजे वाजे, लश्कर नेव खवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे देवाजे, सिद्ध कहावाओ रिद सिद्ध बुलावाओ, ताज कुलै सिर छतर बनावाओ, बिन जगदीश कहां सच पावाओ, खान मलूक कहावाओ राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द ना सबर सकाजा, हो मैं ममता गुर शब्द विसारी, गुरमत जानिया हृदय मुरारी, प्रणवत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक ना जान सियावरे, परपंच ब्याह त्या गै कवरे, पाए मिलाए सच सच है सच रे, ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाए मिलै मल धोई रहाओ, उंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत यगन जगत पर जार है, सो उबरे गुर शब्द विचार है, प्रेंग पतंग कुंचरियार मीना, मिर्ग मरे सह अपना कीना, तृष्णा राच तत नहीं बीना, काम चितै कामने हितकारी, क्रोध विनाशै सगल विकारी, पत मत खोवे नाम विसारी, पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदे लपटाए, गुरमुख छूट सहर गुण गाए, ज्यों तन विधवा पर कौ देई, काम दाम चित पर वसेई, बिन पर तृप्त ना कबहू होई, पढ़ पढ़ पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़ै सुन थाटा, बिन रस राते मन बहु नाटा, ज्यों चात्रक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस पी तृपतासा, गौड़ी महला पहला, हठ कर मरे ना लेखे पावे, वेश करे बहु पसम लगावे, नाम विसार बहुर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सह जम दुख रहाओ, चोवा चंदन अगर

वाद अहंकार नाहीं प्रमेला, मंदे पावे नाम सोहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला। बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोएथ सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट। तिसको वाहो वाहो जे वाट दिखावे, तिसको वाहो वाहो जे शब्द सुनावे, तिसको वाहो वाहो जे मेल मिलावे। वाहो वाहो तिसको जिसका एहो जियो, गुर शब्दी मथे अमृत पियो, नाम वडाई तुद पाणे दियो। नाम बिना क्यों जीवा माए, आन दिन जपत रहो तेरी सरनाए, नानक नाम रते पत पाए, गौड़ी महला पहला। हाँ मैं करत पेखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत विरले मन मानिया, हाँ हाँ करत नहीं सच पाई है, हाँ मैं जाए परम

नानक राम भगत सुख पावे। गौड़ी महला पहला, प्रथमे ब्रह्मा काले कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया, आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजय सो काल संघारिया, हम हर राखे गुरु।

सुल्तान खान बादशाह नैरना नामो पूले जमका दुख सहना मैं तर नाम ज्यो राखो रहना चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम सह मरे संचय माया दाम मैं तन दीजे हरे अमृत नाम रैयत मेहर मुकदम सिकदार है निश्चल कोय ना दिसे संसार है अफरियो काल कूड़ सिर मार है निश्चल एक सच्चा सज सोई जिन कर साजी तने सब गोई ओ गुरमुख जापै ता पत होई काजी शेख पेख फकीरा वड्डे कहावै हम मैं तन पीरा काल ना छोड़ै बिन सतगुर की तीरा काल जाल जिहवा अर नैनी कानी काल सुनै बिख बैनी बिन शब्दै मूठै दिन रैनी हृदय साच वसै हर नाए काल न जोहे सकै गुण गाए नानक गुरमुख शब्द समाए गौड़ी महला पहला बोलै साच मिथ्या नहीं राई चालै गुरमुख हुक्म रजाई रह अतीत सच्चे सरनाई सच कर बैसै काल न जो है मनमुख कौ आवत जावत दुख मोह है रहाओ अपियो पियो अकथ कथ अकथ कथ रही है निज कर बैस सहज कर लही है हर रस माते ओ सुख कही है गुरमत चालो निचल नहीं डोलै गुरमत साच सहज हर बोलै पीवै अमृत तत् विरोलै सतगुर दीखिया दीख्या लीनी मन तन अर्प्यो अंतरगत कीनी गत मित पाई आत्म चीनी भोजन नाम निरंजन सार परमहंस सच ज्योतिया पार जय देखो तह एक ओंकार रह निरालम एका सच करनी परम पद पाया सेवा गुरचरणी मन ते मन मानिया चूकी अहम ब्राह्मणी इन बिद कौन कौन नहीं तारिया हर जस संत भगत निस्तारिया प्रभ पाए हम अवर ना पारिया साच महल गुर अलख लखाया निचल महल नहीं छाया माया सासन दुखे परम चुकाया जिनकै मन वसया सच सोई तिनकी संगत गुरमुख होई नानक साच नाम मल खोई गौड़ी महला पहला राम नाम

चेरी की सेवा करे, ठाकर नहीं दिसे, पोखर निर्विरुलिये, मखन नहीं रिसे। इस पद जो अर्थाए ले सो गुरु हमारा, नानक चिन्ह आपका सो अपरियापारा। सब आपे आप वरदा आपे परमाया, गुर कृपा ते बुझिया सब ब्रह्म समाया। आरा गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा, अष्टपदियां एको ओंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पाओ, परमे पूले आवो जाओ। मन मुख सूतक कबै ना जाए, जिचर शब्द ना पीजै हर कै नाए रहाओ। सबो सूतक जेता मोहवाकार, मर मर जमै वारो वार। सूतक अगन पौणै पानी माहे, सूतक भोजन जेता किश खाहे। सूतक करमन पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए। सतगुर सेवै सूतक जाए, मरै न जन्मै काल न खाए। सास्त सिमरत सो देखो कोए, विण नामै को मुक्त ना होए। जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल मैं गुरमुख उत्तर सपार। साचा मरै न आवै जाए, नानक गुरमुख रहै समाए। गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण आधारा। हर जियो राखो हृदय उर तारा, गुरमुख शोभा साज दुबारा। पंडित हर पड़त जो

मन करहला अत निर्मला मल लागी हम आए परतख पिर कर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाए मन करहला मेरे प्रीतमा हरदय पाल पल आए ओ पाए कितना लबई गुर हृदय हर देखाए मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रहन हर लिवलाए घर जाए पावे रंग महली गुर मेले हर मेलाए मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए पाखंड लोभी मारी है जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए हर अमृत सर गुरपूरिया मिल संगति मल लै जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे सजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगह पहनाया हर आब लया गल लाए मन करहला गुर मन्या गुरमकार कुमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए गौड़ी महला चौथा मन करहला विचारिया विचार देख समाल बन फिर थके बनवासिया फिर गुरमत हृदय निहाल मन करहला गुर गोविंद समाल रहाओ मन करहला विचारिया मनमुख पाथिया महाजाल गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाल मन करहला मेरे प्यारिया सत्संग सतगुर पाल सत्संगत लग हर त्याई है हर हर चलै तेरे नाल मन करहला वडभागिया हर एक नजर निहाल आप छडाए छुट्टिया सतगुर चरण समाल मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत समाल गुर नानक नाम विखालिया हर दात करी दयाल मन करहला तू चंचला चतराई छड विकराल हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल मन करहला वडभागिया तू ज्ञान रतन समाल गुर ज्ञान खड़ग हथ धारिया जम मारियाड़ा जमकाल अंतर निदान मन करहले भ्रम पवै बाहर पाल गुरपुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा समाल हर रंग कदे न उतरे गुर सेवा शब्द समाल हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल वडभागी गुरमुख पाया जन नानक नाम समाल राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा अष्टपदिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद जब एहो मन मैं करत गुमाना तब यो बावर फिरत बेगाना जब एहो हुआ सगल कीरीना ता तेर मैया कटकट जीना सहज सोहेला फल मस्कीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किस कहो एहो जान समंदा तब सगले इस मेले फंदा मेर तेर जब इन्हें चुकाई ता ते इस संग नहीं बैराई जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल भारी जब इन करने हर पिछाता तब इसनो नाही किश्ताता जब इन अपनो बांध्यो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किश कर्मा ने पेदा तब ते दुख डंड अरखेदा जब इन एको एकी बुझिया तब ते इसनो सबके सूझिया जब एहो तावे माया अर्थी न तृप्तावे न तसलाथी जब इसते एहो यो जौला पीछे लाग चली उठ कौला कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदिर में दीपक जलियो जीत हार की सोजी करी तो इस कर की कीमत परी करन करावन सब किसे कै आपे बुद्ध विचार बबे कै दूर ना नेरे सब कै संगा सालाहन नानक हर रंगा गौड़ी महला पंजवा गुरसेवा ते नामे लागा तिसको मिलिया जिस मस्तक पागा तिसकै हृदय रव्या सोए
ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਨ ਨਿਚਲ ਹੋਏ, ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਜੋ ਕਾਮ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹਾਓ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਭਉ ਅਪਦਾ ਜਾਏ, ਧਾਵਤ ਮਨੁਆ ਆਵੈ ਠਾਏ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਫਿਰ ਦੁਖ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਜਾਸ ਜਪਤ ਹਉਮੈ ਭਾਗੈ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਵਸਿਆ ਵੈ ਪੰਚਾ, ਜਾਸ ਜਪਤ ਹਿਰਦੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ, ਜਾਸ ਜਪਤ ਹਰ ਦਰਗੈ ਸਜੈ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਕੋਟ ਮਿਟੈ ਅਪਰਾਧ, ਜਾਸ ਜਪਤ ਹਰ ਹੋਵੈ ਸਾਧ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਵੈ, ਜਾਸ ਜਪਤ ਮਲ ਸਗਲੀ ਹੋਵੈ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਰਤਨ ਹਰ ਮਿਲੈ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਛੋਡੈ ਹਰ ਸੰਗ ਹਿਲੈ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਕਈ ਬੈਕੁੰਠ ਵਾਸ, ਜਾਸ ਜਪਤ ਸੋ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ। ਜਾਸ ਜਪਤੇ ਅਗਨ ਨਾ ਪੋਹਤ, ਜਾਸ ਜਪਤੇ ਕਾਲ ਨਾ ਜੋਹਤ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਤੇਰਾ ਨਿਰਮਲ ਮਾਥਾ, ਜਾਸ ਜਪ ਸਗਲਾ ਦੁਲਾਤਾ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਛੂ ਨਾ ਬਣੈ, ਜਾਸ ਜਪ ਸੁਣ ਅਨਹਤ ਤੁਨੈ। ਜਾਸ ਜਪਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ, ਜਾਸ ਜਪਤ ਕਮਲ ਸੀਧਾ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸੁਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਰ ਕਰੀ, ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਮੰਤਰ ਦੇ ਹਰੀ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਤਿਨ ਪੂਜਨ ਚੂਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਧਾਰੈ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਿਵਾਰੈ। ਦਸ ਇੰਦਰੀ ਕਰ ਰੱਖੈ ਵਾਸ, ਤਾਂ ਕੈ ਆਤਮੈ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਐਸੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤਾਂ ਕੈ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕਉ ਦਇਆ ਮਇਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਰਹਾਓ ਸਾਜਨ ਦੁਸ਼ਟ ਜਾਂ ਕੈ ਇਕ ਸਮਾਨੈ, ਜੇਤਾ ਬੋਲਣ ਤੇਤਾ ਗਿਆਨੈ।

पानी अन्न ना पावे मरिए हावे, बिन पर क्यों सुख पाई है। गुरु आगे करो बिनंती जे गुर पावे, जो मिले तवें मिलाई है। आपे मिल ले सुखदाता आया मिलिया कर आए, नानक कामन सदा सुहागण ना फिर मर न जाए। गौड़ी महला तीजा कामन हर रस बेदी जियो, हर कै सह सुभाए मन मोहन मोह लिया जियो। दुबदा सह समाए दुबदा सह समाए, कामन वर पाए गुरमती रंग लाए। एह शरीर कुड़ एह एक शरीर कूड़क सत भरिया, गलत आई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहित न उपजै, बिन भगती मैल न जाए। नानक कामण प्रै प्यारी विचों आप गवाए, कामण पर पाया जियो। गुर कै पाए प्यारे, रैन सुख सुती जियो। अंतरे और तारे अंतरे और तारे मिलिए प्यारे, आन दिन दुख निवारे। अंतर महल प्रदावे कामण गुरमति विचारे, अमृत नाम पिया दिन राती दुबदा मार निवारे। नानक सच मिली सोहागण गुर कहे त्या पारे।

राम नाम वा पाराग म्या पारा गुरमति तन पाई है, सेवा सुरत भगते साची विचो आप गवाई है। हम मतहीन मूर्ख मुग्ध अंधे सतगुर मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंधन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो, आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो, जो जुग भगत प्यारे जो जुग भगत प्यारे हरे आप सवारे, आपे भक्ति लाए आपे दाना आपे बिना आपे सेव कराए। आपे गुणदाता गुण काटे हृदय नाम वसाए, नानक सत बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए।

फिर दोस नाही सुख दाते हाँ विछड़ी बुरे आरे बिनवंत नानक दया धारो कर आवो ना प्यारे। हाँ मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हाँ सिर अर्पी तस्मित प्यारे जो प्रभ दे संदेसा अर्पया ता शीस सुथान गुर पै संग प्रभु देखाया खिन माहे सगला दुख मिटिया मनो चिंदिया पाया दिन रैन रलियां करे कामनु मिटे सगलिया देसा बिनवंत नानक कंत मिलिया लोड़ ते हम जैसा। मेरा मन आनंद भया जियो वजी वधाई कर ला लिया आ प्यारा सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकरो सखी मंगल गाया सब मीत बंद पहर को उपजया दूत थाउ गुवाया अनहत वाजे वजह घर मैं पिर संग सिज विछाई बिनवंत नानक सहज रह हर मिलिया कंत सुखदाई।

शांत। जप मनातु राम नारायण गोविंदा हरमादो, ध्याय मना मुरार मुकंदे कटिए काल दुख फादो। दुख हरण दीन सरण श्री तार चरण कमल आरा दी है, जम पंथ विखड़ा अग्न सागर निमख सिमरत साधी है। कल मलै देता शुद्ध करता दिन सरहण आरा दो, बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो। सिमर मना दा मोदर दुख हर पै पंजन हर राया, श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वछल बिरदाया। भगत वछल पुरख पूर्ण मनिया चिंदिया पाईऐ, तम अंध कूप ते उधार है नाम मन वसाई है। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अनक भक्ति गाया, बिनवंत नानक करो कृपा पार ब्रह्म हर राया। चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जिन धारी, करना मैं समर्थ स्वामी घटघट प्राण आधारी। प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम्य पारो, सरण जोग समर्थ मोहन सर्व दुख बिदारो। रोग सोग सब दुख बिनसै जपत नाम मुरारी, बिनवंत नानक करो कृपा समर्थ सब कल तारी। गुण गाओ मना अचत अविनाशी सब ते उच दयाला, विश्वंपर देवन को एक है सर्व करै प्रतपाला। प्रतपाल महा दयाल दाना दया तारे सब किसै, काल कंटक लो मोह नासै जी जा कै प्रभसै। सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूर्ण काला, बिनवंत नानक इच्छ पुन्नी जब दीन दयाला। गौड़ी महला पंजवा सुन सखिए मन उदम करेहा, मनाए लय हर कंत मान त्याग कर भगत ठगौरी मोह साधु मंत। सखी वस आया फिर छोट ना जाई एह रीत भली भगवंत। नानक जरा मरण पै नरक निवार पुनीत करै तिस जंत। सुन सखिए एह पली बिनंती एहो मतांत पकाईऐ, सहज सुभाए उपाद रहत होए गीत गोविंद गाईऐ। काल कलेस मिटै भ्रम नासै मन चिंधिया फल पाईऐ, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर नानक नाम ते आईऐ। सखी इच्छ करी नित सुख मनाई भ्रम मेरी आस पुजाए, चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए। खोज लहो हर संत जना संग समर्थ पुरख में लाए, नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवट पागी माए। सखी नाल वसा अपने नहा प्यारे, मेरा मन तन हर संग हिलिया। सुन सखिए मेरी नींद भली मैं अपनड़ा पिर मिलिया। ब्रह्म खोयो सांत सहे स्वामी प्रगास भया कौल खिलिया, वर पाया प्रभ अंतर जामी नानक सोहाग ना टलिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद गौड़ी बाम नखरी महला पंजवा। सलोक गुरदेव माता गुरदेव पिता गुरदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरदेव सखा ज्ञान भंजन गुरदेव बंद सहोदरा। गुरदेव दाता हर नाम उपदेसै गुरदेव मंत निरोधरा। गुरदेव सांत सतबुद गुरदेव सांत सतबुद्ध मूर्त गुरदेव पारस परस परा। गुरदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा। गुरदेव करता सब पाप हरता गुरदेव पतत पवित करा। गुरदेव आद जुगा जो जुग गुरदेव मंत हर जप उदरा। गुरदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा। गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर
गुरुदेव नानक हर नमस्कार। सलोक आपै किया कराया आपै करना जोग, नानक एको रव रया दूसर होआ ना होग। पौड़ी ओवं साध सतगुर नमस्कारं आदमद अंत निरंकारं। आपै सुनो आपै सुख आसनो, आपै सुनो तो आप ही जासनो। आपने आप आपै उपायो, आपै बाप आप ही मायो। आपै सूखमो आपै अस्थूला, लखी ना जाई नानक लीला। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, तेरे संतन की मन होए रवाला। रहाओ सलोक निरंकार आकार आप, निर्गुण सरगुण एक, एक एक बखानो नानक एक अनेक। पौड़ी ओवं गुरमुखियो अकारा, एक सुत परो बनहारा। भिन्न भिन्न त्रैगुण विस्थारं, निर्गुण ते सरगुण दृष्टारं। सगल भांत कर करै उपायो, जन्म मरण मन मोह बढ़ायो। दूहू भांते आप निरारा, नानक अंत ना पारा वारा। सलोक सेई साह भगवंत से, सच संपै हर रास। नानक सच सुच पाई है, ते संतन कै पास। पवड़ी ससा सत सत सत सो, सत पुरख ते पिन ना को। सो सरन परै जेह पायं, सिमर सिमर गुण गाए सुनायं। संसय परम नहीं कछ व्यापत, प्रगट प्रताप ताहूं को जापत। सो

नाम बिहुने नानका होत जात सब तूर पवड़ी तदा तूर पुनी तेरे जनुआ तन ते ऊजे रुच या मनुआ तन नहीं बांछ सुरग ना आछ अत प्रे प्रीत साध रज राच तंदे कहां ब्यापै ताहूं जो एक छाड़ियन कत न जाहूं जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक पेख यार ज्ञान ध्यान मन अठ मिलो ना कोए कहो नानक कृपा पही भक्त ज्ञानी सोए पौड़ी नंगा ज्ञान नहीं मुख बातो अनक जुगत शास्त्र कर पातो ज्ञानी सोए जा कह दृढ़ सो कहत सुन तो कह जोग ना हो ज्ञानी रह तो आज्ञा दृढ़ जा कह उसन सीत समसर सब ता कह ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा धारी सलोक आवन आए सृष्ट मैं बिन बूझे फस टोर नानक गुरमुख सो बुझे जा कै भाग मथोर पौड़ी या जुग मैं एक कौ आया जन्मत मोयो मोनी माया गर्भ कुंट में उर तब करते सास सास स्मृत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देवन हार मन बिसराना तारो कृपा जसै गुसाई एत उत नानक तिस बिसरो नाही सलोक आवत हुक्म बिनास हुक्म आज्ञा पिन ना कोए आमन जाना तेह मिटै नानक जेहे मन सोए पौड़ी एव जी बहुत गर्व वासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रैगुण बसकीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कश कहो उपाया जाते तरो बिखम ए माया कर कृपा सत्संग मिलाए नानक ताकै निकट ना माए सलोक किरत कमावन सोभ्या सोभ कीने तिन प्रभ आप पासे अपन हाँ हाँ करै नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी एक आप करावन हारा आपै पापुन बिस्थारा या जुग जिजत आपै लायो सो पायो जो आप देवायो उवा का अंतना जाने को जो जो करै सूफन हो एक ते सगला बिस्थारा नानक आप सवार नहारा सलोक राज रहे बनता बिनोद कुसम रंग बिख सोर नानक तेह सरनी परो बिन सजाए मैं मोर पौड़ी रे मन बिन हर जय रचा तह तह बंधन पाए जेह बिद कतू न छूटी है सकते उकमाहे हाँ हाँ करते कर मरत ताको पारिया फार प्रीत नहीं जो नाम स्यो तौ एउ कर्म बेकार बादे जम की जेवरी मीठी माया रंग भ्रम के मोहे ने बुझै सो प्रभ सधु संग लेखै गणतना छूटी है काची पीतना शुद्ध

रारा रंग होया मन अपना, हर हर नाम जपो जप रसना, रे रे दरगह कह ना को आओ बैठे आदर सुभ देऊ, ओआ महली पावे तू बासा, जन्म मरने होए बिनासा, मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके, हर संपै नानक करता कै सलोक, लालच झूठ बिकार मोह व्यापत मूड़े अंध, लाग परे दुर्गंध स्यों नानक माया बंद, पौड़ी लल्ला लपट बिखैर असराते, अहम बुद्ध माया मदमाते।

होवनहार हो सदयाया, वकंत न काहू पाया। कीट हस्त में पुरुष माने, परगट पुरख सब डाऊ सब ठाऊ जाने। जा कौ दीनो हर रस अपना, नान गुरमुख हर ते जपना। श्लोक आत्म रस जे जानिया, हर रंग सहजे मान। नानक तन तन तन जानो, आए ते प्रवान। पौड़ी आया सफल ताहू को गनिए, जास रसनो हर हर जस भनिए। आए बसै साधु कै संगे, अंदर नाम ते आवै रंगे। आवत सो जन ना मैं राता, जा को दया मैं बेदाता। एक आवन फिर जो ना आया, नानक हर कै दर सुमाया। सलोक यास जपत मन होए आनंद, बिनसै दूजा भाओ। दुख दर्द तृष्णा बुझै, नानक नाम समाओ। पौड़ी यैया जारो धर्म दो, तिसै त्याग सुख सह जे सो। यैया जाए परो संत सरना, जे आसरिया पव जल तरना। यैया जन्म ना आवै सो, एक नाम ले मने प्रो। यैया जन्म ना हारिया, गुरपूरे की टेक। नानक ते सुख पाया, जा कह ही अर एक। श्लोक अंतर मंतन बस रहे, ईत ऊत के मीत। गुर पूरे उपदेशया, नानक जपिए नीत। पौड़ी अंदन सिमरौ तास कहो, जो अंत सहाई होए। एह बिख्या दिन चार छे, छाड़ चलो सब कोए। कां को मात पिता सोतिया, गृह बंता का संग न लिया। ऐसी संच जो बिनसत नाही, पासे ती अपने कर जाही। साध संकर कीर्तन गाया, नानक ते बहुर न आया। श्लोक अत सुंदर कुलीन चतर, मुख ज्ञानी धनवंत। मृतक कही है नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। पौड़ी गंगा खड़शास्त्र होए ज्ञाता, पूरक कुंभक रेच करमाता। ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी, सोम पाक अपरस उद्यानी। राम नाम संग मन नहीं हेता, जो कश कीनो सो अनेता। उवा ते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसै गोपाला। श्लोक कुंट चार दै दिस प्रमे, कर्म किरत की रेख। सुख दुख मुक्त जोन, नानक लिख्यो लेख। पवड़ी

देंदे तोट न आवई अगनत परे पंडार, दैन हार सद जीवन हारा मन मूर क्यों ताहे बिसारा, दोष नहीं काहू कौ मीता माया मोह बंद प्रभ गीता, दर्द निवारे जाके आपे नानक ते दे गुरमुख त्रापे, सलोक धर जिया रे इक टेक तू लाहे बिडानी आस, नानक नाम ते आई है कारज आवै रास पौड़ी, धद्दा तावत तौ मिटै संत संग होए बास, तुरते कृपा करो आप तौ होए मनै प्रगास, तन साचा तेऊ सच सहा हर हर पूंजी नाम बिसाहा, तीरज जस सोभा तेह बनया हर हर नाम श्रवण जे सुनया, गुरमुख जेह कट रहे समाई नानक ते जन मिली वडाई, सलोक नानक नाम नाम जप जपया अंतर बाहर रंग, गुरपुरै उपदेसिया नरक नाहे साध संग पौड़ी, नन्ना नरक भरै ते नाही जाकै मन तन नाम बसाही, नाम निदान गुरमुख जो जपते बिख माया मैं ना होए खपते, नन्ना कारना होता ता कहो नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो, निद निदान हर अमृत पूरे तैं बाजे नानक अनहतूरे, सलोक पत राखी गुर पार ब्रह्म तज प्रपंच मोह बेकार, नानक सो आराधी है अंतना पारावार पौड़ी, पप्पा परमित पार ना पाया पतत पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु अमृत नाम जपै मिल साधु, पर पज त्रोह मोह मिट नाई जा कहो राखो आप गुसाई, पात साहो छत्र सिर सोऊ नानक दूसरे अवर ना को, सलोक फाहे काटे मिटे गवन फतेह पई मन जीत, नानक गुरते थित पाई फिरन मिटे नित नीत पौड़ी, फफा फिरत फिर तू आया दुर्लभ देहे कल युग मैं पाया, फिर अवसर चरै न हाथा नाम जपो तो कटिए फासा, फिर फिर आमन जान ना होई एक एक जपो जप सोई, करो किरपा प्रभ करने हारे मिल रहो नानक बेचारे, सलोक बिनो सुनो तुम पार ब्रह्म दीन दयाल गोपाल, सुख संपै बहु भोग रस।

होए निमाना जग रहो नानक नदरी पार पौड़ी अरारा रेन हो सब जा की ताजा मान छुटे तेरी बाकी रण दरगह तो सी जय पाई जो गुरमुख राम नाम लेवलाई रहत रहत रह जाए बेकारा गुरपुर के शब्द अपारा राते रंग नाम रस माते नानक हर गुर की नींदा ते सलोक लालच झूठ बिखे ब्याद या देही मैं बास हर हर अमृत गुरमुख पिया नानक सुख निवास पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहू दुख दर्द ते मिटै खनाहू नाम औखद जिरदै हतावै ताहे रोग सुपने नहीं आवै हारे औखद सब कट है भाई गुरपूरे बिन बिदना बनाई गुरपूरे संयम कर दिया नानक तो फिर दुख ना थिया सलोक वासदेव सर्वत्र मैं ऊनक तू ठाए अंतर बाहर संग है नानक काए दुराए पौड़ी वबा वैर न करिए काहू घटकट अंतर ब्रह्म समाहू वासदेव जल थल मैं रव्या गुर प्रसाद विरले ही गव्या वैर विरोध मिटे ते मन ते हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते वर्ण चेहन सगले ते रहता नानक हर हर गुरमुख जो कहता सलोक हां हां करत बिहानिया साकत मुकदया जान रड़क मोए ज्यो त्रिखावंत नानक किरत कमान पौड़ी राड़ा राड़ मिटा संग साधु कर्म धर्म ते कर्म धर्म तत ना मारा दू रूडो जे बस्यो रिद माही ओवा की लाड़ मृत बिन साही अड़ाड़ करत सगत गावारा जे ही है अंबुद बिकारा अड़ाड़ा गुरमुख अड़ाड़ मिटाई निमुख माहे नानक समझाई सलोक साधु की मन ओट कहो उक्त सियान पत्याग गुर दीख्या जे मन बसै नानक मस्तक भाग पौड़ी ससा सरन परे अवहारे शास्त्र सिमरत वेद पुकारे सोधत सोधत सोध बिचारा बिन हर भजन नहीं छुटकारा सा सा संपूल नहारे तुम समराथ्या गंता पारे सरन परे की राख दयाला नानक तुमरे बाल गोपाला सलोक खुदी मिटी तब सुख पए मंतन पए अरोग नानक दृष्टि आया उस्त करने जोग पौड़ी खखा खरास राहो ताहू जो खिनमै उन्ने सुपर पराहू खरा निमाना होत पुरानी अंदन जापै प्रभ निर्बानी भावै खसम ता उवा सुख देता पार ब्रह्म ऐसोवा गणता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहिब सदा दयारा सलोक सत कहो सुन मन मेरे सरन परो हर राए उकत सियानप सगल त्याग नानक लय सुमाए पौड़ी ससा सियानप छाड़ एना हिकमत हुक्मना प्रपतियाना सहस भात करै चतराई संग तुहारै एक न जाई सोऊ सोऊ जप दिन राती रे जी चलै तुहारै साथी साध सेवा लावै जे आपै नानक तां को दुख न व्यापै सरो सलोक हर हर मुख ते बोलना मन बूठै सुख होए नानक सब मैं रव रया थान थनंतर सोए पौड़ी हेरो कटकट सगल कै पुर रहे भगवान होवते आए सद सदीव दुख भंजन गुर ज्ञान हाँ छुटकै होए आनंद तेह हाँ नाही तह आप हते दुख जन्मै मरण संत संग प्रताप हित कर नाम दृढ़ दयाला संत संग होत कृपाला ओरै कछु न किन्हू किया नानक सब किछ प्राप्ते हुआ सलोक लेखै कतै न छूटिया खिन खिन पूलन हार बख्शन हार बख्शलै नानक पार उतार पौड़ी लून हरामी गुनहगार बेगाना अल्प मत जियो पिंड जिन सुख दिए ताहे न जानत तत लाहा माया कारण दे टुंडन जाए देवन हार दा तार प्रभ निमखना मने बसाए लालच झूठ बेकार मोह असम पै मन माहे लंपड़ चोर निंदक महा तिन्हू संग बिहाए
ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਖੋਟੇ ਸੰਗ ਖਰੇ, ਨਾਨਕ ਭਾਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਪਾਹਣ ਨੀਰ ਤਰੇ ਸਲੋਕ, ਖਾਤ ਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ, ਭਰਮੇ ਜਨਮ ਅਨੇਕ, ਭਵਜਲ ਤੇ ਕਾਢੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਟੇਕ। ਪੌੜੀ ਖੇਲਤ ਖੇਲਤੇ ਆਇਓ, ਅਣਕ ਜੋਨ ਦੁਖ ਪਾਏ, ਖੇਦ ਮਿਟੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਏ, ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਸਤ ਸੰਚਿਓ, ਖਾਇਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਖਰੀ ਕਿਰਪਾ ਠਾਕਰ ਭਈ, ਅੰਤ ਸੁਖ ਬਿਸਰਾਮ, ਖੇਪ ਨਿਬਾਹੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭ, ਘਰ ਆਏ ਪਤਵੰਤ, ਖਰਾ ਦਿਲਾਸਾ ਗੁਰਦੀਆ, ਆਏ ਮਿਲੇ ਭਗਵੰਤ, ਆਪਣ ਕੀਆ ਕਰੇ ਆਪ, ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਰਾਹੀਐ, ਜੇ ਘੜ ਘੜ ਰਿਹਾ ਬਿਆਪ। ਸਲੋਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਪੌੜੀ ਅੱਖਰ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਪ੍ਰਭ

हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश हे पूर्ण हे सर्व मैं दुख पंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निदान जा कै सदा बबेक हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार हे संतें कै सदा संग निधाराय आधार हे ठाकर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए नानक दीजै नाम दान राखो ही है परोए सलोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंधप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत निरुदरा गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूर्त गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतत पवित करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूड पापी जित लगतरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा एहो श्लोक आद अंत पढ़ना गौड़ी सुखमनी महला पंजवा श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आदि गुर ए नमै जुगाद गुर ए नमै सतगुर ए नमै श्री गुरुदेव ए नमै अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो सिमरो जास विषम भरे कै नाम जपत अगणत अनेकै वेद पुराण सिमरत सुध अखर कीने राम नाम एक अखर किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गनी ना आवै कांखी एक दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भक्त जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरै प्रभ सिमरत कछ बिघन ना लागै प्रभ कै सिमरन अंदर जागै प्रभ कै सिमरन भव ना व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्ब निदान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप ता पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन

प्रभ कै सिमरन होए सो भला, प्रभ कै सिमरन सफल फला, से सिमरै जने आप सिमराए, नानक तां कै लागौ पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा, प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सबके सुझै, प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा, प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नामृत महे समाए। प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरै से धनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते, प्रभ को सिमरै से जन परवान, प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान, प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरै से सर्व के राजे, प्रभ को सिमरै से सुखवासी, प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला, प्रभ को सिमरै से पर उपकारी, प्रभ को सिमरै तिन सद बलिहारी, प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावै, प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरै तिन आनंद कनेरे, प्रभ को सिमरै बसै हर नेरे, संत कृपा ते अंधन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग, प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभ कै सिमरन कहो ना चूरे, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहि समानी, प्रभ कै सिमरन निःचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभ कै सिमरन अनह चुन कुआर, सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार, सिमरै से जन जिन कौ प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए, हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चहो कुंट जाते, हर सिमरन तारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की ओ सगले आकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर्द दुख पंजना, कट कट नाथ या नाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जय मात पिता सुतमीत ना पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई, जय महापयान दूत जमदल, तै केवल नाम संग तेरे चले, जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी, अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे, सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया, लाख करोरी बंदना परै, हर का नाम जपत निस्तर, अनक माया रंग तिखना बुझावे, हर का नाम जपत अगावे, जे मार्ग हो जाता केला, तै हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा त्याई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है, छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जब तै पार पराही, अनक बिगन जाय आए संघारै, हर का नाम तत्काल उधारै, अनक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम,
ਹਉ ਮਹਿਲਾ ਮਲਕ ਕੋ ਨਾ ਧੋਵੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਹੋਵੈ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਰੰਗ ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕੋਸਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉਹਾਂ ਸੰਗ ਤੋਸਾ ਜਿਹ ਪੈਂਡੈ ਮਹਾ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸਿਆਨੂੰ

जहां त्रिखा मन तुझिया करख तै नानक हर हर अमृत बरख भक्त जना की बरतन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग।

हर का नाम जनकार उपरंग, हर नाम जपत कौ परे न भंग। हर का नाम जन की वड़ियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बेयोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालख जीना, हर तन जन कौ आ प्रभ दीना। हर हर जन कै ओठ सताणी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग के ते तरे। पार जाते ओ हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत दिवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तोल कछ अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खड़ शास्त्र सिमृत वखियान। जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, सगल त्याग बन मद्दे फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, महा उदास्त पितर थीवै। अग्न माहे होमत प्राण, कनक असव है वर भूम दान। न्यौली कर्म करे बोवासन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावै, तौ पी होमे मैल न जावै। हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करे दिन सियर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबहू ना बिखिया टरे। जल धोवे बहु दे अनीत, शुद्ध कहां होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहु मूच। बहुत सियाणप जम का बहु व्यापै, अनक जतन कर तृष्णा त्रापै। पेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोटो पाव दरगै नहीं सजै। छूट सना ही

हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहे सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे, साजना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे। जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग ए मैं शोरे। जे को जन्म मरण ते डरे, साजना की सरनी परे। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान। आपस कौ जो जाने नीचा, सो गनिया सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तन कट कट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखे सगल सिठ साजना। सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा। निरतन

है। जो ठाकर ससदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे, जाकी टहल पावे दरगह मान तिसे बिसारे मुगदिया जान। सदा सदा एहो कूल नहार नानक राखन हारिया पार, रतन त्याग कौडी संग्रचै साच छोड़ झूठ संग मचै। जो छड़ना सो अस्तर कर मानै, जो होवन सो दूर परानै। छोड़ जाए तिसका श्रम करै, संग सहाई तिस पर हरै। चंदन ले प्यो तारै धोए, गर्द प्रीत पसम संग होए। अंध कु मैं पतत बिकराल, नानक काढ़ लेहो प्रभ दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। बाहर पेख अंतर मल माया, शब्स नाहे कश करे छपाया। बाहर ज्ञान

बिनस जाए हमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद शति अमृत खाहे तिस ठाकर कौ रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत तन लावे तिस कौ सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मन अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरौ तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसै त्याग कत अवर लोबावै जे प्रसाद सुख से सुई जै मन आठ पहर ताका जस गावी जै जे प्रसाद तुझ सब को मन मुखता को जस रसन बखाना जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पाल ब्रह्म प्रभ जी जबत दरगे मान पावे नानक पासेती कर जावे जे प्रसाद आरो कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकर प्रभ तां कै जे प्रसाद तुझको ना पहुचे मन सास सास सिमरो प्रभ ऊचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ता की भगत करे हे जे प्रसाद या पूखन पहरीजै मन ते सिमरत क्यों वालस कीजै जे प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस प्रभ कौ कबहू ना बिसारी जे प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन

रखै जे प्रसाद करै पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू चार बिहारी तिस प्रभ को साह साह चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह है जे प्रसाद सुने करन नाद जे प्रसाद पेखे बिस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चले जे प्रसाद संपूर्ण फले जे प्रसाद परमगत पावे जे प्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो बिसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ता कहो जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसै जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता स्यो राच जे प्रसाद सब की गत होए नानक जब जपै जब सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मति उत्तम होए सर्व निधान प्रभ तेरी माया आपो कछु ना किन्हु लया जित जित लावो तित लगे हर नाथ नानक इनके कछु ना हाथ सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुखी उज्जल होत साध संग मर सगली खोत साध कै संग मिटै अवमान साध कै संग प्रगटै सुगयान साध कै संग बुझै प्रभनेरा साध संग सब होतन बेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ महे सुमानी साध कै संग गोचर मिलै साध कै संग सदा प्रफुलै साध कै संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग नकत हूं तावै साध संग अस्थित मन पावै साध कै संग माया ते पहन साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग के सो नहीं बैर साध कै संग ना बींगा पैर साध कै संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध कै संग ना ही हाँ ताप साध कै संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध कै संग न कबहू तावै साध कै संग सदा सुख पावै साध संग बस्ता गोचर लहै साधु कै संग अजर सहै साध कै संग बसै थानी उच्चै साधु कै संग मैल पहुचै साध कै संग दृढ़ सब धर्म साध कै संग केवल पार ब्रह्म साध कै संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साध कै संग सब कुल उधारै साध संग साजन मीत कुटम निस्तारै साधु कै संग सो तन पावै जिस धन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग सर्वथान गम नानक साध कै संग सफल जनम साध कै संग नहीं कशकाल दर्शन भेट तो होत निहाल साध कै संग कलुख तहरै साध कै संग नरक प्रहरै
साध कै संग इहां उहां सुहेला, सा संग बिशरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावै, साध कै संग ना बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै। साध कै संग सुनो हर नाओ, सा संग हर के गुण गाओ। साध कै संग ना मनते बिसरै, सा संग सर पर निस्तरै। साध कै संग लगै प्र मीठा, साधु कै संग कड़कड़ डीठा। सा संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा

साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूझते मूची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख एक बिन कोए। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमला लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सुर सर्ब कौ सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग कौ लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै तीर्ज एक, जो बसदा को खोदे को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नानक ज्यो पाव का सही स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जलाओ। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब दे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ही उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो पला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहबुद त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै करसदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संघेता। ब्रह्म ज्ञानी कै होया चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे।

राखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सच जीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। सलोक और तारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान। निमख निमख ठाकर नमस्कार, नानक हो अपरस सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्स। पारत्रे रूप ना पेख नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। कर्ण ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद बिखिया पर हरै, मन की बासना मन ते टरै। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस। बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते होए भिन्न। कर्म करत होवै निह कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग राचै।

अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तार है, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नवतन नाम ते आवे, नानक करते का अंत ना पावे, कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ कौ हिरै, कई कोट पर

होवत आत्म प्रगास। कई कोट तत् के बेते सदा निहारा एको नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवै अमर पय सद सद ही जीवै। कई कोट नाम गुण गावै आत्म रस सुख सहि समावै, अपने जन को सा सा सुमारे नानकोए परमेश्वर के प्यारे। सलोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए, नानक तिस बलिहारण जल थल महियल सोए। अष्टपदी करण करावन करने जोग, ज्योतिष पावै सोई होग। खिन मैं थापो थप नहारा, अंत नहीं किश पारा वारा। हुक्मे तार अतर रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै। हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार। कर कर देखै अपनी वडियाई, नानक सब मै रहा समाई। प्रभ पावै मानुख गत पावै, प्रभ पावै तां पाथर त्रावै। प्रभ पावै बिन सास ते राखै, प्रभ पावै तां हर गुण पाखै। प्रभ पावै तां पत उधारै, आप करै आपन विचारै। दुहा सिरिया का आप स्वामी, खेलै भिक्षै अंतर जामी। जो पावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै। कहो मानख ते क्या होए आवै, ज्योतिष पावै सोई करावै। इसके हाथ होए ता सब किश ले, ज्योतिष पावै सोई करे। अनजानत बिख्या मैं रचै, जे जानते अपने आप बचै। परमे पूला दै दस्तावै, निमख माहे चार कुंट फिर आवै। कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले। खिन मैं नीच कीट कौ राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज। जाका दृष्ट कशु न आवै, तिस तत्काल देह दिस प्रगटावै। जा को अपनी करै बख्शीस, ताका लेखा ना गनै जगदीस। जियो पिंड सब तिसकी रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास। अपनी बणत आ बनाई, नानक जीवै देख बड़ाई। इसका बल नाही इस हाथ, करन करावन सर्ब को नाथ। आज्ञाकारी बपरा जियो, ज्योतिष पावै सोई फुंथियो। कबहू ऊंच नीच मैं बसै, कबहू सोग हर खरखा, कबहू सोग हर खरंग हसै। कबहू निंद चिंद व्यवहार, कबहू ऊब आकाश पयाल। कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक क्या मिलावन हार। कबहू निरत करै बहुपात, कबहू सोए रहै दिन रात। कबहू महाक्रोध बिकराल, कबहू सर्ब की होत रवाल। कबहू होए बह बड़ राजा, कबहू पेखारी नीच का साजा।

ज्यों प्रभु राखै तिवहिं रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहै। कभू होए पंडित करे बखियान, कभू मौन धारी लावै ध्यान। कभू तट तीर्थ स्नान, कभू सिध साधक मोह ज्ञान। कभू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन भरमै परमिया। नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावै, ज्यों प्रभु भावै तिवै नचावै। ज्योत पावै सोई होए, नानक दूजा अवर ना कोए। कबहू साध संगते हो पावै, उस स्थान ते बहुर न आवै। अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मान तन नाम रते करंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभु कै सद कुर्बान। सलोक सुखी बसै मस्कीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया। नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसका अंतर राजा मान। सो नरक पाती होवत समान, जो जाने मैं जो बनवंत। सो होवत बिष्टा का जंत, आप सकाओ कर्मवंत कहावै। जन्म मरे बह जोन परमावै, तन भूम का जो करे गुमान। सो मूर्ख अंधा अज्ञान, कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै। नानक यहां मुक्त आगे सुख पावै। धनवंता होए कर गरबावै, तरण समान का संग न जावै। बहु लश्कर मानख ऊपर करे आस, पल भीतर ताका होए विनाश। सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जाए पसमंत। किसे ना बदै आप अहंकारी, धर्म राय तुस करे खुआरी। गुर प्रसाद जाका मिटे अभमान, सो जन नानक दरगह परवान। कोट कर्म करै हो तारे, श्रम पावै सगले बिरथारे। अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर फिर अवतार। अनक जतन करे आत्म नहीं द्रवै, हर दरगह कहो कैसे गवै। आप सकाओ जो पला कहावै, तसे पलाई निकट न आवै। सर्व की रेण जां का मन होए, कहो नानक ताकि निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कश होए, तब इसको सुख नाही कोए। जब है जाने मैं किश करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय देश जाए। प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हो छूटे। सहस खटे लख को उठतावै, तृप्त न आवै माया पाछै पावै। अनक भोग बिखिया के करै, नह तृप्तावै खप खप मरै। बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै। नाम रंग सर्व सुख होए, वडभागी किसै प्राप्त होए। करण करावने आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। करण करावन करने हार, इसके हाथ कहां विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए। जो किश कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सबहू कै संग। बूझै देखै करै बबेक, आपै एक आपै अनेक। मरै ना बिनसै आवै ना जाए, नानक सदी रहा समाए। आप उपदेसै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ। आप कीनो आपन विस्थार, सब कछ उसका ओह करणे हार। उसते पिन कहो किश होए, थान थन अंतरे कै सोए। अपने

प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जैसा साव तैसा दृष्टाना, जिस ते उपजे तस्महे समाए, ओए सुख निदान उनहु बन आए, आप सकौ आप दीनो मान, नानक प्रभु जन एको जान। सलोक सर्ब कला भरपूर प्रभ बिरथा जन नहार, जा कै सिमरन उदरी नानक तिस बलिहार। अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपार, सर्व जिया आपे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन माहे, तिसते बिरथा कोई नाहे। रे मन मेरे इसदा हर जाप, अबनासी प्रभ आपे आप, अपन किया कछु ना होए, जे सौ प्राणी लोचै कोए, तिस बिन नाही तेरे किश काम, गत नानक जप एक हर नाम। रूपवंत होए नाही मोहै, प्रभ की जोत सगल कट सो है, धनवंता होए क्या को गर्बै, जा सब किश तिसका दिया दरबै। अत सूरा जे को कहावै, प्रभ की कला बिना कहतावै, जे को होए बह दातार, तिस दिन हर जाने गावार, जिस गुर प्रसाद टूटे हाँ रोग, नानक सोजन सदा अरोग। ज्यो मंदर कौ थमै थमन, त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन, ज्यो पाखाण नाव चढ़ तरै, प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै। ज्यो अंधकार दीपक प्रगास, गुर दर्शन देख मन होए विगास, ज्यो महा उद्यान में मार्ग पावै, त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावै। तिन संतन की बांछौ तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूर्ख काहे बिललाई है, पुरब लिखे का लिखिया पाई है। दुख सुख प्रभ देवनहार, अवर त्याग तू तसै चितार, जो कछ करै सोई सुख मान, भूला काहे फिरै आजान। कौन बसदे आई तेरे संग, लपट रहो रस लोभी पतंग, राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पासे ती कर जाहे। जिस वखर कौ लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया, तज अब मान लेहो मन मोल, राम नाम हिरदे मैं तोल। लाद खेप संत संचार, अवर त्याग बिखिया जंजाल, तन तन कह सब कोए, मुख उजल हर दरगह सोए, एहो वापार विरला वापार है, नानक ता कह सदबलिहार है। चरण साध के तोए तोए पियो, अर्प साध को अपना जियो, साध की तूर करो इशनान, साधु पर जाई है कुर्बान। साध सेवा वडभागी पाई है, साध संग हर कीर्तन गाई है, अनक बिगनते साधु रख है, हर गुण गाए अमृत रस चाख है। ओट गही संत दरियाया, सर्व सुख नानक ते पाया, मृत

करता कह। राज मैं राज, योग मैं जोगी, तप मैं तपीसर, ग्रस्त मैं भोगी, त्याए त्याए भगत सुख पाया, नानक तिस पुरख का किरंत ना पाया, जा की लीला की मित नाहे, सगल देवहारे अवगाहे, पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत, सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे, जन दास नाम ते आवै से, ते गुण में जा को परमाए, जन्म मरे फिर आवै जाए, ऊच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावै तैसा नानक जान, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पे करे करंग, नाना बिदकीनो विस्तार, प्रभु नासी एकंकार, नाना चलत करे खिन माहे, पूर रहो पूर्ण सब ठाए, नाना बिदकर बंत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब कर तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीवै नानक हर नाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगले आकार, नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण, कर कृपा जिस आपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए, रूप सत जाका सत अस्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख समाय समाणी, सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करणी निर्मल निर्मली, जिसै बजाए तिसै सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत तेजन जा कर दे प्रवेश, सत निरत बूझे जे कोए, नाम जपत तां की गत होए, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सृष्ट सो करने हार, अवरना बुझ करत विचार, करते की मित ना जाने किया, नानक ज्योत पावै सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म पय बिस्माद, जिन बुझिया तिस आया स्वाद, प्रभ के रंग राजन रहे, गुर के बचन पदार्थ लहे, ओए दाते दुख कट नहार, जा कै संग तरे संसार, जन का सेवक सोवड भागी, जन कै संग एक लिव लागी, गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै, सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच, नानक होसी पे सच, अष्टपदी चरण सत सत परसनहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत यावनहार, आप सत सत सबधारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभगता, सुरत सत सत जस सुनता, बुझनहार कौ सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप हृदय जनमान्या, करन करावन तिन मूल पछान्या, जा कर दे विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, पै ते निरपव होए बसाना, जिस ते उपजया तिस माहे समाना, बस्त माहे ले बस्त गडाई, ताको पेना कहना जाई, बूझे बूझन हर बबेक, नारायण मिले नानकेक, ठाकर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकर का सेवक सदा पुजारी, ठाकर के सेवक है मन प्रतीत, ठाकर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकर कौ सेवक जाने संग, प्रभ का सेवक नाम कह रंग, सेवक कौ प्रभ पालनहारा, सेवक की राखै निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभ धारै, नानक सो सेवक सा सा सुमारै,
अपने जन का पर्दा ढके, अपने सेवक की सर पर रखे, अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत रखे, ताकि गतमत कोई ना लखे, प्रभु के सेवकों को न पहुंचे, प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, निकी कीरी मैं कल रख है, भस्म करे लश्कर कोट लख है, जिसका सासना काटते आप, ताको राख्त देकर हाथ, मानस

जप नानक प्रभ लख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपिया पी अमृत मन तंत्र पिया नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिसके शवर नाही दृष्टाया नाम धन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम का संग नाम रस जो जंत्र बताने मन तन नामै नाम समाने ऊठत बैठत सोबत नाम कहो नानक जन कै सद काम बोलो जस जेह बादन रात प्रभ अपने जन की नींदात करै भगत आत्म कै चाए प्रभ अपने स्यो रह सो आए जो होवा होवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखाना तिसका गुण कै एक न जाना आठ पहर प्रभ सह हजूरे कहो नानक से ही जन पूरे मन मेरे तिनकी ओट ले हे मन तन अपना तिन जन दे हे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर्श सब पाप मिटावे अवर सियाणप सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान ना होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम तिसके संग सिख उदरै नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेव कौ गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुरबचनी हर नाम उचरै सतगुर सिख के बंधन काटै गुर का सिख विकार ते हटै सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख वट पागी है सतगुर सिख का हलत पलत सवार है नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमार है गुर कै ग्रह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस कौ कर कछ ना जनावै हर हर नाम हृदय सत्यावै मन बेचै सतगुर कै पास ते सेवक के कार्य रास सेवा करत हुए नेकामी तिसका होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेव गुर की मत ले बीस बिसवे गुर का मन मान सो सेवक परमेश्वर की गत जान सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ सर्व निधान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मैं जानो जन मैं पार ब्रह्म एक आप नहीं कछ परम सहस सियाण पो लया ना जाई है नानक ऐसा गुर वड भागी पाई है सफल दर्शन पेखत पुनीत परसब चरण गत निर्मल रीत भेट संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे सुनकर बचन करने गाने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुर अखियो जा का मंत्र अमृत दृष्ट पेखे हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जेबा एक उस्तत अनेक सतपुरख पूर्ण बबेक काहू बोलना पहुंचत प्राणी अगवा गोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत कने ना पाई अनक भगत बंधन नित करै चरण कमल हृदय सिमरै सदबलिहारी सतगुरे अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावै जन कोए अमृत पीवै अमर सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जा कै मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेव कौ दे मोह माया कै संग ना लेप मन में राखै हर हरेक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परमो दुख तै ते नासे तपत माए ठंड वरताई अंध भया दुख नाटे भाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पौ चूका निरपा होए बसे सगल ब्याद मन देखे नसे जिसका साथ इन कृपा धारी साध संग जप नाम मुरारी थित पाई चूके भ्रम गमन सुन नानक हर हर जस रवन निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला तार जिन सगली मोही अपने चरत प्रभ्या बनाए अपनी कीमत आपे पाए
हर बिन दूजा नाही कोए, सर्ब निरंतर एको सोए, ओत पोत रव्या रूप रंग, भय प्रगास साध कै संग, रच रचना अपनी कल तारी, अनक बार नानक बलिहारी। सलोक साथ ना चाले बिन भजन, बिखिया सगली शार, हर हर नाम कमावना, नानक हो तन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवर्यो पाव सब मीत बिसारो, चरण कमल रद मैं उर तारो, करण कारण सो प्रव समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हर वथ, एहो तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाए, जिस तन को चार कुंट उठता वै, सो तन हर सेवा ते पावै, जिस सुख को नित बाछै मीत, सो सुख साधु संग परीत, जिस सोबा को करह पली करनी, सा सोबा पज हर की सरनी, अन क्यों पावी रोग ना जाए, रोग मिटे हर अवखद लाए, सर्व निदान मैं हर नाम निदान, जप नानक दरगे परवान, मन पर बोधो हर कह नाए, दह दिस्तावत आवै ठाए, ता कौ बिघन न लागे कोए, जा कर दे बसे हर सोए, कल ताती ठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पाओ बिन से पूर्ण होए आस, भगत पाए आत्म परगास, तित कर जाए बसे अबनासी, कहो नानक काटी जम फासी, तत विचार कह जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा, आवा गमन मिटे प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव, एवं रतन जन्म का होए उदार, हर हर सिमर प्राण आधार, अन क्यों पाव ना छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन बंछत नानक फल पाए, संग ना चालस तेरे तना, तू क्या लपटावे मूर्ख मना, सोत मीत कुटंब अर बनता, इनते कहो तुम कमन सनाथा, राज रंग माया विस्थार, इनते कहो कमन छुटकार, असहस्ती रथ असवारी, झूठा डंफ झूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना, नाम बिसार नानक पछताना, गुर की मत तू लेह आने, भगत बिना बो डूबे सियाने, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल बिख जाहे, आप जपो अवरा नाम जपावो, सुनत कह तो रहत गत पावो, सार पूत सत हर को नाओ, सह सुबाए नानक गुण गाओ, गुण गावत तेरी उत्तर समैल, बिन सजाए हम मैं बिख फैल, होहे अचिंत बस है सुख नाल, सास ग्रह सार नाम समाल, शाड़ सियानप सगली मना, सा संग पावै सजतना, हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहा सुख दर गै जयकार, सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख, एको जाप एको सालाहे, एक सिमर एको मन आहे, एक सके गुण गाओ अनंत, मंतन जाप एक भगवंत, एको एक एक हर आप, पूर्ण पूर रहो प्रव्याप, अनक विस्थार एक ते पे, एक आराध प्राश्त गए, मन तन अंतर एक प्रभराता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। सलोक फिरत फिरत प्रभ आया,
ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਚਕ ਜਾਂਜਾ ਚੈ ਪ੍ਰਭਦਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੋ ਹਰਨਾਮ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਮੰਗ ਤੂਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾ ਪੂਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭਤ ਮੈਂ ਤੇ ਆਵੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤ ਭਗਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤ ਨੀਤ ਏਕ ਓਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਹੋਏ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਨੇ ਸੁਬਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ ਉਪਜੈ ਚਾਓ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਰੇ ਸਰਨ ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਨਦਿਨ ਲਿਵਲਾਗ ਵਡ ਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸੇਵਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਪਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਹੋਇਓ ਦਇਆਲ ਸੇਵਕੀ ਨੋ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਜਨ ਭਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਭ੍ਰਮ ਗਇਆ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਸਰਦਾ ਸਾ ਪੂਰੀ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਾ ਸੰਗ ਹਜੂਰੀ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਥ ਨ ਲਿਆ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਕਾਲ ਨਾ ਭਾਨੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲਾਖੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਬਿਖਤੇ ਕਾਢੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਂਢੈ ਗੁਰਪੂਰੈ ਤਤ ਹੈ ਬੁਝਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧਿਆਇਆ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਇਹੋ ਕਾਮ ਆਨ ਤਿਆਗ ਜਪੋ ਹਰਨਾਮ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਭਗਤ ਪਾਏ ਤਰੀਐ ਸੰਸਾਰ ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਸ਼ਾਰ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੂਖ ਨਿਧ ਨਾਮ ਬੂਡ ਜਾਤ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ ਸਗਲ ਦੁਖ ਕਾ ਹੋਵਤ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ।

दयाल भगत वचन सदा कृपाल अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावे मनहीत हम निर्गुणी यार नीच अजान नानक तुमरी शरण।